गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लिकतुप दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के अंतर्गत निर्मित थिम्फू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब प्रस्तुत है चिंतन।
1: नमस्कार, आज के चिंतन कार्यक्रम में प्रस्तुत है लघु वार्ता अहंकार के त्याग पर

ने छोड़ा यह बनकर के कभी धर्म में मैं श्रेष्ठ हूँ। यह सूक्ष्म अहं भाव ही मोक्ष की राह में सबसे बड़ा विघ्न है। इसलिए गीता का समापन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज के साथ होता है। यहाँ सर्वधर्म का परित्याग वस्तुतः सर्व अहंकार का त्याग है, अपने कर्तापन का त्याग है, अपने ज्ञान का त्याग है, अपने स्वामित्व का त्याग है, अपने अधिकार का त्याग है, श्रेष्ठता की समस्त भावनाओं का त्याग है। जब साधक परमात्मा की शरण में इन सब त्याग के साथ जाता है तो वह मोक्ष, मुक्ति और परम कल्याण का अधिकारी बनता है। आज के युग में जब अहंकार विद्या का है, पद का है, प्रतिष्ठा का है, सेवा का है, इन सभी माध्यमों से अपना रूप धारण

0: श्रवणकाले न्यायपीठेन उक्तं यत् आरक्षिभ्यः विशिष्ट परिस्थितिषु एव पैलेट गन इत्यस्य प्रयोगस्य अनुमतिः अस्ति। राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतीय भारोत्तोलकः लवप्रीत सिंहः पुरुषाणां दशाधिकैकशत किलोग्राम भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवान्। अपरञ्च भारतीय क्रीडिका सीमा कालीरमन महिलानां डिस्कस थ्रो इत्येतस्यां प्रतिस्पर्धायां कांस्य पदकं प्राप्तवती। ग्लास्गो नगरे अष्टम दिवसस्य समाप्तौ ऑस्ट्रेलिया देशः दशाधिकैकशत पदकैः पदकतालिकायां शीर्षस्थाने वर्तते। भारतं तु सप्तदश पदकैः सह दशम स्थानम् अधितिष्ठति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक

18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाले लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलिरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के

दिल्ली से लेकर काशी तक और आपके दिल से सीधे मेरे स्टूडियो तक, सावन का महीना शुरू हो चुका है और मैं हूँ आपकी रेडियो सखी निधि वर्मा और लेकर आई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। आज का मौसम भी खुशनुमा है और आज हमारा टॉपिक

8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

0: जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक

0: लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
1: वहीं जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मेडिकल शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। विधेयक का समर्थन करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन किया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नीट परीक्षा सभी विद्यार्थियों को शामिल होने का मौका देती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर प्रदर्शन करके देखना प्रेरक है। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए

0: कि श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण पर बोर्ड ऑफ पीस में सहमति बन गई है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह समझौता गजा में नई फिलिस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से इसराइल को भी जरूरी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि गजा का इस्तेमाल आतंकी हमलों के ठिकाने के रूप में नहीं होगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गजा में पूरी तरह निरस्त्रीकरण की योजना पर सहमति बनी है और जल्द आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जाएगा। अभी इस समझौते पर इसराइल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। स्थानीय अधिकारी अब महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में गुजरात के व्यापक क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। और ब्यूरो के साथ हैं हमारी संवाददाता।
1: मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिनमें अहमदाबाद, आणंद, सूरत, नवसारी और वलसाड जैसे जिले शामिल है। सभी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है। एहतियात के तौर पे अहमदाबाद, नवसारी, भरूच सहित कई प्रभावित जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस बीच राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निचले और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तेजी से शेल्टर होम में स्थानांतरित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: वहीं केरलम से हमारे

जॉर्डन में अमेरिका के जेट तबाह करने का दावा, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है, कुवैत में चीन की कंपनी की इमारत बनी निशाना, पहली बार इजिप्ट तक हुए ड्रोन अटैक। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अर्थव्यवस्था के लिए बैंकों से आई अच्छी खबर। लेख में बताया गया है कि महंगाई और विश्व युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद

को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने के अज्म का इरादा किया। बहस में शामिल होते हुए अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुजवजा तरामीम पब्लिक इम्तहानात में गलत तौर तरीकों को रोकने में मुअसर साबित नहीं होंगी। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, एआईएडीएमके, एनसीपी, आप, बीजेडी, आरजेडी, सीपीआईएम और दीगर ने भी इस बिल पर बहस में हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत इम्तिहान का एक भरोसेमंद निज़ाम तैयार करने के लिए लगातार एक के बाद एक कदम उठा रही है।

0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत इम्तिहान का एक भरोसेमंद निज़ाम तैयार करने के लिए लगातार एक के बाद एक कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि पिछली कई दहाइयों से हर रियासती सरकार और मरकजी हुकूमत ने पेपर लीक के मसले का सामना किया है, जिसने तलबा के मुस्तकबिल को दाव पर लगा दिया है। उन्होंने कहा कि इस बात को जहन में रखते हुए ही रियासतों और मरकज़ में तालीम और इम्तिहान के निज़ाम में इसलाहात करना लाजिमी हो गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्लियामेंट ने एक बिल मंजूर किया जिसमें सख्त कानूनी शिकों को शामिल किया गया है।
1: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।

0: आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
1: कौम आज इनकलाबी मुजाहिदे आजादी शहीद उधम सिंह को उनके 87वें यौम शहादत पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। शहीद उधम सिंह का ताल्लुक गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से था। साल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग कत्लेआम का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को पंजाब में बरतानिया के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को कत्ल कर दिया था। पेश है एक रिपोर्ट।
2: जलियांवाला बाग कत्लेआम की तलख यादें उधम सिंह को उस वक्त तक परेशान करती रहीं जब तक कि उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर को गोली मारकर हलाक नहीं कर दिया। जेल में रहते हुए वो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद के नाम का नाम इस्तेमाल करते थे, जो भारत में 3 बड़े मजाहिब और 9 आबादियाती निज़ाम के खिलाफ उनके जज्बात की अक्कासी करता है। उन्हें 1940 में आज ही के दिन कत्ल का मुजरिम करार देकर फांसी दे दी गई थी। इस इनकलाबी मुजाहिदे आज़ादी की शहादत को मनाने के लिए पंजाब में उनकी जाए पैदाइश सोनम में एक रियासती सतह के प्रोग्राम का अहतमाम किया जाएगा। हरियाणा सरकार भी आज सनौर में एक प्रोग्राम के दौरान उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रही है। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज मुजाहिद आज़ादी उधम सिंह के यौम

परार्थिया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत के महकमाए मौसमियात ने अगले 48 घंटों के दौरान गुजरात के बड़े हिस्सों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए मौसम से मुतालिक वार्निंग जारी की है। माहीगीरों को सख्ती से मशवरा दिया गया है कि वो यकुम अगस्त तक मछली पकड़ने समंदर में ना जाएं। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रियासती इंतजामिया

जुमे और हफ्ते की निस शब में मछलियां पकड़ने वाली ट्रॉलिंग पर पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। ट्रॉलिंग पर सालाना पाबंदी इसलिए नाफिज की गई थी ताकि समुद्र में मछलियों की अफजाइश नस्ल में आसानी हो। फिशिंग सेक्टर में हजारों वर्कर्स मछलियां पकड़ने के नए सीजन की तैयारियों में मसरूफ हैं। मछलियां पकड़ने वाले उन माहीगीरों ने थिरुअनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और दीगर इलाकों के नज़दीक बंदरगाहों पर पहले ही पहुंचना शुरू कर दिया है, जो अपने आबाई कस्बे में लौट आए थे। दरियासना इंतहाई ख़राब मौसम और मछलियां पकड़ने से मुतालिक सरगर्मियों पर पाबंदियों के इम्कान ने माहीगीर बिरादरी में तश्वीश पैदा कर दी है। केरल में 14 ज़िलों में से 11 ज़िलों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। थिरुअनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन।

इस धमाके के कुछ घंटे बाद इब्तदाई तौर पर 7 कानकुनों की लाशें बरामद की गईं और इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने वाले अफराद को बाद में मजीद 11 लाशें मिलीं। हुकूमत के कानों से मुतालिक इंस्पेक्टर गनी बलोच ने कहा है कि जब तक फंसे हुए कानकुनों का पता नहीं चल जाता उस वक्त तक बचाव कार्रवाई जारी रहेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस हफ्ते के शुरू में आम शहरियों की अंधाधुंध गिरफ्तारियों के बाद पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में मुजाहरे जारी हैं जिनमें 40 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं। मकबूजा इलाके में मकामी हुकाम अब उन ख़वातीन को निशाना बना रही हैं जो अपने बुनियादी हकूक़ के लिए मुजाहरे कर रही हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी तादाद में जमा ख़वातीन मुजाहरीन पर फायरिंग भी की। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में कल रात भारतीय वेट लिफ्टर लवप्रीत सिंह ने मर्दों के 110 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता जबकि सीमा कलीरमना ने खवातीन के डिस्कस थ्रो में कांसे का तमगा जीता। ऑस्ट्रेलिया 110 तमगों के साथ पहला मकाम बरकरार रखे हुए है।

सरे गम दम घरे गम धनी धनी मदनी रे घरे धनी रे धनी दब मद बम घरे गम धनी धनी दब मद बम घरे गम पद बम घरे गम घरे गम रे घरे मम घरे घरे धनी रे धनी धनी घरे घरे घरे गम दम घरे गम धनी धनी दब मद बम घरे

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है गांधी दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। आलेख एवं स्वर रमेश कुमार सिंह।
1: महात्मा गांधी एक महान चिंतक और कर्मयोगी थे। उनका मानना था कि यदि हम संसार को बदलना चाहते हैं तो पहले

दीन व्यक्ति सुखी नहीं होगा तब तक वे भी सुखी नहीं हो सकते। इस विचार के अनुसार उन्होंने एक संदेश दिया था जो गांधी जी के ताबीज अथवा गांधी जी के जंतर के नाम से मशहूर है। यह उनके जीवन के अंतिम संदेशों में से एक है। इसमें उन्होंने कहा है कि हमारा हर फैसला सबसे कमजोर और निर्धन व्यक्ति के कल्याण को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए। यह संदेश महात्मा गांधी के जीवन दर्शन का निचोड़ माना जाता है। उन्होंने ग्राम स्वराज का सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत गांवों की आत्मनिर्भरता और पंचायतों द्वारा स्थानीय स्वशासन पर बल देता है। गांधी जी ने

लोग केवल रोटी कमाने के लिए ही श्रम करें तो सभी को पर्याप्त भोजन और विश्राम मिल सकता है। हमारी आवश्यकताएं न्यूनतम रह जाएंगी और हम सबका भोजन सादा हो जाएगा। तब हम जीने के लिए खाएंगे, खाने के लिए नहीं जिएंगे। महात्मा गांधी ने आध्यात्मिक सिद्धि के लिए मन, वचन और कर्म से आत्मनिग्रह और ब्रह्मचर्य का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म की खोज। यह ऐसी जीवन पद्धति है

पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लै के मैं हाजिर हाँ शमिंदर कलेर। अज के इस प्रोग्राम च असी सुणांगे कहानी उड़ीक ते इस तों इलावा कुछ फिल्मी गीत भी सुनवाए जाणगे। अज आपां गल करांगे नारी दे सन्मान बारे, औरत जिस तों बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती, उस तों बिना तो समाज का चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। औरत ही है जिस की कुख च राजे महाराजे गुरु पीर पैगंबर जन्म लेंदे ने। साढ़े गुरुआं पीरां पैगंबरां ने भी नारी नूं बहुत उच्चा दर्जा दिता है। गुरु नानक देव जी ने तो औरत लई इत्थों तक कहा सी, सो क्यों मंदा आखीए जित जम्मे राजान।

0: मैं सिर्फ अपने स्वयं माण नू चुन रहा हाँ। मीरा चुपचाप उत्थों चली गई। इस वार सुनील दियां अखां विच पिछली वार दी तरह हंजू नहीं सन। उसका प्यार खत्म नहीं होया, पर वो दर्द तो आज़ाद हो चुका सी। जरूरी नहीं कि सच्चे प्यार दी किस्मत विच हर वार मिलना ही लिखिया होए। कई वार वो किसी नू खुश देखण दी आखरी दुआ बन के दिल विच ही वस जांदा है। अते जदों तक बंदे नू एहसास हुंदा है, उदों तक रिश्ता नहीं, सिर्फ यादां बचदियां हन।
1: तुसी सुन रहे सी कहानी उड़ीक, ते कहानीकार सन डॉक्टर रतनदीप कौर। सच्ची किसे दी उड़ीक करनी बाली औखी हुंदी है, ते जदों किसे अपने प्यारे नाल मिलना होवे तां बस यही तांग रहिंदी है कि उस दे सफ़र च कोई रुकावट ना आए। ते गायक गुरदास मान वी गड्डी नू कह रहे ने देर ना करी। ते आओ फिर सुनदे हाँ गुरदास मान दी आवाज़ च ये गीत, गड्डीए नी देर ना करी। फिल्म है शहीद मोहब्बत।

0: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिट्टी दी महक। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 10 बजने को हैं, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने

0: रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अमर योद्धा उधम सिंह को शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिए। 135वीं डूरंड कप प्रतियोगिता आज शिलांग में शुरू हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: आज शिलांग में 135वें डूरंड कप के ग्रुप ई के मुकाबलों की शुरुआत होगी। इस ग्रुप में मेघालय के तीन क्लब शिलांग लाजोंग फुटबॉल क्लब, नोंगसे स्पोर्ट्स सोशल एंड कल्चरल क्लब और लैंगसनिंग फुटबॉल क्लब खेल रहे हैं। इनके साथ ही मुंबई फुटबॉल क्लब भी ग्रुप ई का हिस्सा है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा

0: In a video message on social media, Mr. Modi said, "For the past several decades, every state government and the central government has faced the problem of paper leaks, and this has put the future of students at risk."
1: दोनों सदनों ने कठोर प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले।
0: The nation pays homage to revolutionary freedom fighter Shahid Udham Singh on his 87th martyrdom day today. Belonging to the Gadar Party and Hindustan Socialist Republic Association, Udham Singh assassinated Michael O'Dwyer, former Lieutenant Governor of British Punjab, on 13th March 1940 to take revenge of the 1919 Jallianwala Bagh massacre of Amritsar. Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah have paid tribute to the immortal martyr Udham Singh on his martyrdom day.

वो आया है गोविंद वैष्णव जी ने। ये मैसेज है तहसील नरसिंहगढ़, ज़िला राजगढ़, मध्य प्रदेश से इन्होंने मैसेज किया है हमें। और हमारे पास मैसेज आया है नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल और सावित्री बाई देवांगन का। लिखते हैं किसी भी गीत में हमें शामिल करें। लेकिन जी हाँ, आपने लिखा है कि पता

बताइए कि आज का दिन आप कैसे बिता रहे हैं, और आप जहाँ से हमें मैसेज कर रहे हैं इतनी दूर दूर से, तो वहाँ पर बारिश का क्या आलम है? क्योंकि दिल्ली में तो फिलहाल जो बादल हैं वो आंख मिचौली कर रहे हैं, कभी आते हैं जाते हैं, फिलहाल आज अभी कोई ऐसी संभावना नहीं दिखाई दे रही है। स्टूडियो से बाहर से हल्की हल्की हमें धूप नज़र आ रही है, लेकिन आपके आसपास अगर कुछ मौसम बन रहा है तो इसको आप हमें ज़रूर बताएं। और हमारे अगले जो हम अगला संदेश हमारे पास जो आया है, ये गाँव बड़वाला फाजिल्का पंजाब से विनोद मायल, सीमा लक्षिता यसिका और सारा मायल, ये कहते हैं कि कोई भी गीत सुनवा दीजिए, और हमें आपसे ये भी जानना है कि आज का दिन आप कैसे बिताने वाले हैं और आपके पास आसपास का मौसम कैसा है। हमारे तेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब राजा रानी मानिकपुरी, ये पूरी फैमिली हमें मैसेज कर रही है, बोल रहे हैं मिलकर प्रोग्राम सुन रहे हैं और अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। बिल्कुल, आपको आपकी पसंद का हम गीत सुनवाएंगे और अपनी पसंद का भी सुनवाएंगे। तो लगातार आपके संदेश हमारे पास मिल रहे हैं, और एक संदेश हमारे पास आया है दादरी गेट भिवानी से, कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा।

बहुत अच्छी बात है। हमारे अगले जो श्रोता हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, ये कहते हैं कि नमस्कार जी, हम आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमें अपनी पसंद का गीत कोई भी सुनवा दीजिए। बिल्कुल, हम आपको सुनवा रहे हैं। हमारे अगले जो श्रोता हैं ये राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन, गोटा जैन, मुल्लापुर दाखा से इन्होंने हमें संदेश भेजा है।

नमस्कार, गनगोला दातागंज जिला बदायूं से इसरा खान, शायरा बेगम, रहूफ खान, साबरीन, शहबाज, सैफ खान, ईशान, बिल्कुल कह रहे हैं हमारा भी मैसेज शामिल कर लीजिए। तो जी हाँ, हमने आपका मैसेज शामिल कर दिया है। इसके अलावा आपका दोबारा से मैसेज आया है, बिल्कुल आप एक बार भी लिखेंगे तो भी हम शामिल करेंगे आपका मैसेज। और संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया, ये बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कार्यक्रम को सुन रहे हैं। हमारे अगले श्रोता लिखते हैं, आदरणीय प्रसारक जी आदाब, फरमाइश करता है रघुवीर नगर दिल्ली से, दिलावर खान, हसीना बानो और लड्डू

के साथ ये पूरा परिवार इस कार्यक्रम को सुन रहा है। इसके अलावा लिखा है ओके, ये जो संदेश आया है ये पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराज दिन, इन्होंने हमें अपनी फरमाइश भेजी है और लिखते हैं कि कार्यक्रम सुन रहे हैं आप। और यहाँ पे हमारे फरमाइशकर्ता एक और जुड़ गए हमारे साथ, रेणु गोयल रोहिणी दिल्ली से हमारे साथ कार्यक्रम सुन रही हैं। और बिल्कुल आपके लगातार संदेश हमारे पास आ रहे हैं और

संदेश के साथ कि आज आपके आसपास का मौसम कैसा है। और मौसम दो तरह के होते हैं ना, एक मौसम जो हमारे अंदर होता है, जो दिल का मौसम होता है, जो हमारे मन में होता है, और एक जो मौसम होता है जो बाहर का मौसम होता है, बादलों के बीच का मौसम होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब हमारे मन का मौसम अच्छा नहीं होता और बाहर का मौसम बहुत अच्छा होता है ना, तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। ऐसा भी कई बार आपने महसूस किया होगा। और बिल्कुल हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं, लिखते हैं कि कार्यक्रम आपकी पसंद, पेशकर्ता जी सिद्धार्थ जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके इस मैसेज के लिए भी आपको बहुत सारा

कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्यार भरा आदाब आपको भी आदाब, आप खैरियत से हो? जी हाँ बिल्कुल खैरियत से हैं। लिखते हैं कि दुआ में याद रखना, तो आप भी हमारी दुआओं में हो, बिकॉज़ आप जैसे श्रोता जब नहीं होते तो हम शो कैसे कर पाते, अपने मन की बात, आपके दिल की बात, दिल की बात दिल तक कैसे पहुँचा पाते। ये बहुत ज़रूरी है कि हम आपसे दिल से जुड़ें, और ये हमसे शेख मूसा मोहसिन सनावत से हमको लिख रहे हैं। और इसके अलावा जी हाँ बहुत सारे और ईमेल्स आपके आ रहे हैं।

गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार टूटी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आप ऐसे ही हमें संदेश भेजते रहिए और हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। और इससे पहले हम आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

जी हाँ, ये पल खुशी की जन्नत है और ये पल बहुत अनमोल है, क्योंकि ज़िंदगी का हर एक लम्हा हमें खुल कर जीना चाहिए। और इस बीच ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि नमस्कार आरजे सिद्धार्थ, हम भी रेगुलर कनेक्ट हैं और अभी तक आपने रिस्पांस नहीं दिया। जी बिल्कुल दे दिया, हम कैसे रिस्पांस ना दें, क्योंकि आप हैं एवर ग्रीन रेडियो ग्रुप। बिहारी कॉलोनी शाहदा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना चंडीगढ़ से राहुल, रचिता केशु

0: 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
1: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डेटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
0: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे परीक्षा प्रणाली और मजबूत होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने अपने मंत्रालय से संबंधित फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 22वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में बयान दिया। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। हंगामा के जारी रहने पर सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर डाली गई बाधा पर चिंता भी व्यक्त की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में।

0: चर्चा संवाद के लिए आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
1: लोकसभा की कार्यवाही एक स्थगन के बाद अब जारी है। इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और शारीरिक रूप से मारपीट की। परिवार वालों ने यह भी दावा किया कि इस घटना में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। भूटान नरेश जिग्मे खेसा नामग्याल वांगचुक ने आज विदेश सचिव विक्रम मिश्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच विकास और सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में भूटान नरेश ने विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की सराहना करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पूबी लालछन जोवा ने कहा है कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में श्री लालछन जोवा ने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली रूप से बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 103 अंक बढ़कर 78031 जबकि निफ्टी 44 अंक बढ़कर 24361 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: घर आंगन।
1: कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ रेनू, तो कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो

नमस्कार। तो शुरू करते हैं अपनी बातों मुलाकातों का सिलसिला। आज शाम जब बरसा सावन, भीगा अपना तन मन सारा, भ्रांति लिए बैठी हूँ अब तक, सावन था या प्यार तुम्हारा। कान्हा ने राधा से पूछा, तुम मुझको सच सच बतलाना, भली लगी कब तुम्हें बांसुरी और अधर तक उसका आना। भीगे हम भी भीगे तुम भी, शायद था सौभाग्य हमारा, शायद था सौभाग्य हमारा। जी हाँ, सौभाग्य, उत्साह, उमंग और भक्ति से सराबोर सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है, जो हमारे जीवन में नई ताजगी भर देता है। क्योंकि सावन का मतलब है हरियाली, सावन का मतलब है श्रृंगार, सावन है कजरी, सावन है तीज, सावन है मेहंदी और सावन है प्रिय के मिलन की आस में पींगे बढ़ाती युवती, यानी सावन है झूला।

अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी बहू बेगम और आवाज़ थी लता मंगेशकर और आशा भोसले की। और अब बात कॉमनवेल्थ गेम की, तो हमारे खिलाड़ी रोज़ कोई ना कोई खुशखबरी हमें दे रहे हैं। जी हाँ, लवप्रीत सिंह ने हमें दिलाया है एक और सिल्वर मेडल और सीमा ने डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत के मेडल्स में और बढ़ोतरी की है। और इसी के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या हो गई है 17, जिसमें 3 गोल्ड मेडल हैं, 10 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जेवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज चोपड़ा पहुंच गए हैं और उनसे भी मेडल की उम्मीद है और मुक्केबाजी में भी मेडल की उम्मीद है। तो इन सभी खिलाड़ियों को हमारी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब समय है जिसका आपको इंतज़ार रहता है, समय है सवाल का। तो आज का सवाल बड़ा जायकेदार है, यानी आपको बताना है कि आपको कौन सा व्यंजन पसंद है, यानी आप ज़्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं, किसके हाथ का बना आपको ज़्यादा पसंद है। तो लिख भेजिए हमें fmgoldga@gmail.com पर, हमें है आपके मेल्स का इंतज़ार।

जी, आया सावन झूम के, ये झूमता हुआ गीत आपने सुना, फिल्म थी आया सावन झूम के, और आवाज़ लता मंगेशकर और रफ़ी की। और इसी के साथ जो सवाल हमने पूछा था आपसे, तो मेल आना शुरू हो गया है, और इसमें सबसे पहला मेल जो कि नवीन भाटिया जी लिखते हैं, और भाई मानना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले मेल आपका आ जाता है। तो आपने लिखा है कि राजमा चावल आपको पसंद है और अपने पापा के हाथों का तैयार किया हुआ। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि राजमा चावल आपको पसंद है, वो भी अपने पापा के हाथ का तैयार हुआ किया हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपने भी कभी अपने हाथों से बना के अपने पापा को भी खिलाया होगा, लेकिन हाँ, पापा के जितना अच्छा बनाने की शायद आपकी कोशिश रही होगी, उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पापा का प्यार उसमें भरा होता है ना, वो भी तो बात है, इसलिए टेस्ट और बढ़ जाता है। और राजमा चावल की जहाँ तक बात करें, तो देखिए ना, राजमा चावल दिल्ली के आसपास पंजाब और कश्मीर की डिश मानी जाती है, तो बहुत पसंद किया जाता है, बहुत लोकप्रिय भोजन है। और दिल्ली की अगर बात किया जाए, तो दिल्ली में तो और भी, जैसे कि छोले भटूरे हैं, चांदनी चौक के पराठे, पराठे वाली गली ही है कि चांदनी चौक में, तो और चाट है, और राम लड्डू, राम लड्डू जो है ना, यहाँ के जो मूंग की दाल के बनते हैं वो पकौड़े, और उसके और मूली और हरी चटनी के साथ जो इसे दिया जाता है, ये इसका लाजवाब है। मतलब इसका स्वाद दिल्ली में जो आता है ना, वो और भी जगहों पर लोग बनाते हैं, लेकिन उतना अच्छा शायद नहीं होता होगा। और फिर इसके बाद एक और मेल आई है हमारे पास, ये है अग्रसेन यादव जी की। तो अग्रसेन यादव जी भी कह रहे हैं कि हमें भी सारी चीज़ें पसंद है, लेकिन दाल चावल इन्हें ज़्यादा पसंद आता है, सादा खाना पसंद करते हैं। भाई तो पसंद की बात है, ये अच्छी बात है कि सादा खाना तो बिल्कुल सब खाने, सब तरह के पसंद आने चाहिए और लोगों को पसंद करना चाहिए। और देखिए, आप लोग खाने पीने की आज तो बात चल रही है, खाना पीना तो भाई सभी लोगों को बहुत पसंद होता है, तो इस बारे में तो आप हमें जल्दी जल्दी लिखिए, और सारी मेल हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका, मेल लिखिए और हमें बताइए अपनी पसंद के व्यंजन के बारे में, और किसके हाथ का बना पसंद है आपको, और आप अपने हाथ का बना हुआ भी हमें बता सकते हैं कि आप वो जो चीज़ आपको पसंद है खाने में, क्या आप उतनी ही अच्छी बना भी पाते हैं कि नहीं। तो जो भी है डिटेल इस बारे में लिखिए, भेजिए, तब तक मैं मेल्स का इंतज़ार कर रही हूँ आपके। और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, जैसे दिन विशेष की हम बात करते हैं, तो आज है मुंशी प्रेमचंद्र की जयंती, जिनकी रचनाएं अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों का एक प्रामाणिक दस्तावेज हैं। उनकी कहानियां और उपन्यास शोषण और गरीबी जैसी कठोर वास्तविकता को उजागर करते हैं, लेकिन अंततः मानवीय मूल्यों और नैतिक जीत की ओर ले जाते हैं। यानी वे केवल अंधेरे और कड़वे सच को नहीं दिखाते, बल्कि उसका समाधान आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यही उनकी रचनाओं की विशेषता भी है, इसीलिए उनके साहित्य को आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहा जाता है। गोदान, गबन, कर्मभूमि, पूस की रात, पंच परमेश्वर, सदगति जैसी उनकी रचनाओं में भारतीय किसान और गांव की आत्मा बसती है। उन्होंने जमींदारों, महाजनों और ब्रिटिश नीतियों द्वारा किसानों के शोषण और उनकी बेबसी का इतना सजीव चित्रण किया है कि पाठक भावुकता के संसार में डूबते उतराते हैं। तत्कालीन समाज में स्त्री के संघर्ष और उसके हालात पर भी उन्होंने बहुत ही संवेदनशील होकर लिखा है। निर्मला, सेवा सदन, नैराश्य लीला, स्त्री और पुरुष, ठाकुर का कुआं जैसी रचनाओं के माध्यम से स्त्री की दुर्दशा, दहेज प्रथा, मेल विवाह, विधवा की समस्या और पर्दा प्रथा जैसी इन कुरीतियों पर उन्होंने घोर उसका विरोध किया है, और उनके लेखन का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर करना था। तो उनकी जयंती पर आज हम सब उनको सादर नमन करते हैं, और सुनते हैं उन्हीं के उपन्यास गोदान पर बनी फिल्म गोदान से रफ़ी की आवाज़ में ये गीत।

आज है शुक्रवार, तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आज हमारी बातचीत के केंद्र में होते हैं हमारे बुज़ुर्ग, यानी हम बढ़ाते हैं एक कदम बुज़ुर्गों की ओर। घर में अगर दादा दादी, माता पिता, पोते पोतियाँ एक साथ रहते हैं तो उस घर में पीढ़ियों के साथ साथ परंपरा निवास करती है और उस घर में बसती है संस्कृति। ये सारी चीज़ें स्वतः भावी पीढ़ी को हस्तांतरित भी हो जाती हैं, लेकिन एक साथ रहने में, एक दूसरे के विचारों को समझने में कभी कभी कुछ मतभेद भी उभरते हैं, कुछ समस्याएं भी आती हैं, क्योंकि हर पीढ़ी की सामाजिक परिस्थितियाँ, सामाजिक मूल्य अलग अलग होते हैं और हर दौर के साथ सोच का बदलना स्वाभाविक है। लेकिन इस सोच के बीच में सामंजस्य बिठाना ही पीढ़ियों के अंतराल को कम करना है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपस में खुला संवाद हो, एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनना, समझना। इसलिए बिना किसी डर या झिझक के अपनी बात को कहना चाहिए और दूसरों की सुनना भी चाहिए। घर में सामंजस्य बिठाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही एक दूसरे के साथ समय बिताना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अलग से कोई समय निकालने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो भी काम आप कर रहे हैं ना, उसको साथ में मिलकर कीजिए। फिर देखिए, समय अलग से निकालना भी नहीं पड़ेगा और एक दूसरे के साथ समय भी बिता पाएंगे और एक दूसरे को समझ सकते हैं और उसका जो है अवसर आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप अपने दादा दादी, नाना नानी को कई नई तकनीक सिखा सकते हैं बच्चे, तो वहीं बड़ों के अनुभव से उन्हें नई सीख मिल सकती है। विचारों का आदान प्रदान, सम्मान और सीख पीढ़ियों के अंतराल को काफ़ी हद तक कम कर देती है। अपनी सोच को व्यापक रखकर, आपस में एक दूसरे को सम्मान देकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ सिखा भी सकते हैं। इसी से अपने घर का वातावरण खुशनुमा बना सकते हैं, क्योंकि याद रखिए कि बुज़ुर्गों का साथ सौभाग्य वालों को ही मिलता है। और इसी के साथ मुझे एक मेल प्राप्त हुई है, ये लिख रहे हैं महेश अग्रवाल बहादुरगढ़ से। तो आप लिख रहे हैं कि मेरी बेटी का बनाया हुआ चिली पटेटो बहुत पसंद आता है मुझे, और जब भी वो आती है तो मेरे लिए चिली पटेटो ज़रूर बनाती है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात कही आपने, आजकल के बच्चों को वैसे ये जो फास्ट फूड की चीज़ें हैं, या चिली पटेटो है, चाउमीन है, मोमोज है, ये सब बनाना भी बहुत पसंद है और खाना भी बहुत पसंद है। थोड़ा कुछ ज़्यादा भी कभी कभी खा लेते हैं और साथ में हम लोगों की डांट भी खाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और देखिए ना, इस तरह से आप अपनी बातें शेयर कर रहे हैं तो यही तो मेल मिलाप और यही चीज़ें हैं जो घर के माहौल को खुशनुमा बनाती हैं। और इन्होंने एक

ये गीत अभी आपने सुना, फिल्म थी सावन की घटा और आवाज़ थी आशा भोसले की। और हार तब होती है जब मान लिया जाए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लिया जाए। जी हाँ, कुछ इसी तरह के जोश और जुनून की मिसाल पेश की है तमिलनाडु की रहने वाली नवनीत थम्मा ने, जिनकी उम्र है 116 साल। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी अटूट आस्था और जज्बे से वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति मंदिर की 3,550 सीढ़ियाँ पैदल चढ़कर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। उस समय उनका परिवार उनके साथ था, यानी लाठी के सहारे के साथ साथ उन्हें भावनात्मक सहारा देने वाले उनके परिजन उनके साथ थे। बस फिर क्या था, गोविंदा गोविंदा बोलते हुए नवनीत थम्मा ने अपना ये सफ़र सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। उनके इस जज्बे को देखते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी उन्हें सलाम किया और तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम ने भी परिवार सहित उन्हें विशेष VIP दर्शन की सुविधा दी, तो शॉल उड़ा के उन्हें सम्मानित भी किया। तो नवनीत थम्मा को और उनके इस जज्बे को हम अपने

अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी मेरा कसूर क्या है, आवाज़ सुमन कल्याणपुर की। और इसी के साथ मुझे एक मेल प्राप्त हुई है, ये है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। ये भी हमारे रेगुलर जो है नियमित रूप से श्रोता है हमारे जो लिखते हैं, और ये लिख रहे हैं कि हमें तो अपने घर के पूरी छोले और चावल राजमा पसंद है और मैडम के हाथ का बना हुआ। तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको घर का खाना पसंद है और घर के लोगों का बनाया हुआ पसंद है। तो लेकिन बहुत अच्छी बात है, घर का पसंद करते हैं। और मैं एक बात और खाने पीने के बारे में कहना चाहूँगी कि जब आप कभी घूमने जाते हैं ना कहीं पर, तो घूमने के लिए वो जो मनोरम दृश्य आप देखते हैं, प्राकृतिक दृश्य देखते हैं, ऐतिहासिक इमारत देखते हैं, वो तो है ही, प्लस वहाँ का जायका ज़रूर लीजिएगा, वो लेना चाहिए, क्योंकि वो भी एक याद रह जाती है आपकी। और हर क्षेत्र का जायका, हर क्षेत्र के व्यंजन अलग होते हैं। जैसे कुछ कुछ व्यंजन, जैसे आप कहिए कि बिहार की बात जैसे ही हम करते हैं, तो लिट्टी चोखा और सत्तू पराठा, दाल पीटा, घुंगनी चूड़ा, ठेकुआ, ठेकुआ की याद आती है। ठेकुआ जो कि छठ के त्यौहार में विशेष रूप से बनाया जाता है, और छठ में बिना ठेकुआ के अगर कहा जाए कि छठ की त्यौहार जो है वो संपन्न नहीं होता। और वहाँ की एक और मिठाई है खाजा, खाजा और अनरसा, जो कि वहाँ पे उसके अनरसा जो है विशेषकर सावन के महीने में बनाया और खाया जाता है। तो

ये भी, और सावन के महीने से देखिए जुड़ी हुई एक और मिठाई मुझे याद आई, घेवर। जब सावन का नाम आता है ना तो घेवर का नाम भी साथ में जुड़ा हुआ होता है। घेवर की मिठाई बड़ी लाजवाब होती है और इसका संबंध राजस्थान से है, और इस बहुत ही रिच मिठाई होती है इसका, क्योंकि वो उसमें देसी घी और मलाई, बहुत ज़्यादा केसर, ये सब पड़ता है, और क्योंकि रजवाड़ों से संबंध रहा है ना इस मिठाई का, तो उसका प्रभाव भी अभी भी देखा जा सकता है। इसी तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगरा के पेठे, मथुरा के पेड़े, और लखनऊ की बात करें अगर तो मुगलई खाने का स्पष्ट प्रभाव वहाँ देखा जाता है, जैसे कि कबाब, बिरयानी, शीरमाल। शीरमाल एक मीठी रोटी होती है, बहुत ही लाजवाब, बहुत मुलायम, अच्छी रोटी होती है। और इसके अलावा लखनऊ में कुल्फी, मक्खन मलाई, मक्खन मलाई को पता है वहाँ ना जो स्थानीय भाषा में, क्योंकि वो बहुत मुँह में घुल जाने वाली मुलायम सी मिठाई, मिठाई क्या मक्खन मलाई होती है, तो उसको लबे माशूक कहा जाता है, वहाँ के लोकल लोग जो है उसको बोलते हैं। इसी के साथ अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें ना, तो वहाँ पे एक मटर का निमोना स्पेशल, जैसे कि आप लोग ने सुना भी होगा, खाया भी होगा कुछ लोगों ने, जाड़े के दिनों में मटर का निमोना बहुत पसंद किया जाता है ना, मटर को पीस के बनता है, चावल की तहरी, तहरी जो उसी क्षेत्र की लगभग कही जाती है। तो इस तरह से क्षेत्र विशेष की बहुत अलग अलग डिश होती हैं, अगर आप कहीं घूमने कहीं भी जाएँ किसी भी राज्य में, तो वहाँ की डिश भी खाना पीना बिल्कुल उसको करना चाहिए। और खाने पीने की बात चली है तो अब बात कर ली जाए चाय की, चाय यानी सुबह। जी हाँ, अधिकांश लोगों की सुबह जो है वो चाय के साथ होती है, लेकिन सुबह की चाय हमारी सेहत पर डालती है विपरीत असर। खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी, गैस की समस्या, पाचन तंत्र कमज़ोर होना और जैसी समस्याएं मतलब मिल जाती हैं, होती हैं। और ये आदत जो है ना सुबह की चाय पीने की, ये शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को भी प्रभावित करती है। चाय शरीर के लिए नुकसानदायक होती है, लेकिन अगर अगर सुबह की चाय हो स्वाद के साथ, सेहत के साथ, तो क्या कहने। जी हाँ, इसी तरह के हर्बल चाय तैयार की है उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले के लखीवाला गांव की महिलाओं ने। इस गांव की बबीता रानी और अन्य महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बनाई है विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी, जिसकी तारीफ मन की बात जो कार्यक्रम रेडियो से प्रसारित होता है उसमें प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी तारीफ की। और इसमें पड़ता है लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची, सौंफ का उपयोग किया जाता है, और ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इसीलिए इस चाय को पसंद करने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में और प्रयागराज के कुंभ में भी इसको खूब सराहना मिली थी। और सराहना के साथ साथ इस प्रयास से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में भी मदद मिल रही है। तो अगर इस चाय का लुत्फ आप भी उठाना चाहते हैं तो इस हर्बल चाय को ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट के या सीधे ब्रांड की आधिकारिक वेबसाइट से आसानी से खरीद सकते हैं।

तेरे घर के सामने, अभी इस फिल्म से आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। और देखिए, खाने पीने की बात चल रही है तो मैं अपना अनुभव भी आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। अभी गुजरात जाना हुआ था मेरा, गुजरात की यात्रा पर, तो गुजरात में अनोखे जो उनके स्वाद हैं वो तो सब आप लोग ने भी लिया होगा, और पूरे देश में वैसे हर जगह का, आप तो कोई क्षेत्र की विशेष की वो बाध्यता नहीं है, हर क्षेत्र का खाना हर जगह पहुंच ही जाता है। तो वहाँ के जो मेन जो वो डिश है वो है ढोकला, थेपला, फाफड़ा, खांडवी, और ये सब जो है ना अधिकतर बेसन के प्रयोग से बनती है, और मूँगफली का प्रयोग वहाँ पर ज़्यादा होता है क्योंकि मूँगफली की पैदावार भी वहाँ ज़्यादा होती है। इसी तरह से महाराष्ट्र के खाने की अगर बात करते हैं तो तुरंत जो है वो बड़ा पाव, भेलपूरी, पूरन पोली, थाली पीठ, ये सब जो है एकदम से याद आ जाता है। और बड़ा पाव तो वहाँ की सबसे लोकप्रिय जो है वो डिश है। और मोदक, मोदक को कैसे भूला जा सकता है, अभी भगवान गणेश का जो गणेश चतुर्थी है वो आने ही वाली है, और बिना मोदक के तो भगवान गणेश को मतलब वही पसंद है, बिना उसके तो वो पूजा होती नहीं है। और अब खाने पीने की बात चल रही है तो फ़ायदेमंद खाने पीने के बारे में हम समय समय पर अपने कार्यक्रम में आप लोगों को बताते ही रहते हैं। तो आज बात जो है करते हैं कमल ककड़ी की। और देखिए, क्योंकि मौसम जब बदलता है तो खाने पीने का अंदाज़ बदलता है, क्योंकि हर मौसम में प्रकृति हमें कुछ ना कुछ नई सौगात देती है, और जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है होता है। और इसी के साथ आजकल जो मिलने वाली कमल ककड़ी है यानी लोटस रूट, उसकी उसके बारे में बताएं। तो उसको आपने कई रूप में आपने भी खाया होगा, जैसे कि सब्जी बनाकर, कोफ्ते बनाकर, चिप्स, फ्राइज, हनी चिली लोटस स्टेम, या किसी भी तरह से खाया जा सकता है इसे। और ये खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, इससे पाचन में सुधार होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, क्योंकि कमल ककड़ी में बहुत सारा फाइबर होता है। इससे पेट साफ रहता है और कब्ज की समस्या भी नहीं रहती। इसमें विटामिन सी भी होता है, जिससे कि शरीर की बीमारियों और संक्रमण से बचाने की क्षमता बढ़ती है। और इसमें पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में होता है, जो दिल को स्वस्थ रखता है और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। साथ ही इसमें आयरन और कॉपर होते हैं, जो शरीर में हीमोग्लोबिन और लाल रक्त की कोशिकाओं को बढ़ाते हैं। तो जब इतने सारे फायदे हैं तो आजकल मिलने वाली ये कमल ककड़ी क्यों ना बनाई और खाई जाए।

0: अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी दिल तेरा दीवाना और आवाज़ लता मंगेशकर और रफ़ी की। और देखिए आप लोग, हम सवाल कुछ ना कुछ अपने कार्यक्रम में पूछते हैं और आप उत्साहपूर्वक इसका जवाब देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह से अपने सवाल और हमारे सवालों का जवाब देते रहिएगा। और जो है ये, क्योंकि इससे ना हम दो तरफा बातचीत कर पाते हैं, हम अपनी तो कहते ही हैं, आपकी बातें भी सुन पाते हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और खुश रहिए, आबाद रहिए। और मुझे यानी रेनू को इसी के साथ दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे किसी कार्यक्रम के माध्यम से। तो मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: घर आंगन, आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन। घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के सिफारिशों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर पैदा की गई बाधा पर भी चिंता व्यक्त की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। सरकार ने कहा है कि वो विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों पर पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जानकारी दे रही है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वो अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 233 अंक बढ़कर 78,161 जबकि निफ्टी 81 अंक बढ़कर 24,398 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम एक ही फिल्म से लेकर हाजिर हूँ मैं आप सभी के साथ, आपकी होस्ट और दोस्त रिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज जिस फिल्म के बारे में हम बात करेंगे, उस फिल्म का नाम है दिलवाले। जी हाँ, दिलवाले 1994 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन हैरी बावेजा ने किया है। इस फिल्म में अजय देवगन, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन और परेश रावल मुख्य भूमिका में हैं। रिलीज होते ही फिल्म ने शानदार शुरुआत की और सुपरहिट साबित हुई, साथ ही साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई। इसी बात पर आइए सुनते हैं फिल्म का पहला गीत।
2: वो सपना से बहुत प्यार करता है ना, इसलिए तुझे हर किसी की आवाज सपना की ही आवाज लगती है।
3: सपना, सपना कौन थी?
4: मेरी अपनी, मेरी।
5: अरे हमें तो अपनों ने लूटा, खैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां, जहां पानी कम था।

0: आज तो पार्टी चाहिए,
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। श्रोताओं।

0: 1994 में रिलीज हुई फिल्म दिलवाले को संगीत नदीम श्रवण ने दिया था और गीत समीर द्वारा लिखे गए थे। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार लगभग 55 लाख यूनिट बिकने के साथ इस फिल्म का साउंडट्रैक 1990 के दशक के सबसे अधिक बिकने वाले हिंदी फिल्म एल्बमों में से एक रही। इस फिल्म के दो गीत कितना हसीन चेहरा और जीता था जिसके लिए छा गए और जनता के बीच लोकप्रिय हो गए और आज तक लोग इसे रिपीट पर सुनते हैं।
1: कम ऑन अरुण, मेरी पार्टी में रंग कैसे जमेगा जब तक तुम शेर नहीं सुनाओगे।
2: हाँ, कम ऑन अरुण,
3: कम ऑन अरुण यार,
4: क्या करूँ यार, आज कोई शेर ही नहीं बन रहा।
2: अरे ये क्या हुआ, ये तो शम्माई बुझ गई। अरे अब तो इसे खुदा ही रोशन कर सकता है भाई। अरे चेक करो यार, फिर तो नहीं गया
1: क्या मालूम।
2: अरे भाई किसी के पास माचिस वाचिस है कि नहीं।
4: हाँ हाँ मेरे पास है। ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।

0: श्रोताओं, इस फिल्म के अभिनेता अजय देवगन ने वर्ष 1991 में बॉलीवुड में कदम रखा था और अपनी पहली ही फिल्म फूल और कांटे से वो बॉलीवुड में छा गए। 1992 में उनकी दूसरी फिल्म जिगर भी सक्सेसफुल रही, पर साल 1993 अजय देवगन के करियर के लिए चुनौती बनकर सामने आई। उनका करियर डूबता नजर आ रहा था कि अचानक वर्ष 1994 में अजय देवगन के हाथ एक ऐसी फिल्म लगी जिसने उनकी किस्मत चमका दी, और ऐसी चमकाई कि आज भी वो बॉक्स ऑफिस के बादशाह बने बैठे हैं। और ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि दिलवाले ही है, जी हाँ, जिसने उन्हें एक नई ऊंचाई दी। साथ ही साथ सुनील शेट्टी की किस्मत भी इस फिल्म ने चमका दी।
1: तूने सपना को हाथ लगाया, हमारी इज्जत पे हाथ डाला।
2: मामा ठाकुर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं।
1: समान खींच लूंगा तेरी।
3: मामा जी,
2: अपना ये डंडा संभाल के रखिए, कोई झंडा लहराने के काम आएगा। हम आज आपके सामने अपने प्यार का ऐलान करते हैं।

0: श्रोताओं आपको बता दें कि 1994 में रिलीज हुई फिल्म दिलवाले का टोटल बजट 20.1 मिलियन था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसकी कुल कमाई 119 मिलियन की हुई थी। फिल्म सुपरहिट और शानदार रही। 40वें फिल्मफेयर अवार्ड में सुनील शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता श्रेणी में नामांकन भी मिला। इस फिल्म में अजय देवगन अरुण के किरदार में है, सुनील शेट्टी इंस्पेक्टर विक्रम के किरदार में है, रवीना टंडन सपना की भूमिका निभा रही हैं और परेश रावल सपना के मामा ठाकुर के किरदार में हैं। साथ ही कई अन्य कलाकार भी शामिल हैं।
1: अरे चल शंकर बिहारी के साथ बगीचे में खाना खाएंगे। अरे चल शंकर बिहारी के साथ बगीचे में खाना खाएंगे।
2: छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हो?
1: बेबी कमान, शंकर बिहारी के साथ। अबे ओ बुड़बक, वो भी तो ऊ के साथ गाना गाना चाहे है।
3: आई लव सपना। आज के बाद सपना की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना।
1: आई लव हर, आई लव हर, आई लव सपना, सपना।

श्रोताओं, दिलवाले फिल्म की कहानी अरुण के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक झूठे मामले में फंसाया जाता है और वो सदमे में अपनी मानसिक संतुलन खो बैठता है। सपना नाम की लड़की जिससे अरुण प्रेम करता है, वो भी उससे दूर चली जाती है। फिर एक पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर विक्रम को अरुण की सच्चाई के बारे में पता चलता है और वो अरुण को न्याय दिलाने में उसकी मदद करता है। अंत में अरुण को सपना मिल जाती है और सच्चाई की जीत होती है।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। नीट मुद्दे ते विद्यार्थियों दे विरोध मुजहरे दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दियां ते विरोधी धिर दे हंगामे तो बाद संसद दियां दोवां सभावां नूं दिन भर लई उठा दिता गया है।

0: सरकार का कहना है कि वह वख-वख उच्च पदरी ते होर सरकारी दौरियां दौरान पाकिस्तान तो पैदा होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी बारे दूजे देशां नूं लगातार संवेदनशील बना रही है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि निरंतर रहन योग आर्थिक विकास लई सरकार सनत ते ट्रेड यूनियनां विचकार नजदीकी तालमेल जरूरी है। देश अज महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह नूं उनां दे 87वें शहीदी दिवस ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है ते जम्मू कश्मीर विच सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले विच चल रही दहशतगर्दी विरोधी मुहिम दौरान एक शक्की दहशतगर्द ठिकाने का पर्दाफाश किया है। संसद के दोवां सदनां दी कारवाई नीट मुद्दे ते विद्यार्थियों के विरोध मुजाहरिया दौरान कथित पुलिस कारवाई समेत कई मुद्दियां ते विरोधी धिर दे हंगामे कारण सोमवार तक लई मुलतवी कर दित्ती गई है। पहली बार कारवाई मुलतवी होने तो बाद जदों लोकसभा की कारवाई मुड़ शुरू हुई तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर दिलीप सैकिया ने जन्म अते मौत रजिस्ट्रेशन सोध बिल 2026 ते विचार करन ते इसनूं पास करन लई चर्चा की शुरूआत की थी। गृह राज्य मंत्री नितिन नंद राय ने विरोधी धिर के हंगामे दरमियान ए बिल पेश किया। संसद विच बिना किसी चर्चा के हंगामे दौरान बिल पास हो गया। संसदीय मामले बारे मंत्री किरण रिजिजू ने चर्चा विच हिस्सा न लैण लई विरोधी धिर की नुक्ताचीनी की थी।
1: लेकिन आप हिस्सा नहीं लेते हैं बिल में, फिर आप बाहर में न्यूज में जाकर के कहते हैं कि सरकार चर्चा नहीं कराते, बिना चर्चा के बिल पारित करते हैं। ये इल्जाम आप नहीं लगा सकते, आपने अपना मौका गंवा दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सहयोग करें, हंगामा ना करें।
0: उन्हें अगे कहा कि उन्होंने कांग्रेस समेत विरोधी धिर नूं बार बार अपील की सी कि इस अहम बिल ते ढुकवीं चर्चा यकीनी बनाई जाए। विरोधी धिर के हंगामे कारण सभा की कार्रवाई दिन भर लई मुलतवी कर दी गई। सभा की अगली बैठक 3 अगस्त नूं सवेरे 11 बजे होगी। उधर राज सभा की कार्रवाई शुरू हुंदिया कई केंद्रीय मंत्रियों ने सभा के मेज ते अपने अपने मंत्रालय नाल संबंधित दस्तावेज रखे। देहाती विकास ते पंचायती राज बारे संसदीय स्थाई कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की गई। सूचना ते प्रसारण राज मंत्री डॉ. एरमुलक मुरकन ने अपने मंत्रालय नाल संबंधित फर्जी खबरां नूं रोकण ते तरीकियां दी समीक्षा बारे संसदीय स्थाई कमेटी दी 22वीं रिपोर्ट विच शामिल सिफारशां नूं लागू करन दी स्थिति बारे बयान दित्ता। इस तों बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिफर काल दी शुरुआत कीती। कई मैंबरां ने बेहद अहम मुद्दे उठाए, हालांकि विरोधी धिर दे मैंबरां ने नारेबाजी कीती अते अपनी मंगां ते जोर दिंदिया रोस प्रदर्शन कीता। हंगामा जारी रहण कारण सभा दी कारवाई सोमवार तक लई मुलतवी कर दित्ती गई। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विरोधी धिर दे मैंबरां दी नुक्ताचीनी करदिआं कहा कि ओह हर मुद्दे ते रूकावटां पैदा कर रहे ने अते चर्चा तों भज रहे ने। उन्हां टिप्पणी कीती कि विरोधी धिर सदन दी मर्यादा दी उलंघना कर रही है अते लोकराज मजाक उड़ा रही है। सरकार ने कहा कि वह वख-वख उच्च पदरी अते होर सरकारी दौरिया दौरान पाकिस्तान तो पैदा होने वाले सरहद पर दहशतगर्दी के मुद्दे ते दूजे देशों नूं लगातार संवेदनशील बना रही है। आज लोकसभा विच एक लिखती जवाब विच विदेश राज मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों अते 6 बहुपक्षी समूहों नाल दहशतगर्दी विरोधी सांझे कार्य समूह की स्थापना की किती ने जिथे अजिहे मुद्दे नियमित तौर ते उठाए जांदे ने। मंत्री ने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान नूं अपील कीती है कि ओह अपनी धरती नूं किसी भी तरीके नाल दहशतगर्दी लई वर्तन ना देवे। श्री सिंह ने दस्सिया कि 22 अप्रैल 2025 नूं पहलगाम दहशतगर्द हमले तों बाद दहशतगर्दी विरुद्ध अपने आप नूं बचाउण लई भारत दीआं कारवाईआं नूं कई देशां ने मानता दित्ती है। मंत्री ने भी कहा कि पहलगाम दहशतगर्द हमले की निखेधी वख-वख बहुपक्षी मंचां तों नतीजियां दे दस्तावेजां विच सामने आई है। ए खबरां तुसी आकाशवाणी तों सुन रहे हो। साडा XNL @EIRR न्यूज जलंधर। किरत अते रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि निरंतर रहण योग आर्थिक विकास अते नौकरियां पैदा करन लई सरकार सनत मालका मुलाजमा अते ट्रेड यूनियनां विचकार सुहिरद सनती संबंध अते नजदीकी तालमेल जरूरी है। फिक्की ने ऑल इंडिया इम्पलॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन अते इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दे सहयोग नाल नवी दिल्ली विच चौथा आलमी सनती संबंध शिखर सम्मेलन कराया। इस मौके ते बोलदिआं श्री मांडविया ने कहा कि सनती संबंधां नूं बदलदिआं तकनालोजीआं ते आलमी ढंग तरीकिआं दे नाल विकसित होना चाहिदा है, जदों कि सनती विकास अते वर्कर भलाई विचकार संतुलन बनाई रखना चाहिदा है। उन्हां कहा कि सरकार दे किरत सुधारां दा उद्देश वर्करां दे अधिकारां दी रख्या करना, समाज

0: सुरक्षा नूं मजबूत करना ते सनअतां नूं वधिया नौकरियां पैदा करन लई सुखावां माहौल प्रदान करना है। राष्ट्र अज महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह नूं उनां दे 87वें शहीदी दिवस ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी ते हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाल जुड़े हुए सन। उनां ने अमृतसर दे जलियांवाला बाग कतलेआम दा बदला लैण लई 13 मार्च 1940 नूं ब्रिटिश पंजाब ते साबका लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओटायर नूं मौत ते घाट उतार दिता सी। इक रिपोर्ट।
1: अज संगरूर स्थित उन्होंने जद्दी पिंड सुनाम विखे एक राजपद्री श्रद्धांजलि प्रोग्राम करवाया गया, जिस विच मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान समेत होरना ने श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां। पंजाब दे राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने शहीद उधम सिंह नूं श्रद्धांजलि देंदिया कहा है कि उन्हां दा देश दी आजादी लई दित्ता बलिदान सानू सारयां नूं देशभक्ति अते बहादुरी दी प्रेरणा देंदा रहेगा। क्रांतिकारी उधम सिंह ने साल 1919 विच अमृतसर विच होए किनौने जलियांवाला बाग कतलेआम दा बदला 13 मार्च 1940 नूं लंडन दे कैक्सटन हॉल विखे उस वेले दे ब्रिटिश पंजाब दे साबका लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर नूं गोली मार के लिया सी। हिरासत विच रहिंदियां उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद रखिया, जो भारत दे तीन प्रमुख धर्मां अते उधम सिंह दियां बस्तीवादी विरोधी भावनावां नूं दर्शाउंदा सी। उन्हां नूं माइकल ओडायर दे कतल दा दोषी ठहराउंदियां 1940 विच अजी दे दिन फांसी दे दित्ती गई सी। राष्ट्र हमेशा देश दी आजादी लई उन्हां दी इस लसानी कुर्बानी नूं याद रखेगा। राजेश बाली, आकाशवाणी खबरां, जलंधर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अज इनकलाबी शहीद उधम सिंह नूं उनां दे शहीदी दिवस ते श्रद्धांजलि भेंट कीती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री मोदी ने कहा कि शहीद उधम सिंह दा जीवन जो उनां दी असाधारण हिम्मत अते कुर्बानी दी मिसाल है, देश दी हर पीढ़ी नूं देश दे सन्मान अते प्रभुसत्ता दी राखी लई प्रेरित करदा रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीद उधम सिंह नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती। पंजाब जंगलात विभाग वालों राज दे चिड़ियाघर अते ब्यास दरिया विच सुरक्षा सांभ संभाल लई इक हथनी अते इक घड़ियाल नूं बचाया गया। जंगलात विभाग ने 28 जुलाई नूं बरनाला तों लक्ष्मीनाथ दी इक 55 साल हथनी नूं बचा के छतपीड़ महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क विच भेज दिता है। यह हथनी इक अख तों करीब करीब बिल्कुल भी दिखाई ना देण समेत गंभीर सेहत समस्यावां तों पीड़ित सी। डॉक्टरी जांच तों बाद उस नूं कल डेराबसी दे छतपीड़ चिड़ियाघर विच भेज दिता गया। चिड़ियाघर दे अधिकारियों दसिया कि पंजाब दे मुख जंगली जीव वार्डन दे निर्देशां ते उनां निजी मालकां विरुद्ध मामला दर्ज कीता गया जो उसकी माड़ी हालत लई जिम्मेवार सन। संगरूर दे जिला जंगलात अधिकारी अते उनां दी टीम ने हथनी नूं बचाउण विच अहम भूमिका निभाई। एक होर बचा कार्ज दौरान राजस्थान अते पंजाब दे जंगलात विभागां विचकार निरंतर तालमेल नाल राजस्थान दे जैसलमेर दी इंदिरा गांधी नहर विचों 12 फुट लंबे घड़ियाल नूं सुरक्षित बाहर कढ़िया गया ते उस नूं मुड़ वसेबे लई छतबीड़ चिड़ियाघर भेज दिता गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले में चल रही दहशतगर्दी विरोधी मुहिम दौरान पंगाई के जंगलों में एक शक्की दहशतगर्द ठिकाने का पर्दाफाश किया है। साडे पत्रकार ने खबर दी है कि तलाशी मुहिम दौरान सुरक्षा मुलाजमान ने खाण पीण दियां ते रोजाना वरतों दियां चीजा बरामद कीतियां ने, जिस तों पता चलदा है कि दहशतगर्द इस ठिकाने नूं अस्थाई पनागा ते रसद अड्डे वचों वरत रहे सन। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेडां विच बीती रात भारतीय वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने मर्दां दे 110 किलोग्राम वर्ग विच चांदी दा तमगा जित्तिया, जदकि सीमा कलीरामना ने औरतां दे डिस्कस थ्रो मुकाबले विच कांसी दा तमगा हासिल कीता। आखिर च खास खबरां। नीट मुद्दे ते विद्यार्थियों दे विरोध मुजहरे दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दियां ते विरोधी धिर दे हंगामे तों बाद संसद दियां दोवां सभावां नूं दिन भर लई उठा दित्ता गया। सरकार दा कहना है कि वह वक्-वक् उच्च पदरी ते होर सरकारी दौरिया दौरान पाकिस्तान तो पैदा होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी बारे दूजे देशों नूं लगातार संवेदनशील बना रही है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि निरंतर रहने योग आर्थिक विकास लिए सरकार सनअत ट्रेड यूनियनों विचकार नजदीकी तालमेल जरूरी है ते देश अज महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह नूं उनां दे शहीदी दिवस ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। नमस्कार।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। लोकसभा ने पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। कई मामलात पर अपोजिशन के शोरगुल की वजह से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई पीर तक मुलतवी कर दी गई। हैदराबाद पुलिस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ काबिले एतराज़

0: आवाज फैलाने की बिना पर मेटा इंडिया के अहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज की है। CJP के एहतजाज के दौरान जख्मी होने वाले दिल्ली पुलिस के अमले के कुंबे वालों ने इंसाफ की मांग की है और मुजाहरों के दौरान और ज्यादा तहफ़ देने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज पुरअमन एहतजाज करने वालों के खिलाफ वहशियाना कार्रवाई जारी रखे हुए है। 120 से ज्यादा अफराद के मारे जाने की इत्तला मिली है और उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल संगीन बताई जाती है। 13 अजला में लगभग 8 लाख अफराद बुरी तरह मुतासर हुए हैं। अब खबरें तफसील से। आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई बहुत से मामलों पर अपोजिशन के एहतजाज की वजह से पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर भी एहतजाज कर रही थी। जब दोपहर को लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो पैदाइश और अमवात से मुतालिक रजिस्ट्रेशन का तरमीमी बिल 2026 गौर खोज के लिए पेश किया गया और शोरगुल के दौरान किसी बहस के बगैर मंजूर कर लिया गया। बिल पेश करते हुए उमूर दाखला के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने कहा कि बिल का मकसद 1969 के मुतालिका कानून में तरमीम करना है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कार्रवाई में रुकावट डालने और बहस में हिस्सा न लेने पर अपोजिशन की नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि बहस के लिए खातिर खा वक्त रखा गया था। बिल मंजूर होने के बाद ऐवान की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई और इजलास फिर से 3 अगस्त को होगा। पेश एक रिपोर्ट।
1: ये नया बिल ताखिर शुदा रजिस्ट्रेशन से मुतालिक दफात को मजीद सख्त बनाने और पैदाइश नीच अमवात के वाकयात की बरवक्त रिपोर्टिंग की हौसला अफजाई की गरज से पेश किया गया है। बिल में इस बात की गुंजाइश है कि अगर पैदाइश या अमवात के वाक़े की रिपोर्ट 1 साल से ज़्यादा लेकिन 2 साल के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के यहाँ दर्ज कराई जाती है तो उसे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद ही दर्ज किया जाएगा और पैदाइश या मौत के वाक़े की तस्दीक के बाद ही इसका इंदराज किया जाएगा और 2 साल से ज्यादा अरसे के बाद रजिस्ट्रार के यहाँ इंदराज कराने की सूरत में इसे फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म के बाद ही रजिस्टर किया जाएगा। पैदाइश और अमवात का इंदराज कराना लाजमी है और इसके लिए जारी सर्टिफिकेट किसी भी फर्द को कानूनी शनाख्त फराहम करता है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: इससे पहले जब लोकसभा की कार्रवाई दिन में 11 बजे शुरू हुई तो अपोजिशन मेंबरों ने तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर नारे लगाए और वजीर दाखला अमित शाह से बयान देने का मुतालबा किया। स्पीकर ओम बिरला ने मेंबरों से अपील की कि वो सवालों के वक्फे में खलल न डालें। उन्होंने कहा कि यह सरकार से जवाब हासिल करने के लिए मेंबरों के पास सबसे अहम मौका होता है। उन्होंने कहा कि ऐवान के अंदर कतबे और बैनर दिखाना पार्लिमानी रिवायात और जाब्तों के खिलाफ है।
2: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: शोरगुल जारी रहने पर स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई दोपहर तक मुलतवी कर दी। जब ऐवान का इजलास फिर से शुरू हुआ तो पैदाइश और अमवात से मुतालिक रजिस्ट्रेशन का तरमीमी बिल शोरगुल के दौरान मंजूर किया गया जिसके बाद कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। 0 आवर के दौरान अपोजिशन के रखना डालने के सबब राज्यसभा की कार्रवाई भी पीर तक मुलतवी कर दी गई। इससे पहले मरकजी वजीरों ने ऐवान में जरूरी दस्तावेजात पेश किए और इत्तलात नशियात के वजीर ममलकत डॉक्टर एलमुरुगन ने फर्जी खबरों से मुतालिक सिफारिशात की अमल आवरी पर बयान दिया। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने बहस से बचने और पार्लियामेंट की कार्रवाई में रुकावट डालने पर अपोजिशन की नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि इस तरह के तर्ज अमल से ऐवान की अजमत और वक़ार को नुकसान पहुंचता है और जमहूरियत एक मजाक बनकर रह गई है। शोरगुल जारी रहने पर राज्यसभा की कार्रवाई पीर तक मुलतवी कर दी गई। झारखंड से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट ने आज पार्लियामेंट के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्मे के सामने एहतजाज किया, जो JPSC का पेपर मुबैना तौर पर लीक होने की CBI से तफ्तीश कराने की मांग कर रहे थे। खवातीन और बच्चों की तरक्की के महकमे की वजीर और कोडरमा से बीजेपी की मेंबर पार्लियामेंट अन्नपूर्णा देवी ने इल्जाम लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जेर क्यादत सरकार में बहुत से पेपर मुबैना तौर पर इफ्शा होने की खबरें मिलती रही हैं, जिनमें JPSC का पेपर भी शामिल है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए मोहतरमा अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि झारखंड के नौजवान इस मामले पर एहतजाज करते रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का दौरा करेंगे, जहां वो बुनियादी ढांचे, सेमीकंडक्टर, बिजली और शाहराहों के अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में वो भोगापुरम के मकाम पर 5,600 करोड़ रुपये की लागत से तामीर करदा अल्लूरी सीतारामा राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह करेंगे और विशाखापट्टनम में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत रियासत की पहली सेमीकंडक्टर तैयार करने वाली फैक्ट्री का संगे बुनियाद रखेंगे, जिस पर 460 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत आएगी। वजीर आजम अनंतपुरम में 9,900 करोड़ रुपये से ज़्यादा मालियत के पावर ग्रिड ट्रांसमिशन के कई प्रोजेक्टों का भी संगे बुनियाद रखेंगे। हैदराबाद पुलिस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ काबिल एतराज मवाद फैलाने की बिना पर मेटा इंडिया के अहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज की है। सोशल मीडिया चलाने वाले कई दूसरों के खिलाफ भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इसी तरह के काबिल एतराज मवाद की वजह से ये FIR दर्ज की गई है। BAP के सोशल मीडिया शोबे की तरफ से शिकायत दर्ज कराने के बाद ये केस रजिस्टर किया गया है। साइबर क्राइम के DCP अरविंद बाबू ने तस्दीक की है कि FIR दर्ज कराई गई है और इस मामले की तफ्तीश जारी है। तेलंगाना BJP ने मुतालबा किया है कि इस तरह का मवाद फैलाने के मुबैना जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। BJP के तर्जुमान NV सुभाष ने कहा कि पार्टी ने साइबर क्राइम पुलिस से रابطہ कायम किया है और वाज तौर पर कहा है कि इजहार राय की आज़ादी को बेजा और किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्मों को कानून के तहत जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। आयुष की वजारत और इंडिया AI ने आयुष के सेक्टर में मसनूई जहानत AI पर मबनी इख्तरात को फरोग देने के लिए एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। इस मुफाहमत नामे का मकसद तहकीक, डिजिटल सेहत, अद्वियाती पौधों और दवाओं के बंदोबस्त के शोबों को मसनूई जहानत के जरिए मजबूत बनाना है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में पुरामन मुजाहिरीन पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। एहतजाज के शुरू होने के बाद से अब तक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 120 से ज्यादा अफराद के हलाक होने की खबरें हैं। ताज़ा तरीन वाकयात में रावलकोट, मीरपुर और कोटली में खवातीन मुजाहिरीन पर मुबैना फायरिंग शामिल है, जिसकी वसी पैमाने पर मजम्मत की जा रही है और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक ताज़ा खदशात पैदा हो गए हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से इस हफ्ते के शुरू में सिविलियन अफराद के खिलाफ वहशियाना कार्रवाई के बाद जिसमें 40 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए, एहतजाज का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक मकामी हुक्काम ने अब बुनियादी हकूक का मुतालबा करने वाली खवातीन मुजाहिरीन को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। बांधों में शिगाप पड़ने और दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने की वजह से रियासत के वसी तर इलाके मुतासिर हैं। बालाई इलाकों में बारिश कम होने के बाद महानदी दरिया बतदरीज मामूल पर आ रहा है, लेकिन बैतरानी और इसकी मुआविन नदियों के बारे में नए खदशात पैदा हो गए हैं। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि रियासत के 57 ब्लॉकों में तकरीबन 800,000 अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं, जबकि हुक्काम इमदादी बचाव और निगरानी की कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा ने पैदाइश और अमवात की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। कई मामलात पर अपोजिशन के शोरगुल की वजह से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई पीर तक मुलतवी कर दी गई। हैदराबाद पुलिस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ काबिल एतराज मवाद फैलाने की बिना पर मेटा इंडिया के अहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज की है। CJP के एहतजाज के दौरान जख्मी होने वाले दिल्ली पुलिस के अमले के कुंबे वालों ने इंसाफ की मांग की है और मुजाहरों के दौरान और ज्यादा तहफ़ देने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज पुरअमन एहतजाज करने वालों के खिलाफ वहशियाना कार्रवाई जारी रखे हुए है। 120 से ज्यादा अफराद के मारे जाने की इत्तला मिली है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
3: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Lok Sabha passes the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026. Both houses of parliament adjourned for the day amid opposition uproar over several issues. Hyderabad police registers FIR against Meta India.

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित।

0: हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज, 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए।
1: पार्लियामेंट में भेजा है बात बोलने के लिए, हंगामा करने के लिए नहीं, लेकिन आप हिस्सा नहीं लेते हैं बिल में, फिर आप बाहर में न्यूज में जाकर के कहते हैं कि सरकार चर्चा नहीं कराते, बिना चर्चा के बिल पारित करते हैं। ये इल्जाम आप नहीं लगा सकते, आपने अपना मौका गंवा दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सहयोग करें, हंगामा ना करें।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
2: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद की आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। हंगामे के बीच सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
3: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हर मुद्दे पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं।
4: सदन की गरिमा के साथ खेलवाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। सदन की गरिमा को तार तार करना ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के अधिकारियों और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल होने के बाद की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू ने पुष्टि की है कि भाजपा की सोशल मीडिया इकाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर तैयार की गई विकृत, अपमानजनक और निंदनीय सामग्री बनाने, फैलाने और प्रचारित करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उपनिरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सर में चोट आई।
5: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन्स पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 May at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
0: झारखंड की भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर इस मामले पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र JPSC पेपर लीक और JSSC भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
6: देखो, झारखंड के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं पिछले 5 दिनों से, भारी बारिश में भी ऊपर प्लास्टिक लगा वो भी छूरा लेकिन हिल नहीं रहे। उनकी एक ही डिमांड है कि JPSC पेपर लीक मामला और JSSC जो भर्ती घोटाला उसकी CBI जांच कराओ। झारखंड की जनता ने पूरी तरह मन मना लिया, CBI जांच से कम स्वीकार नहीं। क्यों? हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं।
0: आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने

0: रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रेनसा टाउनशिप में एक नाटकीय अभियान में बंगाल एसटीएफ ने जैश के एक संदिग्ध आतंकवादी हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि आतंकवादी सज्जाद भट्ट गुट से जुड़ा हुआ है। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पू बी लालछनजोवा ने कहा कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात के कई हिस्सों में आज फिर हुई तेज बारिश से जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है।
1: गुजरात में सुबह से ही कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सूरत, खेड़ा और आणंद जिलों में कई जगहों पर गंभीर जलभराव देखने को मिला है। व्यापक जलभराव को देखते हुए आज सुबह से ही वडोदरा, सूरत, आणंद और नर्मदा जिले के निचले इलाकों में रहने वाले 720 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण राज्य के 21 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 33 प्लाटू और सेना के 6 कॉलम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं मौसम विभाग ने मछुआरों को 2 अगस्त तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान जारी है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि महानदी नदी प्रणाली में अब काफी हद तक नियंत्रण में है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बारिश कम हुई है। हालांकि लगभग 2,68,000 लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, जबकि 13 जिलों में करीब 8,00,000 लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बैतरणी नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। राजुआ नदी के बाढ़ के पानी ने खुर्दा जिले के कई गाँव को प्रभावित किया है। उड़ीसा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आज वर्चुअल माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज, 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। और गुजरात तथा मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, स्टूडियो खड़ी में दिन के 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। कार्यक्रम सुनने से पहले आपको सुनाते हैं ये संदेश।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

कार्यक्रम एक ही कलाकार सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम जिस कलाकार की बात करेंगे उसके बारे में आइए आपको बताते हैं। बात है 31 जुलाई 1947 की, जब मुंबई में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी हमारी आज की कलाकार मुमताज। इनका असली नाम था मुमताज अस्करी। ये महज 11 साल की उम्र में ही अपने परिवार को आर्थिक सहारा देने के लिए फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने लगी। कहते हैं शुरुआती दिनों में इन्होंने बी ग्रेड एक्शन फिल्मों के ऑफर मिले। इन्होंने पहलवान दारा सिंह के साथ एक दो नहीं बल्कि 16 फिल्में की। फिल्में हिट रहीं और मुमताज पर स्टंट क्वीन का थप्पड़ लग गया। बड़े बड़े एक्टर्स उन्हें अपनी फिल्मों में बतौर हीरोइन लेने से कतराने लगे, लेकिन मुमताज ने हार नहीं मानी। साल 1968 में आई फिल्म ब्रह्मचारी मुमताज के कैरियर का ये टर्निंग पॉइंट साबित हुई। शम्मी कपूर के साथ इस फिल्म में उन्हें एक छोटा सा रोल और एक गाना मिला। उस दौर में मुमताज ने नारंगी रंग की खास अंदाज में लिपटी हुई साड़ी पहनकर ऐसा डांस किया कि पूरा दर्शक वर्ग दंग रह गया। ये गाना बजते ही सिनेमाघरों में लोग अपनी सीटों से उठकर झूमने लगते और स्टंट क्वीन अब ग्लैमर गर्ल बन चुकी थी।

हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज हम जिक्र कर रहे हैं फिल्म अभिनेत्री मुमताज जी के बारे में। श्रोताओं, आप ब्रह्मचारी के बाद फिल्म निर्देशकों की नज़र फिल्म अभिनेत्री मुमताज पर पड़ी। 1969 में आई फिल्म दो रास्ते, इस फिल्म ने जो इतिहास रचा उसके बारे में हम सभी जानते हैं। इस फिल्म में उनकी जोड़ी राजेश खन्ना यानी कि काका के साथ बनी, वहीं मुमताज की नटखट आंखें, चेहरे की मासूमियत और लाल रंग के परिधान में उनकी अदाओं ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। इस फिल्म का एक गाना है जो हर शादी और महफिल की शान बन गया।

श्रोताओं, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है और आप ये कार्यक्रम ज़रूर सुन रहे होंगे। और जो भी नए श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ip.radiodelhi@gmail.com। जी हाँ, ip.radiodelhi@gmail.com। श्रोताओं, अक्सर ये कहा जाता है कि खूबसूरती के आगे अदाकारी छुप जाती है, लेकिन मुमताज ने ये भ्रम 1970 में आई फिल्म खिलौना से तोड़ दिया। इस फिल्म के भावुक गानों और मुमताज के सशक्त अभिनय ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिलाया।

1970 के दशक की शुरुआत तक मुमताज जिस फिल्म में हाथ रखती वो फिल्म सुपरहिट हो जाती। देवानंद जैसे दिग्गज अभिनेता जो कभी उनके साथ काम करने से झिझकते थे, उन्होंने मुमताज को अपनी फिल्म तेरे मेरे सपने में मुख्य भूमिका दी। इस फिल्म में मुमताज की सादगी ने लोगों का दिल जीत लिया।

कार्यक्रम में श्रोताओं एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज इस कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री मुमताज की। जैसा भी हमने पहले जिक्र किया, मुमताज जी ने राजेश खन्ना और के साथ जितना काम किया उसकी हम बात करें तो लगभग 8 फिल्मों में उन्होंने जो काम किया वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहीं। 1974 में आई फिल्म आपकी कसम और रोटी के गानों ने पूरे देश में धमाल मचा दिया और राजेश खन्ना और मुमताज़ की जोड़ी उस समय सबसे हिट जोड़ियों में से एक थी।

श्रोताओं, साल 1974 तक मुमताज़ बॉलीवुड की सबसे महंगी और टॉप की अभिनेत्री बन चुकी थी, लेकिन इसी साल जब उनका करियर अपने सबसे सुनहरे दौर पर था, उन्होंने 27 साल की उम्र में एक उद्योगपति से शादी कर ली और फिल्मों को अलविदा कहकर विदेश चली गईं। उन्होंने अपनी शुरुआत बाल कलाकार और साइड डांसर के रूप में की थी। उन्होंने जब विदाई ली तो वो बॉलीवुड की निर्विवाद हीरोइन बन चुकी थी। मुमताज का जीवन सिखाता है कि अगर हुनर और लगन हो तो राह में आने वाली हर रुकावट को पार किया जा सकता है।

एक ही कलाकार सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया, क्योंकि अब कार्यक्रम समाप्त होने वाला है और हमने आपको ईमेल आईडी बता ही दी थी। आप अपनी प्रतिक्रिया इस कार्यक्रम के बारे में भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है iprradiodelhi@gmail.com। मुझे अपने दोस्त को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, मैटनी मेलेडीज।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, 3 बज चुके हैं, वक्त है कार्यक्रम मैटनी मेलोडी सुनने का। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं यानी रिया आप सभी के साथ। दोपहर का वक्त हो और साथ ही सुरेले नगमे हो तो दिन का आनंद ही कुछ और हो जाता है। तो आइए संगीत के इस खूबसूरत पलों को

मिलकर जिए। आरंभ में आइए सुनते हैं आराधना फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। गीत आनंद बख्शी के लिखे हैं और संगीत SD बर्मन ने दिया है।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: मैटिनी मेलोडीज के कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म ज्वेल थीफ से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और भूपिंदर सिंह की। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार SD बर्मन।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, ST बर्मन द्वारा संगीतबद्ध और शैलेंद्र द्वारा रचित ये गीत 1965 की क्लासिक हिंदी फिल्म गाइड से हमारी अगली पेशकश। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। आपको बता दें, इस फिल्म का संगीत भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर माना गया है।

8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

कश्मीर की कली 1964 में रिलीज हुई ये फिल्म, इसको संगीत ओपी नैयर ने दिया है और गीत के बोल SH बिहारी ने लिखे हैं। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

उर्दू मजलिस के तमाम सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। सामईन हाजिर हूँ मैं प्रोग्राम अंदाज़े नज़र के साथ। सामईन, मुंशी प्रेमचंद एक नामवर अफसाना निगार और नावल निगार हैं। वो मुंशी अजायब लाल के यहाँ सन 1880 को ज़िला वाराणसी में पैदा हुए।

0: इब्तदाई दौर में प्रेमचंद ने बहुत ज़्यादा गुर्बत का सामना किया, इसीलिए प्रेमचंद के अक्सर किरदार माशरे के सताए हुए आम लोग नज़र आते हैं। उन्होंने मज़लूम लोगों, ख़ास तौर पर देही आवाम जो महाजनों के जुल्म का शिकार थे, उनको अपने कलम के ज़रिए ज़बान दी। प्रेमचंद ने उर्दू ज़बान व अदब को फ़िक्र की एक नई जहत से रोशनास कराया। प्रेमचंद के यहाँ गांव की ज़िंदगी का जो पहलू दिखाया गया है, वहाँ मंदिर और मस्जिद, अजान और घंटी की आवाज़, होली और ईद सब यकसा तौर पर नज़र आते हैं। उनकी तहरीरों में अलग अलग मजाहिब के लोग एक दूसरे के त्यौहारों और दुख दर्द में शामिल होते दिखाई देते हैं। प्रेमचंद के यहाँ हकीकत पसंदी साफ झलकती है। उनके अफसानों और नावलों में हिंदुस्तान के देही इलाकों, वहाँ के बाशिंदों और वहाँ के खेतों की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है। प्रेमचंद के फिक्शन में मुश्तरका तहजीब, आइए इस मौजू पर एक मुबाहिसा सुनते हैं। निजामत कर रहे हैं जनाब शफी अयूब।
1: मुंशी प्रेमचंद, उर्दू हिंदी दोनों ज़बानों में फ़िक्शन के हवाले से, अपनी तहजीबी शनाख्त के हवाले से और हिंदुस्तान के गांव देहात की अक्कासी के हवाले से एक बहुत ही जाना पहचाना नाम। धनपत राय के नाम से याद करें या नवाब राय के नाम से याद करें, मुंशी प्रेमचंद 31 जुलाई 1880 को पैदा हुए। जद्दोजहद भरी ज़िंदगी थी मुंशी प्रेमचंद की। उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों में लिखते थे, दोनों ज़बानों में मकबूल हैं। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट से लेकर बीए और एमए के निसाब में मुंशी प्रेमचंद के अफसाने और नावल पढ़ाए जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद के फ़िक्र फ़न पे गुफ्तगू होती है। बड़े बड़े विद्वान और स्कॉलर मुंशी प्रेमचंद को याद करते हैं, उनके फ़िक्र फ़न पे गुफ्तगू करते हैं और मुंशी प्रेमचंद के फिक्शन में जो मुश्तरका तहजीब की जो पहचान पेश की गई है उसको याद करते हैं, उस पर बात करते हैं। और इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारा जो ये मुल्क है, ख़ूबसूरत मुल्क हिंदुस्तान, हमारी एक पहचान है, वो पहचान है हिंदुस्तानियत की। हमारी एक पहचान है, वो पहचान है भारतीयता की। हमारी एक तहजीब है, उस तहजीब को बड़ा खूबसूरत नाम दिया गया, दो पवित्र नदियों के नाम पे, जो नदियाँ हैं गंगा और जमुना। उस गंगा जमुनी तहजीब के हवाले से जो लिटरेचर, जो अदब हमारे सामने आया, उसका एक बहुत नुमाया नाम मुंशी प्रेमचंद का है। आज आकाशवाणी के स्टूडियो में हमारे साथ तीन बड़े स्कॉलर तशरीफ़ रखते हैं जो प्रेमचंद के फिक्शन में मुश्तरका तहजीब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। प्रोफेसर जानकी प्रसाद शर्मा, जो कि उर्दू और हिंदी का संगम है। प्रोफेसर जानकी प्रसाद शर्मा खुद शायर भी हैं, अदीब हैं, उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों में लिखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर खालिद अशरफ साहब, फिक्शन की तनकीद के हवाले से। प्रोफेसर खालिद अशरफ पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी जाने जाते हैं। आपने उर्दू अफसानों की पूरी इंसाइक्लोपीडिया तरतीब दी है, उसमें मुंशी प्रेमचंद का वो हिस्सा भी शामिल है, इसलिए उन्हें एक अथॉरिटी माना जाता है फ़िक्शन के हवाले से। और जनाब खुर्शीद अकरम साहब मौजूद हैं, आप ख़ुद एक अफसाना निगार हैं, अदीब हैं, आपकी कई किताबें मंजरेआम पे आई हैं, शायर भी हैं, ख़ासकर नज़मिया शायरी के हवाले से जाने जाते हैं और बहुत खूबसूरत अफसाना निगार हैं। मैं आज की इस बज़ में जनाब खुर्शीद अकरम, प्रोफेसर खालिद अशरफ और प्रोफेसर जानकी प्रसाद शर्मा साहब का इस्तकबाल करते हुए आज की इस गुफ्तगू का आगाज़ प्रोफेसर जानकी प्रसाद शर्मा साहब से करते हैं। सबसे पहले तो हम मुश्तरका तहजीब को ही समझने की कोशिश करते हैं।
2: हर गुलेरा रंग बुए दीगरस्त, सकाफती तकसीरियत हमारे मुल्क का इम्तियाज है। मैं प्रेमचंद के अदब से, उनके अफसानों और उनके नावलों से बहुत सी ऐसी नज़ीरें पेश करूँगा। इससे पहले मेरा ख्याल ये है कि कल्चर को लेकर, संस्कृति को लेकर, तहजीब को लेकर जितनी गलत तशरीह हैं, जितनी गलत व्याख्याएं और धारणाएं और तसव्वुरात, ख्यालात जो सामने आ रहे हैं, वो हमारे अवाम में बहुत सारे जो संदेह हैं वो उनको पैदा करते हैं
3: जी।
2: मेरा अपना ऐसा मानना है कि जो 1200 साल की जो हमारी तारीख है, उस तारीख के तनाजुर में अगर हम तहजीब पर बात करते हैं तो उस तहजीब के माने मुश्तरका तहजीब ही हैं।
3: बिल्कुल बिलाशुबा।
2: हिंदुस्तान में जिस तरह से हमारे मुआशरे में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में इख्तलाफ है
1: जी,
2: कौन सा ऐसा शोबा है जहाँ दोनों में से कोई भी ये कह सकता है कि यहाँ कोई और शरीक नहीं है?
1: बिल्कुल सही है।
2: शराकत हर जगह है,
3: हर जगह।
2: तो हिंदुस्तान के तनाजुर में हमारे मुआशरे की साख्त जिस तरह की है, उस साख्त के तनाजुर में अगर हम तहजीब

0: दूसरी बात यह है कि प्रेमचंद खाला में पैदा नहीं हुए
1: जी।
0: सच्चाई ये है कि प्रेमचंद एक सेक्युलर जहन के अदीब होने के पीछे उर्दू की ट्रेडिशन का हाथ भी है।
2: यकीन है, यकीन बहुत उम्दा बात कही,
0: क्योंकि उर्दू और हिंदी की जो परंपराएं थी उनमें आवाजाही थी, उनमें बहुत लेन देन भी था, सब कुछ था, लेकिन उर्दू की जो रवायत है, बल्कि उर्दू जबान का जो जन्म है, वो रवायत तो सेक्युलर रवायत रही है
1: जी, बिल्कुल।
0: तो उर्दू की रवायत का एक बहुत बड़ा हाथ था प्रेमचंद के सेक्युलर जहन की तश्कील के पीछे, एक बात। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तानी नशातुस्तानिया और जंग आजादी से जो कदरें हमने हासिल की, उन कदरों की बहुत मोतबर जो अक्कासी है वो प्रेमचंद के अदब में हमें नजर आती है
1: जी।
0: ये भी मैं अर्ज करूं कि दरअसल प्रेमचंद ने यह बात समझ ली थी, जो अक्सरियत है कि जो कम्युनिटी है
1: जी जी,
0: बहुत सी गलत फहमियों का शिकार है इस्लाम को लेकर। तो प्रेमचंद ने, लोग ये समझते हैं कि ये तो कहानियां लिख दी उन्होंने, ये बाकायदा इसके पीछे प्रेमचंद का एक बड़ा मकसद काम कर रहा था। अब मसलन अफ़ वो कहानी है
1: जी,
0: एन फे वाफ
1: जी,
0: तो जिस हिंदी में क्षमा नाम से कहानी मिलती है
1: जी, जी।
0: वो स्पेन की विजय जो मुसलमानों की थी उसके संदर्भ, और वहाँ आखिर में जाकर उस आदमी के लिए मुआफ किया जाता है जो कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन
1: जी, जी। वो क्षमा कहानी वहां से आती
0: है। तो ये कहानी लिखी इसलिए कि इस्लाम का एक अहम जुज है क्षमा, अफ, ये बताने के लिए कहानी लिखी
1: जी।
0: फातिहा कहानी लिखी ये बताने के लिए, ईदगाह कहानी इसलिए लिखे कि मेले जुठेले हैं, नजीर मेलों पर बहुत लिख चुके
1: हैं,
0: ये रवायत वही है, सिर्फ दूसरी है
1: जी।
0: तो मेले जो हैं वो किसी कम्युनिटी के मेले नहीं होते, ये भी अलामत उसी सरकार तहजीब की है
1: जी।
0: तीसरी बात और एक अहम बात ये है कि हम प्रेमचंद पर जब बात करें तो कंटेम्पोरेरी जो हिंदी अदब है उनके वक्त का, उनके दौर का जो ज़हनी तरजीहात
2: उस जमाने के हिंदी अदब की,
0: उस जमाने की हिंदी तो कहीं उस सतह को नहीं छूती हैं, ईमानदारी की बात है। प्रेमचंद जहाँ सोच रहे थे और हमारे मौशरे की हम आहंगी की जिस तरह से वो कोशिश कर, जो उनकी चिंताओं में शामिल था वो उस वक्त के हिंदी अदीबों की चिंताओं में शामिल नहीं था,
1: नहीं था।
0: ये बात हमें मान लेनी चाहिए। प्रेमचंद ने दिल्ली के एक बहुत मशहूर फिक्शन निगार आचार्य चतुर्सेन शास्त्री
1: जी, जी,
0: उनका घर भी हमारे करीबी है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने उसी दौर में जो इस्लाम का विश्व वृक्ष नाम की जो किताब लिखी
1: जी जी,
0: तो इस्लाम का विश्व वृक्ष किताब की प्रेमचंद ने बाकायदा उस किताब की तर्दीद करते हुए, उसका खंडन करते हुए, तो ये बात जो है समझने की है कि प्रेमचंद ने जो इस्लाम को लेकर प्रचलित गलत फहमियां थी, उन गलत फहमियों को दूर करने के लिए न सिर्फ कहानियां लिखी बल्कि मकाले भी लिखे, उन्होंने मजमून भी लिखे।
1: बहुत खूब। क्या प्रोफेसर जानकी प्रसाद शर्मा साहब, वाकई सच बात यह है कि प्रेमचंद जो है वो कितनी गलत फहमियाँ दूर करने का काम उन्होंने अपनी कहानियों के जरिए, अपने मजामीन का जिक्र कर रहे थे। प्रोफेसर खालिद अशरफ साहब बैठे हुए हैं और ये जो मुंशी प्रेमचंद का मामला है
2: जी,
1: वो एक तरफ अफसाने लिखते हैं, नॉवेल लिखते हैं, लेकिन उन्होंने मजामीन भी अच्छे खासे, मेरे ख्याल से 300 के आसपास मजामीन लिखे होंगे खालिद अशरफ साहब, और आपकी तो उन तमाम मजामीन पे नज़र है, तो मजामीन के हवाले से भी ज़रा गुफ्तगू।
3: अब डॉक्टर जानकी प्रसाद जी ने जो एक लाइन हमें दे दी है ना
1: जी,
3: तहजीब को, सकाफत को, कल्चर को और हिस्ट्री को और अदब का, जो कि पूरा प्लेसमेंट का एक बड़ा प्रोजेक्ट है ना
1: जी,
3: जिसमें प्रेमचंद शामिल थे
1: जी,
3: और प्रेमचंद खुद उस प्रोजेक्ट में जो एक तहजीबी प्रोजेक्ट था, एक सांस्कृतिक एक प्रोसेस चल रहा था
1: जी,
3: और प्रेमचंद हिंदी और उर्दू दोनों के राइटर थे
1: जी।
3: और मैं आपको एक अजीब बात अर्ज करूं कि प्रेमचंद पर चूंकि बहुत तरह की माशी दबाव रहते थे
1: जी,
3: और मानिक टाला तो जो स्कॉलर थे डॉक्टर कमरई साहब जो पहला काम किया उन्होंने, मेरे उस्ताद थे, मुझे खुशबख्ती है कि उनसे कुर्ब हासिल था। मानिक टाला ने लिखा है कि प्रेमचंद ने 3 हाथी पाल रखे थे, हंस, जागरण और सरस्वती प्रेस
1: जी,
3: इसलिए उन्हें रॉयल्टी वगैरह के मसले आए, इम्तियाज अली ताज से बात हुई। तो हुआ ये था कि 1915 के बाद प्रेमचंद हिंदी की तरफ शिफ्ट हुए थे
1: जी,
3: लेकिन शिफ्ट किस तरह से हुए थे, मैंने कई जगह से तहकीक की इस बात की
1: जी,
3: कि प्रेमचंद आखिर तक उर्दू यानी बख़त्ते फारसी लिखते रहे जो उनके मुसविदे

0: थे वो सारे के सारे ही कुलियतन
1: जी
0: फारसी रस्म अल्खत में हैं, उर्दू में। लेकिन एक साहब थे वर्मा सहर हंगामी, जो उनके अजीज भी थे मेरे ख्याल में,
1: जी
0: वो लिपियांतरण करते थे देवनागरी में।
1: जी
0: और होने ये लगा था कि जैसे चौगाने हस्ती जो नावल है प्रेम आश्रम के नाम से हिंदी
1: जी
0: में, वो 4 साल बाद छप गया था। और फिर ये होने लगा कि किताबें ज़्यादातर देवनागरी में छपती रहीं, लेकिन प्रेमचंद का इसरार था कि उर्दू में भी छपती रहें चीज़ें।
1: जी
0: और प्रेमचंद की तमाम तर तरबियत जो थी, बीए में तक भी उन्होंने फारसी का मजमून लिया, वो
1: जी जी
0: फारसी तहजीब के फारसी कल्चर के
1: आप
0: आदमी
1: ये
0: थे।
1: जानकी प्रसाद शर्मा साहब उस इशारा कर रहे थे कि जिस
0: जी
1: तहजीब ने प्रेमचंद की परवरिश की थी पीछे से वो, यानी आपने तो बड़ा
0: जी
1: अच्छा जुमला इस्तेमाल किया
0: जी
1: कि वो खला में पैदा नहीं हुए
0: जी
1: प्रेमचंद,
0: जी
1: एक तहजीबी रिवायत हमारे पास चली आ
0: तो
1: रही
0: मैं
1: थी।
0: ये
1: खाली साहब
0: शब्द
1: एक चीज मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, ये जो
0: बिल्कुल
1: मजामीन के हवाले से अगर बात
0: हाँ
1: करें तो जिस मुश्तरका तहजीब की हम बात कर रहे हैं तो उन मजामीन में भी उनका जिक्र है।
0: हाँ मजामीन के ज़्यादा ताल्लुक है। मजामीन तकरीबन 300 हैं
1: जी अच्छा,
0: और ज़्यादातर दयानारायण निगम का जो
1: जमाना अखबार है
0: ज़माना था उसमें
1: जी,
0: छपते थे
1: कानपुर से
0: वो।
1: जो निकलता
0: अब
1: था
0: मजमून देखिए बहुत सारे हैं, और मईशत पे भी हैं, साइंस पे भी हैं, तारीख पे भी हैं।
2: ये तो बाकायदा जिस मौजू पर आज हम गुफ्तगू कर रहे
1: जी
2: हैं
1: जी
2: ये
1: मौजू पे मजमून ही है
2: जो
1: उनका।
2: मजमून है इसी मौजू
1: जी
2: फिरका
1: जी
2: वारियत और तहजीब
1: तहजीब के
2: का
1: नाम
2: जिक्र।
1: से। जी
2: और मजे की बात यह है वहां पर वो डिस्कस करते हुए यहाँ पहुंचते हैं इस मकाम पर कि हिंदुस्तान में अलग से कोई हिंदू तहजीब नहीं है,
1: जी
2: हिंदुस्तान में अलग से कोई मुस्लिम तहजीब नहीं है,
1: जी जी
2: तहजीब है। और वो तहजीब जैसा जो मैंने अर्ज, वो मुश्तरका तहजीब है।
1: जी
2: अब
1: हाँ
2: आगे की मंजिल जो प्रेमचंद की है, जो
1: हाँ
2: एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट
1: जी जी
2: उनमें जो नजर आता है
1: जी
2: और गांधी जी से थोड़ा सा डेविएट करते हैं
1: जी जी
2: प्रेमचंद, जो अदम ताबुन की तहरीक की नाकामयाबी के बाद
1: हाँ तो क्या
2: प्रेमचंद करते हैं।
1: उनका भी उस मजामीन में इस तरह जिक्र
0: हाँ, तो
1: आता
0: मैं
1: है।
0: ये अर्ज कर रहा था कि
1: जी
0: मजामीन जो हैं, अब एक मजमून है अकबर आजम पे,
1: जी जी
0: अकबर द ग्रेट,
1: जी
0: उसमें जजिया वगैरह को डिस्कस करते हैं। और अकबर ने वो टैक्स हटा दिया था और
1: जी
0: उसको वो अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि अमली तौर पर वो तकरारात में ख्वाह मलकी हो या फौजी हो या माली, अब्दुल्ला और रामदास में कोई फ़र्क नहीं करता था।
1: जी
0: यानी अकबर की जो पॉलिसीज थी वो पूरी तरह सेकुलर
1: ये
0: थी।
1: मुंशी प्रेमचंद लिख रहे हैं
0: जी
1: अपने
0: फिर
1: मजमून
0: राजा
1: में।
0: मानसिंह के बारे में लिख, ये सब प्रेमचंद ने लिखा है, राजा मानसिंह का लिखा है, राजा टोडरमल का लिखा है जिन्होंने रेवेन्यू का सिस्टम यहाँ पे कायम किया,
1: जी
0: अली बिरादरान को लिखा है राम लखन की जोड़ी
1: जो हमारी जंग आज़ादी के बड़े
0: जंग
1: सिपाही
0: आज़ादी
1: रहे हैं,
0: बड़ी, तो
1: और
0: और उनके हमदर्द में, हमदर्द
1: जी
0: रिसाले में उनके प्रेमचंद
1: जी
0: के अफसाने भी छपते थे। और दूसरी बात जो मैं अर्ज कर रहा था कि किताबों के नाम देखिए आप,
1: जी
0: या अफसानों के नाम देखिए, सिलाए मातम, बेगर्ज मोहसिन, आहे बेकस, आलिम बेअमल, खंजर वफा, दस्त गैब, गोशे आफियत, मैदान अमल, चौगाने हस्ती, ऐसे लिख रहा है कि फारसी में लिख रहे हैं।
1: जी
0: और जो पहला अफसाना है जो बैन भी हुआ था, दुनिया का सबसे अनमोल रतन,
1: अनमोल वतन
0: मलका दिलफिगार और शहजादा दिलफरेब
1: जी
0: वगैरह वगैरह, शेख मखमूर, ये सारे जो हैं इस कदर उन पे जो मुश्तरका तहजीब एक तुलू हो रही थी ना यहाँ पे, जो फारसी के और हिंदी के और दूसरी जो तमाम हिंदुस्तानी अनासिर थे, हिंदुस्तानी जबानी थी,
1: जी जी
0: उसकी बेहतरीन नुमाइंदगी न सिर्फ प्रेमचंद के फिक्शन में बल्कि प्रेमचंद के मजामीन में, बल्कि प्रेमचंद के खतूत
1: खतूत
0: में भी
1: में भी,
0: नज़र
1: खतूत
0: आती
1: में भी
0: है।
1: नजर आती
0: हाँ
1: हैं वो बातें।
0: मजामीन पे हमारी तवज्जो कम रही है
1: जी जी
0: क्योंकि
1: जी
0: फिक्शन इस कदर पावरफुल है
1: जी हाँ
0: उनका
1: जी हाँ
0: कि हम उसी पे ज़्यादातर कंसंट्रेट करते
1: यानी
0: रहे।
1: हमें वो भी देखना चाहिए कि मुंशी प्रेमचंद ने जो मजामीन लिखे, जिनकी तादाद खालिद अरशद
0: जी
1: साहब 300 के करीब बता रहे हैं, जानकी प्रसाद शर्मा जी ने बताया कि वो किताबें छप चुकी हैं, और जमाना अखबार जो कि मुंशी दयानारायण निगम निकालते थे, कानपुर से निकलता था, उस जमाने का
0: जी
1: बड़ा
0: जी
1: अखबार था, उसमें मुंशी प्रेमचंद लगातार छप रहे थे। तो ये अच्छी बात लगी कि प्रोफेसर जानकी प्रसाद शर्मा साहब ने जिन बातों की तरफ इशारा किया, प्रोफेसर खालिद अशरफ साहब ने उन मजामीन और खतूत की बात की। हमारे साथ जनाबे खुर्शीद अकरम साहब हैं। मैं चाहता हूँ कि हुजूर, जो बहुत मशहूर अफसाने रहे हैं मुंशी प्रेमचंद के, उन अफसानों के हवाले से उनमें तहजीबी अक्कासी कैसे की गई है, कौन तहजीब कैसे नज़र आ रही है, किन लोगों को मौजूआत बनाया है मुंशी प्रेमचंद ने, अगर इस हवाले से ज़रा सी गुफ्तगू करें आप, फिर आपके बाद और कुछ और अफसानों के ताल्लुक से बात करेंगे। खुर्शीद अकरम साहब,
3: असल में सच्ची बात यह है कि प्रेमचंद ने बहुत ज़्यादा लिखा,
1: जी
3: और बहुत ज़्यादा लिखने वाला, मैं जिस बात का बड़ा कायल हूँ
1: जी
3: कि बहुत ज़्यादा जो लिखता है ज़िंदगी में उसकी शमूलियत बहुत ज़्यादा होती है,
0: जी
3: यानी वो किसी एक या दो पहलू पर नहीं शामिल होता
1: जी
3: या किसी एक दो पहलू पर मरकूज़ नहीं रहता,
2: जी
3: वो ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को देखता
1: तनाव
3: है।
1: ज़्यादा है उसके यहाँ,
3: तनव वो
1: बहुत
3: बहुत ज़्यादा
1: रंगारंगी ज़्यादा
3: होता
1: है
3: है,
1: उसके यहाँ,
3: उसको
1: मौजूद का तनाव
3: बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती
0: तो
3: है
0: उसकी ज़रूरत
3: उसको,
0: भी होती है।
3: और उसमें शुरू के ज़माने में तो बल्कि था कि भाई वो जो इस्लाही तहरीक थी मुसलमानों के दरमियान, इस्लाही
1: जी
3: नस्वा की तहरीक चल रही थी, उन जलसों में वो

0: अफसाने पढ़ने के लिए भी जाया करते
1: जी
0: थे,
1: जी
0: ये बहुत से ऐसे अफसाने भी उनके निकले। तो एक तो ये, दूसरी बात जो मैं शुरू में जानकी प्रसाद जी ने फरमाया कि दरअसल हिंदुस्तान की जो तहजीब है ये ऐसी मुश्तरक तहजीब है,
1: जी
0: और इसमें कोई शख्स जो फारसी और उर्दू के ज़रिया से जो अवामी ज़िंदगी में आया है
1: जी
0: उसका ज़हनी उफ़क यूं ही बड़ा हो जाता है,
1: बहुत
0: क्योंकि बहरहाल वो दो अलग अलग माशरे, दो अलग अलग धाराएं फ़िक्र की, तहजीबी धाराएं दोनों आकर के यहाँ मिल जाती
1: जी
0: हैं। जैसे शुरू में उन्होंने जो पहली कहानी लिखी थी, सबसे दुनिया का सबसे अनमोल रतन,
1: रतन
0: उन्होंने वो अफसानवी अंदाज में लिखा था, लेकिन दास्तान से और
1: दास्तान
0: अफसाने तक का जो उनका सफ़र है वहीं पे पता चल जाता है कि प्रेमचंद जो है
1: जी
0: वो जो रवायती दास्तान गोई थी उससे अलग हट करके हमारी उस वक्त की जो ज़िंदगी थी उस ज़िंदगी को वो अंगेज करना चाहते थे। अच्छा, अब उसमें ये बात है कि उन्होंने जो मसल मिसाल के तौर पे हजी अकबर जैसी कहानी लिखी, ईदगाह जैसी कहानी लिखी, नबी का नीति निर्वाह जो उन्होंने कहानी लिखी, दसियों कहानी, अभी जैसे अफ्व कहानी का जिक्र किया
1: जी
0: उन्होंने, करबला ड्रामा है उनका, शतरंज के खिलाड़ी, उन्होंने कहीं ये कोशिश नहीं की कि किसी तहजीब की या किसी समाज की या किसी मजहब की तरफदारी करें।
1: जी
0: वो बहुत ही एक मुनसिफाना जहन के साथ में वो अपनी बात इस तरह कह रहे थे कि वो लोग जो
1: जी
0: किसी के लिए मशकूक हैं हकीकत को वो हकीकत के पस मंजर में समझ सकें।
1: जी
0: ये प्रेमचंद के फिक्शन का एक बहुत बड़ा, इसके अलावा कि उन्होंने और तमाम मौजूदात पे, जाहिर है कि हमारी जो देही जिंदगी है, हमारी हिंदुस्तानी जिंदगी
1: जी
0: है,
1: जी
0: जिस तरह प्रेमचंद ने उसको लिखा और सबसे पहले लिखा, उसका तो कोई सानी ही नहीं हम आज तक पैदा कर
1: जी
0: सके,
1: हाँ
0: लेकिन ये जरूर हमारे मुश्तरक तहजीब को जिस तरह उन्होंने अपनी ज़ात में जज्ब कर लिया था।
1: जी
0: कहानी लिखना बहुत मुश्किल काम होता है, देखिए शायरी के लिए ये काम बड़ा आसान है,
1: जी
0: फिक्शन निगार हमेशा एक ज़मीन पर वो खड़ा रहता है,
1: बिल्कुल
0: उसको अपने किरदारों को डेवलप करना होता है और अपने किरदारों को वो ज़बान देनी होती है जो उसके जहन में है, और
1: यकीनन
0: यही बड़ा काम प्रेमचंद ने हम सबसे
1: बिल्कुल
0: पहले हमें करके दिखाया। हिंदुस्तानी मुश्तरक तहजीब के हवाले से भी मैं ये बात कह
1: क्या बात,
0: सकता
1: बहुत अहम बात खुर्शीद अकरम साहब कह रहे हैं। वाकई मुंशी प्रेमचंद की
0: हूँ।
1: ज़िंदगी के बारे में सोचें कि सिर्फ 56 साल की उम्र मिली थी उन्हें, कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं मिली, और इस कम उम्र में रिसालों के मुदीर भी रहे, 300 के करीब मजामीन लिखे, खतूत लिखे, इतनी सारी कहानियां लिखी,
2: फिल्में
1: इतने
2: फिल्मों की
1: फिल्मों के लिए
2: स्टोरी।
1: लिखा, और उर्दू अफसाना जो है वो एहसान से भरा हुआ है उनके। तो अब मैं दोबारा बहुत ही जल्दी, प्रोफेसर जानकी प्रसाद शर्मा साहब बैठे हुए हैं और जब आप बैठे हों तो जी चाहता है कि आपसे गुफ्तगू सुनी जाए, कि एक बार उनके फिक्शन या उनके अफसानों के हवाले से, जिस मुश्तरक तहजीब की बात कर
2: जी
1: रहे हैं, प्रोफेसर जानकी प्रसाद
2: मैं
1: शर्मा साहब।
2: चंद अफसानों
0: जी
2: के हवाले से कुछ अर्ज करना
0: जी
2: चाहूंगा
0: बताओ।
2: कि प्रेमचंद का समूचा जो अदब है उसका जो नज़्बुल ऐन है सुराज हासिल करना,
1: जी हाँ
0: बिल्कुल,
2: और प्रेमचंद किसी भी मसले पर या तारीख के किसी भी पहलू पर
1: जी हाँ
2: अगर गुफ्तगू करते हैं वो,
1: जी
2: तो एक जो मकसद है या यूं कहिए एक वाहिद एक मकसद उसूल आज़ादी,
1: जी
2: तो उनकी हर कहानी उस सम्त में जाती है,
0: जी जी
2: उनका कहा हुआ हर लफ्ज उस सम्त में जाता है,
0: जी
2: ये बात हमें जरूर देखना
0: ये बहुत
2: चाहिए।
0: अच्छी
1: बिल्कुल
0: बात की
1: बहुत
0: निशानदेही
1: अच्छी
0: की है आपने।
2: जिस जो उनके कंटेम्पोरेरी मुआसिर जो अदबा है इस बात को नहीं जानते थे,
1: जी
2: तो वो ये कहते थे प्रेमचंद के भाई ये कहतुर्रिजाल है, ये कहतुर्रिजाल जो है सिर्फ जो कम्युनल फोर्सेस तक ही महदूद चीज नहीं है, जो एक शहरी की जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है अदीब होने के साथ साथ,
1: जी
2: हमारे दौर के जो मसाइल अदब के मसाइल ही हमारे मसाइल नहीं जिंदगी के मसाइल की
0: जिंदगी
2: बात
0: के
2: नहीं है,
0: मसाइल, बड़ी बात यही है कि जिंदगी के
2: प्रेमचंद
0: मसाइल।
2: अदब के मसाइल से बाहर
1: जी
2: जाकर
1: हाँ
2: जो मुआशरे के जो इकतसादी मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं और दूसरे मसाइल, उन पर उनकी नजर जाती है,
0: जी
2: तो एक जिम्मेदार शहरी की तरह एक प्रेमचंद वहां में नजर आते हैं,
1: जी
2: सिर्फ एक वो अदीब नहीं जो कागज कलम लेकर अपने कमरे में बंद होकर बैठ के लिखता है। चंद अफसानों के हवाले से बात करूं, एक जो मंदिर मस्जिद अफसाना जो लिखा प्रेमचंद ने
1: जी
2: उसके छपने की बात आई तो मुंशी दयानारायण निगम को उन्होंने पढ़वाया तो उनका मियाँ क्या लिख दिया तुमने, ये
0: जी
2: इसे कैसे छापूंगा मैं, तो प्रेमचंद ने कहा कि अफसाने में तो मैं एक डॉट भी नहीं बदलूंगा और छापना तुम्हें ही पड़ेगा, छपा वो अफसाना,
1: जी
2: जाहिर है कि कुछ तंग जहन लोगों से आई वो शिकायत इस पर काफी बात। तो प्रेमचंद ने अपने 200-250 अफसानों में से सिर्फ एक अफसाने के बारे में स्पष्टीकरण दिया है, ये बात भी नोट कर लें आप,
1: जी
2: ये
1: हाँ
2: तारीखी
1: और वो यही
2: की बात,
1: अफसाना है
2: वो यही अफसाना
1: मंदिर
2: है,
1: मस्जिद।
2: मंदिर मस्जिद अफसाना ही है, इसकी सफाई में प्रेमचंद को लिखना पड़ा
1: जी
2: यहाँ पर।
0: हाँ।
2: इतना ही वक्त
1: यकीनन
2: हो
1: प्रोफेसर जानकी प्रसाद शर्मा साहब जैसी आलिमाना गुफ्तगू कर रहे हैं, और मुंशी प्रेमचंद के हवाले से खालिद अशरफ साहब, और वक्त तो हमेशा कम पड़ जाता है, खालिद अशरफ साहब गुफ्तगू कर रहे थे जनाब खुर्शीद अकरम साहब, और आप जिन अफसानों का जिक्र कर रहे हैं प्रोफेसर जानकी प्रसाद शर्मा साहब, यकीनन वो अफसाने आज भी आज की नस्ल को पढ़ना चाहिए, दोबारा पढ़ना चाहिए, तीसरी बार पढ़ना चाहिए, उसे बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई ज़ात नहीं, कोई मज़हब नहीं, कोई धर्म नहीं, इंसानियत जो है आदमियत है, उसकी बात करते हैं। अब मैं खालिद अशरफ साहब से चाहता हूँ कि कम वक्त में अपनी ज़रा ये बात को कंक्लूड की तरफ ले जाएं, और उन मज़ामीन के हवाले से या मुंशी प्रेमचंद के मुश्तरक तहजीब के हवाले से अपनी बात प्रोफेसर खालिद अशरफ साहब।
3: देखिए, बात तो तकरीबन सारी हो चुकी है
1: जी,
3: दो चार छोटी छोटी बातें अर्ज करूंगा
1: जी।
3: पंचायत अलगू चौधरी और जुम्मन शेख,
1: जी हाँ, बहुत मशहूर
3: साहब, कमाल का और जो मुश्तरक तहजीब का जो बेहतरीन तस्वूर है
1: जी हाँ,
3: कि दोस्ती बहुत गहरी है, जब मफाद टकराता है तो नाराज हो जाते हैं, जब उल्टा मफाद टकराता है तो वो नाराज हो जाते हैं, और फिर एक दिन उन्हें समझ आ जाती है कि भाई जो आदमी पंच होता है वो परमेश्वर का रूप होता है,
1: क्या बात है,
3: और दिल साफ हो जाता है, मजहब से बालातर है, इंसाफ जो है, इंसानियत, वो बड़ी चीज है।
1: बहुत क्या खूबसूरत अफसाना है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं खालिद अशरफ साहब।
3: दूसरा हाजी अकबर, दूसरा हाजी अकबर
1: बहुत ही
3: मुंशी साबिर हुसैन का, और जो मुलाजिमा है वो बच्चे से किस कदर अटैच्ड है, वो हद छोड़ के
1: जी हाँ,
3: उस बच्चे की खातिर फिर वापस आ जाती है, हालांकि
1: इंसानियत का दर्स है इसके अंदर, अफसाने यही बात
3: दिल बदस्तावर के हज अकबर,
1: क्या बात कर रहे हैं।
3: तीसरा अफसाना ईदगाह
1: जी हाँ,
3: उसमें एक मंजर है कि सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं
1: जी,
3: तो प्रेमचंद ने इतनी तारीफ की है उसकी कि सब लोग एक साथ उठते हैं, एक साथ झुकते हैं, ऐसा लग रहा है रोशनी हो रही है, मान ना कोई छोटा है और बड़ा है, और आखिर में चूंकि तरक्की पसंदी का मामला भी है, तरक्की पसंद तहरीक के बुनियाद गुजारों में थे,
1: वो चिमटा तो वहां आ जाता है बाद में है?
3: तो सज्जाद ज़हीर को जो लिखा है उन्होंने कि हम इस इदारे का दिल से खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जिंदा और ताबिंदा हो, हमें असल में ऐसे ही अदब की जरूरत है और हमने यही आदर्श अपने सामने रखा है, हंस भी इन्हीं मकासिद के लिए जारी किया गया है, और वो जो लिखा है ना कि अब हमें हुसन का मियार
1: बदलना होगा जी,
3: और लिखते हैं कि अदीब अदब जो है सियासत का रहनुमा होगा, सियासत से आगे चलेगा, जो पुराना तस्वीर है ना कि जो मार्क्सिस्ट तस्वीर है बेसिकली,
1: यानी वो समाज को आईना दिखाने वाला होगा, समाज का लंबरदार होगा, झंडा लेकर आगे चलेगा, और समाज के अंदर इंसानियत और आत्मीयत का दर्स देने वाला होगा।
3: फिर बनारस में एक PWA की ब्रांच मुकर्रर करते हैं, तो लिखते हैं उसे कि मैंने यहाँ एक ब्रांच कायम की है, बनारस कदामत परस्तों का अड्डा है, बनारस में रहते हैं लेकिन बनारस के बारे में कितना सही असेसमेंट है
1: जी,
3: और हमें शदीद मुखालफत का सामना करना पड़े, लेकिन दो चार भले आदमी यहाँ भी मिल ही जाएंगे, यानी उनका मानना यह था कि जो तरक्की पसंद हैं और सेकुलर हैं वो भले लोग हैं, फिर मैं पटना जाऊँगा और वहाँ भी एक शाह कायम करने की कोशिश करूँगा। तो मेरा अर्ज करना था कि वो महाजनी तहजीब जैसा अफसाना लिखा है
1: जी,
3: कि प्रेमचंद आखिर फेज में तरक्की पसंद और रोशन ख्याली और सेकुलरिज्म का जो नमूने उन्होंने तहरीरों में कायम किए
1: जी हाँ,
3: वो कमाल है,
1: कमाल का,
3: और उससे हमें आज
1: सीखना बहुत ज्यादा जरूरत है, आज भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारे सामने एक आदर्श होना चाहिए और हमारे सामने सच्चाई और इंसानियत का आदर्श होना चाहिए,
3: और इतना बड़ा प्रेमचंद
1: इतना बड़ा राइटर इसीलिए बनता है, चाहे उनके अफसाने हो या मजामीन हो या उनके नॉवल हो, उस पर हमने प्रोफेसर जानकी प्रसाद शर्मा को सुना, प्रोफेसर खालिद अशरफ साहब की बात। आखिर में मैं चाहता हूँ जनाब खुर्शीद अकरम साहब से कि प्रेमचंद के इस एस्पेक्ट के हवाले से क्या कहना चाहते हैं।
0: देखिए साहब, इतनी बातें जो इस वक्त अभी जानकी प्रसाद शर्मा जी ने और खालिद अशरफ साहब ने उनके अफसानों के हवाले से, उनके मजामीन के हवाले से, क्योंकि सब सच बात ये देखिए, अंदाज़ा कीजिए कि ये 100 साल से ज़्यादा
1: जी
0: पुरानी बात है जब उन्होंने लिखा था
1: जी,
0: और 1906 या 1907 से शुरुआत की थी उन्होंने लिखने की। 100 साल से ज़्यादा अरसे से कोई शख्स हमारे फिक्र और शऊर में अभी भी रोशनी फैला रहा है कि उनकी जो फिक्री सरोकार थे
1: जी हाँ,
0: वो बहुत बड़े थे
1: जी हाँ,
0: और उनके अदबी सरोकार भी बड़े थे। यानी किसी अदीब को आपको अगर उसको जज करना है, उसकी मानवियत
1: जी हाँ,
0: बाद के ज़मानों में कायम रहती है, वो इस बात से है कि उसके फिक्री सरोकार कैसे हैं, उसके समाजी सरोकार क्या हैं। प्रेमचंद ने अपने समाजी सरोकार और फिक्री सरोकार को अपने अदबी सरोकार का इस तरह हिस्सा बनाया कि उनकी तहरीरें, मजामीन, मजामीन के बारे में ये कहते हैं भाई ये ख़त्म हो जाती हैं, ये चीज़ें रह जाती हैं, फिक्शन रहता है, लेकिन उनका ना फिक्शन ख़त्म हुआ, ना उनकी नावल ख़त्म हुए, ना उनके खतूत और मजामीन हैं, आज भी इन पर बात होती है, रिसर्च हो रहे हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं। हमें तो ये लगता है कि भाई ये जो प्रेमचंद का पूरा अदब है ये बहुत ह्यूज है, बहुत वॉल्यूमिनस है, बहुत बड़ा है, लेकिन ख़ास तौर से नौजवान नस्ल को, आज के लोगों को, इन कहानियों को, इनके खतूत को

0: पढ़ना चाहिए प्रेमचंद पे बहुत सी,
1: जी
0: बाज लोगों ने बहुत तरह तरह के इल्ज़ाम भी लगाए, उन
1: इल्जाम
0: सब के जवाबात खुद प्रेमचंद की तहरीरों में मौजूद
1: मौजूद
0: हैं,
1: मौजूद है
0: उनकी ज़िंदगी में मौजूद हैं। इस जैसा आदमी हम खुशकिस्मत हैं उर्दू में लिखते हैं। हमारी कहानी की बुनियाद उस शख्स ने रखी थी जिसके फ़िक्री, अदबी और समाजी सरोकार इतने बड़े थे, इतने वसी थे।
1: बहुत खूब। क्या अच्छी बात कही जनाब खुर्शीद अकरम ने। इससे पहले प्रोफेसर खालिद अशरफ साहब उनके मजामीन और खतूत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। हम सब के मोहतरम प्रोफेसर जानकी प्रसाद शर्मा साहब ने सबसे पहले मुश्तरका तहजीब के हवाले से गुफ्तगू की, फिर प्रेमचंद के बहुत से अफसानों और उनके किरदारों के हवाले से गुफ्तगू की। सच बात तो यह है कि 31 जुलाई 1880 को लम्ही में पैदा होने वाले मुंशी प्रेमचंद, जो धनपत राय के रूप में पैदा हुए, एक ज़माने में नवाब राय के नाम से भी लिखा उन्होंने, फिर मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखे,
0: जी।
1: उनके नाम से न सिर्फ उर्दू अदब बल्कि हिंदी अदब, और मैं तो ये कहता हूँ कि पूरा हिंदुस्तानी अदब मुंशी
0: जी।
1: प्रेमचंद के एहसान से गराबार है। और आज आकाशवाणी के स्टूडियो में मोहतरम प्रोफेसर जानकी प्रसाद शर्मा साहब, प्रोफेसर खालिद अशरफ साहब, जनाब खुर्शीद अकरम ने न सिर्फ ये कि मुंशी प्रेमचंद के फिक्शन में, उनके खतूत और उनके मजामीन में मुश्तरका तहजीब की निशानदेही की, उन पे बात की, बल्कि एक अहम पैगाम भी आकाशवाणी के इस प्लेटफॉर्म से दिया, और खुसूसन नई नस्ल को भी ये पैगाम दिया कि आज के ज़माने में भी, 21वीं सदी की इस तीसरी दहाई में भी, हमको असर नौ मुंशी प्रेमचंद को पढ़ने की ज़रूरत है। और ये हम तमाम उर्दू वालों के लिए और तमाम मोहब्बत करने वालों के लिए, हिंदुस्तान की एकता में, हिंदुस्तान की संस्कृति और तहजीब में यकीन रखने वालों के लिए ये ज़रूरी है कि हम मुंशी प्रेमचंद को याद करें, उनके अदब को याद करें, उनके खिदमात को याद करें। इस अहम गुफ्तगू में शरीक होने के लिए मैं जनाब खुर्शीद अकरम साहब, प्रोफेसर खालिद अशरफ साहब और प्रोफेसर जानकी प्रसाद शर्मा साहब का बहुत ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।
2: शुक्रिया। प्रेमचंद के फिक्शन में मुश्तरका तहजीब, अभी आप इस मौजू पर मुबाहसा सुन रहे थे। निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे जनाब शफी अयूब। तो सामईन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अंदाज़े नज़र, जिसे आपके लिए तरतीब दिया था इंतज़ार अली सैफ़ी ने। और अब वक्त आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। मोहम्मद अली कमाल को अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 4 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
2: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
1: लोकसभा ने आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन

0: विधेयक 2026 पारित कर दिया। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने विधेयक पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच ये विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। श्री रिजिजू ने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए। सरकार ने कहा है कि विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक यात्राओं के दौरान पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। लोकसभा में आज विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूह के साथ आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में अटल नवाचार मिशन के जमीनी स्तर के नव प्रवर्तकों के एक समूह से बातचीत की। उन्होंने एक प्रदर्शनी में उनके नवाचारों का अवलोकन किया। राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि जमीनी स्तर के नवाचार समाज की जरूरतों के लिए उपयुक्त हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस कर्मियों के परिजनों ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज एक सहायक उप निरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सिर में चोट आई।
1: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइंस पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई @2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
0: महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में कल देर रात 4 मंजिला इमारत ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई। दमकल विभाग, पुलिस और नगर निगम युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य में लगे हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने आज सुबह दुर्घटना स्थल का दौरा किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में प्रीति ने जाम्बिया की कैथरीन मोपे को 5-0 से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Both houses of parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment at 12 noon, the presiding officer Dilip Saikia took up the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 for consideration and passage. Minister of State for Home Nithyananda Rai moved the bill amid opposition uproar. The bill was passed in the House amid ruckus without any discussion. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju criticised the opposition for not participating in the discussion. The minister said he had repeatedly appealed to the opposition, including the Congress, to ensure that such an important bill is properly discussed.
3: Parliament has been sent. The bill is to speak alone, not to create a ruckus. But you do not take part in the bill. Then you go out in the news and say that the government does not hold discussions, passes the bill without discussion. You cannot level this allegation. You have lost your chance. I just want to say this much, that the next bill that you bring, if you do such a ruckus in that too, then this will not be good at all. Therefore, cooperate. Do not create ruckus.
4: सहयोग करें, हंगामा ना करें।
2: The government has clarified that the ethanol blended petrol program does not compromise India's food security and is aimed at strengthening the country's energy security, reducing dependence on imported crude oil and providing better return to farmers. Responding to recent claims regarding the use of Food Corporation of India's rice for ethanol production, the Minister of Petroleum and Natural Gas said that food security obligations are always given top priority. The ministry also clarified that damaged grain, broken rice and food grain unfit for human consumption among the feedstocks used for ethanol production, helping convert otherwise unusable stocks into clean energy. At least 9 people lost their lives after the 4-story Kohinoor building collapsed late last night in Bhiwandi town of Maharashtra. Rescue and relief operations have been conducted on a war footing by the fire brigade, police and civic authorities. State's Disaster Management Minister Girish Mahajan visited the accident site this morning and took a detailed review of the rescue operations. He announced a financial assistance of 5 lakh rupees for the families of the deceased. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over death of people in the building collapse. Prime Minister Modi has announced an ex gratia of 2 lakh rupees for the next of kin of each deceased and a financial assistance of 50,000 rupees for the injured. The India Meteorological Department has issued a red colour warning for very heavy to extremely heavy rainfall over Gujarat and Madhya Maharashtra today. The weather agency has predicted heavy to very heavy rainfall conditions over parts of Arunachal Pradesh, East Rajasthan, Karnataka, Kerala, Mahe, Punjab and West Madhya Pradesh for the day. Benchmark domestic equity indices ended in a positive zone for the third consecutive session today. The Sensex rose 166 points or 0.2% to close at 78,095. The Nifty added 66 points or nearly 0.3% to settle at 24,384. At the Commonwealth Games, Indian weightlifter Lovpreet Singh won a silver medal in the men's 110-kilogram category, while Seema Kaliramna bagged a bronze medal in the women's discus throw at Glasgow last night. Australia continued to lead the standings with 110 medals, while India were 10th with 17 medals on day 8. India's medal count includes 3 gold, 10 silver and 4 bronze. In the women's discus throw, Seema Kaliramna clinched a bronze medal with 58.65 metres, while compatriot Nidhi Rani finished 4th. Earlier in the day, Neeraj Chopra qualified for the men's javelin throw finals. Javelin throwers Rohit Yadav and Yashveer Singh have also entered the finals. Prime Minister Narendra Modi today congratulated weightlifter Lovpreet Singh for winning the silver in the men's plus 110-kilogram event at the Commonwealth Games in Glasgow, Scotland. In a social media post, Mr. Modi mentioned that Lovpreet's outstanding performance in the snatch event set a new Commonwealth Games record. Prime Minister Modi also congratulated Seema Kaliramna, securing bronze medal in the women's discus throw event in Commonwealth Games 2026. And that is the end of this news bulletin.
4: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। श्रोताओं, समय हुआ है शाम के 4:10 और ये वक्त है आपको गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना देने का। तो आइए आपको गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी दे दें। सबसे पहले जो व्यक्ति हैं गुमशुदा हैं, उनका नाम है वसीम, उम्र है 23 साल, ये पुरुष हैं, रंगोरा, कद 152.4 सेंटीमीटर, आँख कान नाक औसत। वसीम आनंदी फार्म हाउस मुरादाबाद से लापता हैं। अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है प्रथम, ये पुत्र हैं जितेंद्र कुमार के। प्रथम की उम्र है 12 वर्ष, कद 4 फुट 2 इंच, ये 21 जुलाई 2026 को हर्ष विहार दिल्ली से लापता हैं। करण पुत्र राजदेव तिवारी, करण की उम्र है 14 साल, ये पुरुष हैं, इनका शरीर मध्यम है, कद 5 फुट 2 इंच। करण ने सफ़ेद टी शर्ट, लाल लोअर और नीली चप्पल पहनी हुई है, ये सुशील गार्डन मंडोली दिल्ली से लापता हैं। अगली गुमशुदा व्यक्ति का नाम है अनामिका, पुत्री यशपाल, ये लड़की हैं, इनकी

उम्र है 17 साल, कद 5 फुट, रंगे हुआ शरीर सामान्य है। ये 7 अप्रैल 2026 को ग्राम दपथला मेरठ से लापता है। अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है श्रीमती कमलेश, पत्नी स्वर्गीय रफेल बर्नार्ड। ये महिला हैं। कमलेश जी की उम्र है 70 वर्ष, कद 5 फुट, रंग सांवला, चेहरा सामान्य। इन्होंने पीले रंग का सूट, सलवार और जूते पहने हुए हैं। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये 10 अप्रैल 2026 को जुबलीगंज रजबन बाजार मेरठ से लापता है। इरम ये पुत्री हैं आस मोहम्मद की। ये महिला हैं जिनकी उम्र है 24 साल, कद 5 फुट, शरीर सामान्य है। ये 20 मई 2026 को जाकिर कॉलोनी थाना लोहिया नगर मेरठ से लापता हैं। अगली गुमशुदा व्यक्ति का नाम है साहिबा, ये पत्नी है अकरम की। महिला हैं, उम्र है 26 साल, कद 5 फुट 2 इंच, रंगे हुआ, चेहरा गोल, शरीर सामान्य है। इन्होंने हरे रंग का सलवार सूट पहना हुआ है। ये 5 मई 2026 को ग्राम मुरलीपुरी ककरखेड़ा मेरठ से लापता है। और अंतिम गुमशुदा व्यक्ति का नाम है मुस्कान, पुत्री इकरामुद्दीन, ये लड़की हैं। इनकी उम्र है 19 साल, कद 5 फुट, रंग साफ, चेहरा सामान्य। ये 28 मई 2026 को ग्राम पूटखास थाना रोहटा जिला मेरठ से लापता है। श्रोताओं, इन गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में कोई भी जानकारी आपके पास है या कोई भी सूचना आपको मिले, तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जाइए और वहाँ इनकी सूचना दीजिए। और दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि टोल फ्री नंबर 112, इस पर आप डायल करें और जो भी सूचना आपके पास हो उस सूचना को पुलिस के साथ साझा करें। तो अभी हमारे श्रोता गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 4:15 हुए हैं और आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवाणी।

0: नई दस्त के नया राग है, अंदाज है जरा हट कर एक नया आगाज है। यादों का कारवां लफ्जों के मोतियों से सजाते हैं, आइए इस सफर पर आप और हम मिलकर कुछ गुनगुनाते हैं। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? युववाणी के आज के इस एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट शैलजा, और मेरे साथ है मेरी बहुत ही प्यारी को होस्ट मनुष्या।
1: नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी दोस्त मनुष्या। आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ में आप सभी का स्वागत है। अगले कुछ पलों तक हम आपके साथ लेकर आ रहे हैं मनोरंजन, संगीत, दिलचस्प किस्से और कुछ ऐसी बातें जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएंगी।

0: तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक खूबसूरत सफर।
1: मनु, आज है फ्राइडे और फ्राइडे का इंतजार हम सभी को बेसब्री से होता है, क्योंकि इसी के साथ हो जाता है हमारा वीकेंड मोड ऑन। अलार्म से थोड़ी छुट्टी, डेडलाइन से थोड़ा ब्रेक, खुद के साथ कुछ पल और म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का एक हेल्दी डोज टू गेट रिचार्ज्ड फॉर अ न्यू वीक एंड न्यू चैलेंजेस। तो आप बताइए मनु, कैन आई कॉल यू मनु?
0: एब्सोल्युटली।
1: ओके, सो आपके लिए वीकेंड के क्या है मायने?
0: मेरे लिए वीकेंड सिर्फ छुट्टी नहीं बल्कि खुद से मिलने का एक बहाना है। पूरे हफ्ते की भागदौड़ के बाद जब थोड़ा वक्त अपने लिए मिलता है तो लगता है जैसे ज़िंदगी फिर से रिफ्रेश हो गई। कभी अच्छी किताब, कभी पसंदीदा फिल्म, कभी परिवार और दोस्तों के साथ समय, और हाँ, अच्छे संगीत के बिना तो मेरा वीकेंड पूरा ही नहीं होता।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और दोस्तों, अब साथ ही हो चुकी है आस्था और भक्ति के पावन महीने यानी कि सावन की शुरुआत। कांवरियों के जत्थे, आसमां में गूंजते बम भोले के स्वर, बारिश की फुहारें और सावन के झूले सब मिलकर कितना प्यारा समा बांध देते हैं। और इसी बात से शुरू करते हैं आज का खूबसूरत सफर भोले बाबा के इस प्यारे से गीत के साथ।

हर हर महादेव। तो एनर्जी का बूस्टर डोज तो हमें मिल ही चुका है, तो आइए अब अपने लिसनर्स को बताते हैं कि आज के इस फैंटास्टिक फ्राइडे के पिटारी में क्या कुछ है खास। दोस्तों, आज की बात में होगा सिनेमा, ओटीटी और एंटरटेनमेंट का तड़का। ले चलेंगे आपको कुछ बेहतरीन डायलॉग्स के नॉस्टैल्जिक सफर पर। मन से माइक्रोफोन में जानेंगे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद और झारखंड के उभरते हुए फिल्म डायरेक्टर रविराज मुर्मू के बारे में। टुडे इन

0: हिस्ट्री में याद किया जाएगा मोहम्मद रफ़ी जी, महान शहीद सरदार ऊधम सिंह जी और अपने समय की बेहतरीन अदाकारा मुमताज़ जी को, और झूमेंगे उन गानों के बीट्स पर जो सेट करेंगे आपकी और हमारी वीकेंड वाइब्स।
1: इतना ही नहीं, क्विक बस का भी करिए इंतज़ार, क्योंकि इसमें है आपके लिए बिंज वॉचिंग लिस्ट तैयार।
0: बिल्कुल, तो आइए शुरू करते हैं आज की बात से। मनु, आप जानती हैं, जब बात होती है सिनेमा की तो कुछ डायलॉग्स, कुछ सीन्स और कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हमारे मन पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। वो स्टोरीज जिनसे हम रिलेट कर पाते हैं, वो कभी हमें हंसाती हैं तो कभी यादों के ईजेड बॉक्स में ले जाती हैं। अरे हाँ, देखो ना, यादों से मुझे ये जवानी है दीवानी का वो डायलॉग याद आ गया, जब नैना कहती है, मिठाई के डिब्बे की तरह होती हैं यादें, जो एक बार खुला तो सिर्फ एक बाइट ही नहीं खा पाओगे। आपका क्या कहना है मनु?
1: बिल्कुल शैलजा, मेरा भी यही मानना है कि यादगार फिल्मों के पीछे सिर्फ कलाकार ही नहीं बल्कि उन राइटर्स की सोच और मेहनत भी होती है जो शब्दों से अपनी भावनाएं गढ़ते हैं। उनके लिखे हुए संवाद और कहानियाँ वह पुल बनते हैं जो पर्दे पर दिख रही दुनिया से हमारी ज़िंदगी को जोड़ देते हैं। शायद इसीलिए कई बार कुछ डायलॉग्स और कैरेक्टर्स सालों बाद भी हमारे साथ हमें याद रहते हैं।
0: और जब बात राइटिंग्स एंड डायलॉग्स की हो और गुलजार साहब का जिक्र ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? मनु, आपने उनका लिखा ये गीत सुना है?

0: थी।
1: वाह, क्या खूबसूरत और सदाबहार गीत है। हर बार सुनो तो कुछ नया एहसास दे जाता है।
0: है ना दोस्तों? और अगर इन लफ्ज़ों पर ज़रा ठहर कर सोचें तो एहसास होता है कि ये सिर्फ किसी एक इंसान के हमारी ज़िंदगी में आने की बात नहीं कहते। कभी कभी जीने की वजह कोई रिश्ता नहीं, बल्कि हमारा पैशन, हमारी क्रिएटिविटी या फिर वो काम होता है जिसे करते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता। वही चीज़ जो हर सुबह हमें एक नई उम्मीद के साथ उठने की वजह देती है, जो ज़िंदगी को सिर्फ गुजरने नहीं बल्कि जीने का एहसास कराती है।
1: सच कहा आपने शैलजा, फिल्मों और गीतों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि ना सिर्फ वो हमें एंटरटेन करती है, बल्कि हमें ज़िंदगी को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव भी दे देती है। कभी उम्मीद जगाती है तो कभी हौसला दे देती है, और कभी हमें खुद से मिलवा देती है। और जब बात गुलजार साहब की हो तो हर एक पंक्ति दिल में उतर जाती है। इसी बात पर आइए लिसनर्स, सुनते हैं उनका लिखा हुआ एक बेहद खूबसूरत गीत, चल्ला, फ्रॉम द फिल्म जब तक है जान।

0: वाह मनु, मानना पड़ेगा कितनी खूबसूरती से सजाया गया है इस गाने को। ओरिजिनली पंजाबी फोकलोर से इंस्पायर्ड ये सॉन्ग हम में से ज़्यादातर लोगों की रियल लाइफ का रिफ्लेक्शन ही तो है। एक ऐसा रिफ्लेक्शन जहाँ हम अपने घरों से दूर, अपने कंफर्ट जोन से दूर, नए शहर में, नए लोगों के बीच खुद की तलाश में हैं, अपने एक नए आशियाने की तलाश में हैं, और जहाँ कभी कभी कुछ दोस्तों के साथ हमें सुकून के दो पल दे जाता है ना मनु?
1: राइटली सेड शैलजा। और जब बात हो दोस्ती की, तो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम्हें वो फेमस मोनोलॉग याद है?
0: अच्छा, कहीं आप फरहान अख्तर की उस फेमस पोइट्री की बात तो नहीं कर रही जो मिलेनियल्स ही नहीं जेंजी के बीच भी काफी वायरल है, विच गोज लाइक, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों जैसे आजाद रहना सीखो तुम, एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोलें अपनी बाहें, हर एक नया समा देखें ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम।
1: वाओ, व्हाट अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग इट इज़। एंड इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट सॉन्ग, व्हिच इज़ फ्रॉम द फिल्म एकता टाइगर लापता।

0: फ्रेंड्स, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट मन से माइक्रोफोन की ओर। तो शैलजा बताइए, आज के सेगमेंट में क्या खास है?
1: मनु, आज हिंदी एंड उर्दू साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से मशहूर मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है। सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में जन्मे प्रेमचंद जी वो लेखक हैं जिन्होंने हिंदी को जनभाषा बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके उपन्यास जैसे गोदान, गबन, सेवा सदन और कहानियाँ जैसे पूस की रात, कफन, नमक का दरोगा आदि को पढ़कर उस समय के समाज में घट रहे मूल्य, जीवन और परिस्थितियों के बारे में पता चलता है। उनकी कहानियों में ईमानदारी की अहम भूमिका है। इसका प्रमाण पंच परमेश्वर में उनकी कही बात है कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे। आप जानते हैं उनका असली नाम धनपत राय था, लेकिन वे पहले नवाब राय और बाद में प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। उन्होंने कन्हैयालाल मुंशी जी के साथ मिलकर हंस पत्रिका का संपादन किया और तभी से उन्हें मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से जाना जाने लगा।
0: जब हम उनकी ईदगाह कहानी पढ़ते हैं तो हम उस छोटे से बच्चे हामिद की मनोदशा को एहसास होता है जो खिलौने की बजाय चिमटा खरीदता है ताकि खाना बनाते समय उसकी दादी के हाथ ना चले। प्रेमचंद जी हमें बताते हैं कि जिम्मेदारियों का बोझ कैसे बचपन से ही हमें मच्योर बना देता है।
1: दोस्तों, आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। प्रेमचंद जी की जो आखिरी फोटो जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं उसे लेकर प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के फटे जूते नाम से एक बेहतरीन हास्य व्यंग निबंध लिखा है जो मुंशी प्रेमचंद के सादगी भरे जीवन और उनके व्यक्तित्व की सच्चाई को दिखाता है। आपको कभी मौका मिले तो पढ़िएगा जरूर।
0: सच में मुंशी प्रेमचंद जी वास्तव में आधुनिक युग के कालिदास हैं जिन्हें हमारे दादा दादी, मम्मी पापा और हम सभी ने पढ़ा है, और आगे भी जो पीढ़ियाँ होंगी हिंदी साहित्य पढ़ेंगी सबसे पहले वो प्रेमचंद जी को ही पढ़ेंगी।
1: और अब बात करते हैं रविराज मुर्मू जी की। मनु, कुछ कहानियाँ केवल किताबों में नहीं मिलती, कभी कभी वो घने जंगलों की खामोशी में छिपी होती हैं, नदियों की लहरों में बहती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बुजुर्गों की आवाज़ों में जिंदा रहती हैं। लेकिन सोचिए, अगर ऐसी ही एक कहानी जंगलों की गहराइयों से निकलकर सीधे नेशनल फिल्म अवार्ड्स के मंच तक पहुंच जाए तो?
0: जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के एक छोटे से आदिवासी गांव से निकले रविराज मुर्मू की, जिन्होंने साबित कर दिया बड़े सपनों के लिए बड़े शहर की नहीं बल्कि बड़े विश्वास की जरूरत होती है।
1: सही कहा आपने, बचपन में रवि की दुनिया किताबों से ज्यादा किस्सों की थी। संथाली फोक टेल्स, बोंगा यानी आत्माओं और प्रकृति के अदृश्य संसार की कहानियाँ, जंगल, नदी, पहाड़ और उनके बीच बसती अनगिनत मान्यताएं, ये सिर्फ कहानियां ही नहीं थीं बल्कि उनकी संस्कृति की वे धड़कनें थीं जो पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजती रही हैं।
0: समय बीता, रवि ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पढ़ाई की और फिर मुंबई में अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए काम भी किया, लेकिन एक बात उनके मन में बार बार उठती थी, हम हमेशा दूसरों की कहानियाँ देखते हैं, हमारी अपनी कहानी कौन सुनाएगा।
1: और यहीं से शुरू हुआ उनका सफ़र। ना निर्माता, ना बड़ा बजट और ना ही कोई बड़ा बैनर, लेकिन अपनी मिट्टी की कहानियों पर अटूट भरोसा था, इसलिए उन्होंने तय किया कि शुरुआत चाहे छोटी हो लेकिन कहानी तो

0: अच्छा चेलजा, वैसे अंगेन का मतलब क्या होता है?
1: मनु, अंगेन का संथाली भाषा में अर्थ है जो दिखाई नहीं देता, यानी कि अदृश्य, इनविजिबल, लेकिन जो मौजूद होता है। दोस्तों, फिल्म की कहानी भी उतनी ही अनोखी है। सुक्कू नाम का एक बांसुरी वादक, जिसकी धुने आत्माओं की दुनिया में रहने वाली एक देवी को आकर्षित करती हैं। पानी के रास्ते वह उस अदृश्य दुनिया में पहुंच जाता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसकी असली जगह तो अपने लोगों, अपने गांव और अपनी मिट्टी के बीच है, और वहीं से शुरू होती है उसकी वापसी की तलाश।
0: कहानी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ वैसे ही जैसे बचपन में हमारी दादी और नानी थपकी देते हुए सुनाया करती थी।
1: हाँ, इंटरेस्टिंग तो है, पर ये एक संदेश भी देती है कि किस तरह विकास की तेज रफ्तार और तेजी से होते अर्बनाइजेशन ने इंसान को नेचर से, उसकी जड़ों से दूर कर दिया है। इस कहानी में जब सुक्कू इस दुनिया से उस दुनिया के बीच का फासला तय करता है, तो वो पानी के रास्ते जाता है। दोस्तों, रविराज का पानी को एज अ पोर्टल यूज करना इस बात का सिंबल है कि धरती पर जीवन की शुरुआत पानी से हुई है, और जिसे साइंस भी मान्यता देता है।
0: राइटली सेड। अंगेन दोस्तों और थिएटर आर्टिस्ट के साथ लिमिटेड रिसोर्सेज में बनी वह फिल्म है जिसे पहले मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सराहा गया,
1: और हाल ही में इसे 72nd नेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर का खिताब भी मिला।
0: ये अवार्ड इसलिए भी खास है क्योंकि अंगेन नेशनल फिल्म फेस्टिवल जीतने वाली पहली संथाली फिल्म बनी और किसी आदिवासी भाषा में केवल दूसरी फिल्म जिसे अब तक राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान मिला।
1: मनु, आप जानती हैं रवि की स्टोरी मुझे क्यों इंस्पायरिंग लगी? क्योंकि उनकी कहानी का सबसे खूबसूरत संदेश यही है कि बड़ी पहचान बनाने के लिए हमेशा बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं होती। रवि ने अपनी मिट्टी की आवाज़ सुनी, उसे कैमरे पर उतारा। उनका संकल्प और दृढ़ शक्ति ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गए, जिसने उनके सपने को हकीकत में बदल दिया। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी है कोई सपना, कोई कहानी और कोई हुनर, तो उसे निखारिए, खुद पर विश्वास करिए और चल पड़िए अपनी खुद की राहें बनाने। खुद को इसलिए मत रोकिए कि संसाधन कम है या रास्ता आसान नहीं।
0: याद रखिए, दुनिया अक्सर उसी आवाज़ को सबसे ज़्यादा सुनती है जिसमें अपनी ओरिजिनल पहचान बनाने के साथ साथ जज्बा भी होता है।
1: बिल्कुल मनुष्या, और बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नाउ इट्स टाइम टू चेंज द वाइब विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग बेजुबान फ्रॉम पिकू।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट सेगमेंट टुडे इन हिस्ट्री। इतिहास सिर्फ तारीखों का संग्रह नहीं होती, बल्कि उन लोगों और घटनाओं की कहानी होती है जिन्होंने हमारे समाज, कला, देश और देश को नई दिशा दी। तो आइए जानते हैं आज के दिन इतिहास के पन्नों में क्या क्या खास दर्ज है।
1: दोस्तों, आज है वर्ल्ड रेंजर डे। यह खास दिन और उन वीर रेंजर्स को समर्पित है जिन्होंने हमारी कुदरत और सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई या घायल हुए। इस साल की थीम है रेंजर्स, गार्जियंस ऑफ अ चेंजिंग प्लैनेट। तो आइए पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा में तैनात इन जाबांज वीरों के जज्बे को सलाम करें।
0: दोस्तों, आज हिंदी सिनेमा की सदाबहार अभिनेत्री मुमताज़ जी का जन्मदिन भी है। अपनी चुलबुली अदाओं, शानदार अभिनय और बेमिसाल स्क्रीन प्रेजेंस से उन्होंने लाखों दिलों पर राज किया है। दो रास्ते, खिलौने और आपकी कसम जैसी फिल्मों में उनके किरदारों को हम आज तक याद करते हैं। राजेश खन्ना जी के साथ उनकी मूवी स्क्रीन पर बहुत सारा उनको स्टारडम मिला।
1: मुमताज़ जी को जन्मदिन की हम सभी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ही महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि भी है। उनकी आवाज़ में ऐसी मिठास, ऐसा अपनापन था कि हर गीत सीधे दिल तक पहुंच जाता था। रोमांस हो, भक्ति हो, देशभक्ति या दर्द के गीत, रफ़ी साहब ने हर एहसास को अपनी आवाज़ से अमर

0: दिया। 1967 में पद्मश्री से सम्मानित रफ़ी साहब 31 जुलाई 1980 को भले ही हमसे विदा हो गए, पर उनकी मखमली आवाज़ आज भी हमारे साथ है। रेडियो पर जब भी उनका कोई सॉन्ग बजता है तो लगता है जैसे वही पुराना और खूबसूरत दौर लौट आया हो।
1: और अब पेश है एक ऐसा सॉन्ग जिसमें एक और है मोहम्मद रफ़ी साहब जी और उनकी जादुई आवाज़, और दूसरी तरफ है मनमोहक अदाओं से दिल पर जीती हुई अभिनेत्री मुमताज़ जी। तो आइए सुनते हैं फिल्म सच्चा और झूठा का ये यादगार सॉन्ग, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो।
2: यूं ही तुम मुझसे बात

दोस्तों, आज ही के दिन सरदार उधम सिंह जी का शहीदी दिवस भी मनाया जाता है। 31 जुलाई 1940 में लंदन की पेंटन विली जेल में उन्हें फांसी दी गई।

0: उनकी अस्थियां पूरे 34 साल बाद 19 जुलाई 1974 को वापस अपने वतन की माटी में मिल पाई।
1: जब हम उनकी बात करते हैं तब हमें जलियांवाला बाग का काला अध्याय याद आता है, जिसका बदला लेते हुए सरदार उधम सिंह जी ने पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को मार गिराया।
0: आपको पता है उधम सिंह जी को जब फांसी दी गई उस समय उनका नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद के नाम से दर्ज था, जो भारत के तीन मेजर रिलीजन और उधम सिंह जी के एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स का प्रतीक बना। वे भारत की आज़ादी के वे मतवाले थे जिनकी देह से उनका देश छिन गया, लेकिन उनका मातृभूमि के प्रति प्रेम, राग और देशभक्ति कोई नहीं छीन पाया। साथियों, अगर आपने 2021 में Amazon प्राइम वीडियो पर आई सुजीत सरकार की फिल्म सरदार उधम सिंह नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। इस फिल्म में विक्की कौशल ने सरदार उधम सिंह के रोल में कमाल की एक्टिंग की है, जिसके लिए उन्हें आईफा बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है। मनुष्या, साल के 7 महीने कितने जल्दी बीत गए ना, और अब कल से देश की आज़ादी के जश्न यानी कि अगस्त की शुरुआत होने वाली है। तो आइए आज़ादी के परवानों को समर्पित सुनते हैं मन को छू जाने वाला ये प्यारा सा गीत।

0: और अब बारी है हमारे सबसे फास्ट सबसे फ्रेश सेगमेंट क्विक बस की। अब बात करते हैं जुलाई की उन रिलीजेस की जिन्होंने पूरे महीने एंटरटेनमेंट लवर्स को खूब एंगेज रखा। क्रिस्टोफर नोलान की द ओडिसी ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की और रिलीज़ के बाद भी ज़बरदस्त कमाई के साथ चर्चा में बनी हुई है। वहीं नेटफ्लिक्स पर लेखक दिव्य प्रकाश दुबे की चर्चित किताब पर आधारित सीरीज मुसाफिर कैफे ने भी दर्शकों को अपनी तरफ खींचा। इसके अलावा आदर्श बाल विद्यालय ने भी लोगों की वॉच लिस्ट में अपनी जगह बनाई। और अगर आप मार्वल फ़ैन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, हाल ही में स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे रिलीज़ हुई है और टॉम हॉलैंड एक बार फिर से सुपर हीरो अवतार में दर्शकों के दिल में जीते हुए नज़र आ रहे हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार शुरुआत मिलने की उम्मीद है।
1: तो अगर आपकी वॉच लिस्ट अभी तक अपडेट नहीं हुई है तो ये जुलाई की हिट रिलीज ज़रूर उसमें शामिल होनी चाहिए। हैप्पी बिंज वॉचिंग। उम्मीद है युववाणी का आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हमें हमेशा आपकी फीडबैक्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आप अपने सुझाव फीडबैक या कहानियाँ हमें ईमेल कर सकते हैं yuvvani@gmail.com पर yuvvani@gmail.com पर। जल्द ही फिर मुलाकात होगी नए जोश और नई चर्चाओं के साथ।
0: अगली मुलाकात तक मुस्कुराते रहिए, अपने अपनों के साथ बिताइए, अपने पसंदीदा गीत सुनते रहिए और ज़िंदगी के छोटी छोटी खुशियों का इंजॉय करते रहिए। फिर मिलेंगे आपसे मंडे को एक नए एपिसोड के साथ, न्यू कहानी और नए एडवेंचर्स के साथ। मैं मनुष्या
1: और मैं शैलजा लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 5 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित 33 सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 5,000 मेगावाट की 33 सौर फोटोवोल्टिक परियोजना का विकास किया जाएगा। इन प्रणालियों की न्यूनतम भंडारण क्षमता 2 घंटे होगी और कुल ऊर्जा भंडारण क्षमता 10,000 मेगावाट होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना की अवधि 5 वर्ष होगी।
2: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सीमा संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। लोकसभा ने आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने विधेयक पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच ये विधेयक पारित हो गया।

0: महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में कल देर रात 4 मंजिला इमारत ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई। दमकल विभाग, पुलिस और नगर निगम बचाव और राहत कार्य में लगे हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और 4 अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK के सैकड़ों विस्थापित लोगों ने पाकिस्तानी सेना द्वारा कब्जे वाले क्षेत्र में किए जा रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन POJK के विस्थापित परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन SOS इंटरनेशनल ने आयोजित किया था। प्रदर्शनकारियों पाकिस्तान और उसकी सेना के खिलाफ नारे लगाते हुए POJK को भारत में शामिल करने की मांग कर रहे थे। SOS इंटरनेशनल के अध्यक्ष राजीव चुनी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान इस क्षेत्र के लोगों का दमन और शोषण कर रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सोरंग क्षेत्र में एक कोयला खदान में मीथेन गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई। शक्तिशाली विस्फोट के कारण खदान का बड़ा हिस्सा ढह गया और कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए। स्थानीय मीडिया ने प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हवाले से बताया है कि मलबे में फंसे खनिकों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन स्पर्धा में पुरुषों के 110 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतने पर लवलीत सिंह को बधाई दी है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में प्रीति ने जाम्बिया की कैथरीन मापे को 5-0 से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees. The duration of the scheme will be of 5 years.
2: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है आज। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर PV फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है, 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा स्कीम में। प्रोजेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
1: The Union Cabinet also approved an expanded Khelo India scheme and enhanced assistance to national sports federations with a combined outlay of 36,441 crore rupees for the period 2026-27 to 2030-31. Addressing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the decision reaffirms the government's commitment to harnessing the power of sports for youth development and nation building. He said it will ensure every talented youth to get a clear pathway to excellence. Mr. Vaishnav said that the scheme will help build pan-India training facilities from grassroots to target podium Olympic scheme level. The Union Cabinet has also given its nod to the National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31. Addressing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the scheme encompasses

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 5:10 हुए हैं और ये वक्त है लोक संगीत के कार्यक्रम लोकरंजनी का।

0: लोक रंजनी के सभी श्रोताओं को नमस्कार। वीनस, आज के लोक रंजनी कार्यक्रम में भी हम हर बार की तरह उन गीतों को शामिल करेंगे जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अलग अलग अवसरों पर उनको गाते हैं और उनका आनंद लेते हैं। सावन का महीना शुरू हो गया है तो सावन का गीत भी हम सुनवाएंगे। तो सबसे पहले जो हम सुनवाएंगे मंजू शर्मा की आवाज़ में एक लोकगीत, और मंजू शर्मा की आवाज़ में ये लोकगीत है रंगीला।
1: रंगीला मारा बालमा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम हमारी संस्कृति को और हमारे भारतीय भारत की जितनी भी रीति रिवाज हो गए मौसम, जैसे कि हमारे रंकर भाई ने बात करी कि अभी मौसम जो चल रहा है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात होगी और साज श्रृंगार की बात होती है क्योंकि अभी मौसम आ गया है सावन का और सावन के साथ आता है तीज और बहुत सारे त्यौहार के साथ साथ खुशियाँ और खूब सारी नाच गाने होते हैं, तो उसी से जुड़ा ये गीत है हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। तो सुनिए ये मंजू शर्मा से।

0: रंगीला मोरा बालवा अंगूठी का नगीना है, ये सुन रहे थे मंजू शर्मा की आवाज़ में। और जैसा कि वीनस हमने जिक्र किया था कि सावन का महीना शुरू हो गया है, तो सावन का एक गीत सुनते हैं।
1: कलाकार रहेंगे राज रानी वर्मा, तो सुनते हैं ये एक और लोकगीत।

ये तो सावन का गीत था। और जो महिलाएं हैं उनका पढ़ना लिखना भी ज़रूरी है। समाज में हम कई चीज़ों की चर्चा करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब पढ़ाई लिखाई की कमी रह जाती है तो जीवन में कई

0: सारी रुकावटें आती हैं। पढ़ लिख करके दिमाग का विकास होता है, चाहे वो घर है या नौकरी है, हर जगह पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल सही बात है निरंकर भाई, क्योंकि हमारे हर लोकगीत में हम मनोरंजन के साथ में कुछ ना कुछ एक संदेश और एक अच्छी सी बात लाते हैं, ताकि ये पहुंचे आप तक और आप इसको अपनाएं अपने जीवन में।
0: रेणु बर्मन बता रही हैं कि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, तो सुनते हैं उनकी आवाज़ में ये लोकगीत।

0: और इसी के साथ आज का हमारा लोक रंजनी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सुनने वाले सभी दोस्तों को
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और
1: संयोजक है शिवनंदन लाल।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी के इस कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में। मैं हूं आपके साथ सिमरन सारवान और मेरे साथ हैं
3: अभिनव कुमार झा। नमस्कार साथियों।
2: तो आज बात करेंगे कॉमनवेल्थ 2026 की, जिसमें 8वें दिन के रिपोर्ट्स हैं। साथ ही साथ बात होगी 9वें दिन के लेटेस्ट रिपोर्ट की भी। अंक तालिका को भी लेकर चलेंगे, स्केड्यूल को भी आपको ज़रूर बताएंगे।
3: और बात करेंगे दिल्ली प्रीमियर लीग के 3rd एडिशन की।
2: साथ ही साथ बात होगी कॉमनवेल्थ के टेबल टेनिस के मैच की।
3: बात होगी वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर टीम चैंपियनशिप की भी।
2: साथ ही साथ रेसलिंग को भी लिए चलेंगे, अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि अजरबैजान में चल रही है उस पर भी बात करेंगे।
3: और अंत में ले जाएंगे आपको फुटबॉल की दुनिया में, जहां हम बात करेंगे डूरंट कप की।

कॉमनवेल्थ की बात करें तो आठवें दिन भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि पुरुष 110 किलोग्राम भारोत्तोलन में लवप्रीत सिंह ने हासिल की। उन्होंने स्नैच में 176 किलोग्राम वजन उठाकर नया कॉमनवेल्थ गेम रिकॉर्ड भी बनाया था। इसके साथ स्नैच और क्लीन एंड जर्क मिलाकर कुल 338 किलोग्राम वजन उन्होंने उठाया था और रजत पदक अपने नाम भी किया था। लवप्रीत के शानदार प्रदर्शन के साथ भारत का भारोत्तोलन अभियान भी सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। भारत ने इस खेल में 1 स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य यानी कुल 8 पदक जीते थे। लवप्रीत की ये उपलब्धि इसीलिए भी खास रही क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ भारत को रजत पदक दिलाया बल्कि स्नैच में भी नया कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। अगर लवप्रीत सिंह के सफर की बात करें तो यह सफलता वर्षों की मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। पंजाब के अमृतसर जिले के बल सचंदर गांव में 6 सितंबर 1997 को जन्मे लवप्रीत का एक साधारण परिवार में जन्म हुआ। बचपन में इनके इलाके में वेटलिफ्टरों को देखकर उनके मन में भी इस खेल के प्रति रुचि होती थी और

0: 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने वेटलिफ्टिंग की शुरुआत भी कर दी। लगातार मेहनत के दम पर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पंजाब का प्रतिनिधित्व किया और 2017 में भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के राष्ट्रीय शिविर NSIA पटियाला में जगह बनाई। इसके बाद उनका अंतर्राष्ट्रीय सफर लगातार आगे बढ़ता गया। लवप्रीत ने 2021 कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक, 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक और 2022 कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी पहचान बनाई। वहीं 2026 एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ 5वां स्थान हासिल करके उन्होंने ये साबित भी किया कि भारत के वो सबसे भरोसेमंद हैवीवेट लिफ्टरों में शामिल हैं।
1: ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਗੋਲਡ ਮਿਸ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗੋਲਡ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਨੈਚ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨੋਂ ਲਿਫਟ ਪਾਸ ਹੋਈ ਜੀ ਕਲਿੰਜਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਚਲੋ ਜੋ ਬਾਕੀ 217 ਮਿਸ ਹੋਈ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਹਿਦੇਵ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
2: एथलेटिक्स में भारत की सीमा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला चक्का फेंक स्पर्धा में 58.65 मीटर का थ्रो किया और कांस्य पदक अपने नाम किया। इस पदक के साथ उन्होंने भारत की झोली में एक और महत्वपूर्ण सफलता जोड़ी और कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स में भारत की पदक उम्मीदों को मजबूती दी। अगर सीमा के सफर की बात करें तो उनकी कहानी संघर्ष, धैर्य और शानदार वापसी की मिसाल है। हरियाणा के भिवानी की रहने वाली सीमा आज भारत की शीर्ष डिस्कस थ्रो खिलाड़ियों में गिनी जाती है। हालांकि उनका सफर आसान नहीं रहा। घुटने की एक गंभीर चोट के कारण उन्हें 3 साल से अधिक समय तक मैदान से दूर रहना पड़ा, लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। लंबी पुनर्वास प्रक्रिया और कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने शानदार वापसी की और फिर से देश की सर्वश्रेष्ठ डिस्कस थ्रो खिलाड़ियों में अपनी जगह बनाई। उनकी वापसी का सबसे बड़ा प्रमाण 2025 दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मिला, जहां उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वहीं 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने 4था स्थान हासिल किया। वर्ष 2026 में उन्होंने 59.73 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसके दम पर उन्होंने 2026 एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया और कॉमनवेल्थ गेम्स टीम में भी अपनी जगह पक्की की।
0: एथलेटिक्स में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत के लिए अच्छी खबर रही। भारत के तीनों खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भारत में अपनी जगह बना ली है, फाइनल में अपनी जगह बना ली है। हालांकि मुकाबला आसान नहीं था। तेज हवा और लगभग 18 डिग्री सेल्सियस तापमान के कारण खिलाड़ियों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। यही वजह रही कि 18 प्रतिभागियों में से कोई भी 84 मीटर के ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मार्क को पार नहीं कर सका। ऐसे में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर फाइनलिस्ट तय किए गए हैं। सबसे ज्यादा निगाहें ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा पर रहेंगी। कमर की चोट से वापसी कर रहे नीरज ने संयमित शुरुआत भी वो कर चुके हैं। पहले प्रयास में उन्होंने 76.28 मीटर और दूसरे प्रयास में 79.61 मीटर का थ्रो किया। इस प्रदर्शन के साथ वो क्वालिफिकेशन राउंड में 5वें स्थान पर रहते हुए फाइनल में पहुंच गए। वहीं रोहित यादव ने अपने दूसरे प्रयास में 78.37 मीटर का थ्रो करके 9वां स्थान हासिल किया, जबकि दूसरे 24 वर्षीय यशवीर सिंह ने हर प्रयास में सुधार करते हुए अपने अंतिम थ्रो में 78.36 मीटर की दूरी तय की और 10वें स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया।
3: आज विंडी भी था और कोल्ड भी था, मतलब सभी एथलीट्स के लिए काफी चैलेंजिंग था। कोशिश कर रहे थे वार्म अप थ्रोज में कि भाई थोड़ा कंडीशंस को समझे, लेकिन वो किसी की समझ में नहीं आया। आज अच्छा है कि भाई मेन था कि यहाँ से फाइनल में पहुंचना है और फाइनल में फिर अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन के आसपास थ्रो करें। और वही था, अगर आप थोड़ा सा भी अगर हाइट ऊपर जा रही थी जेल में, अगर थोड़ा भी आप सही से थ्रो नहीं कर पा रहे थे तो उसमें फिर इधर उधर चली जाती थी। तो काफ़ी ज़्यादा एथलीट्स ने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए पर वो हवा ने इधर उधर फेंक दिया जेवलिन को। तो मुझे लगता है कि किसी का भी ऐसा थ्रो निकला है कि जो अपनी थ्रो से संतुष्ट होगा। तो अभी सभी का टारगेट वही है कि फाइनल में होपफुली अच्छा वेदर और सभी अपना बेस्ट दे पाए।
2: एथलेटिक्स में भारत को उस समय निराशा हाथ लगी जब राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक अनिमेश कुजूर पुरुषों की 200 मीटर दौड़ के फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। सेमीफाइनल में उन्होंने 20.65 सेकंड का समय लेकर

0: ने हीट में छठा स्थान हासिल किया। हालांकि यह प्रदर्शन उनके 20.32 सेकंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड से काफी पीछे रहा। सभी सेमीफाइनलिस्टों में उनका समय 10वां सर्वश्रेष्ठ रहा, जबकि फाइनल के लिए केवल शीर्ष 8 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया।
1: मीन्स अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट अबाउट हु इज द फास्टेस्ट, इट्स ऑल अबाउट हु इज द बेस्ट प्रिपेयर्ड एथलीट ऑन दैट डे। सो दिस थिंग आई लर्नड एंड

0: एंड मैं चाहता हूँ कि मुझे आगे भी ऐसे ही और बड़े बड़े एथलीट्स के साथ एक्सपोजर मिलते रहे सो दैट मैं अपना टाइम और इम्प्रूव कर सकूँ. आई वॉन्ट टू थैंक्स ईच एंड एवरी वन हु सपोर्टेड मी इन माई टफ टाइम्स, माई पेरेंट्स, माई कोच, माई टीम, माई गवर्नमेंट हु सपोर्टेड मी. विदाउट माई टीम इट्स इम्पॉसिबल एंड टूडे वट एवर आई डिड आई जस्ट डिड फॉर देम. सो आई वॉन्ट टू थैंक्स ईच एंड एवरी वन.
1: डेकथलॉन की बात करें तो भारत के तेजस्वी शंकर ने डिस्कस थ्रो में अपने तीन प्रयासों में 40.44 मीटर का हाईएस्ट थ्रो किया. डिस्कस थ्रो के बाद डेकल्थन में अब तक 10 में से 7 सब इवेंट्स हो चुके हैं और तेजस्विन 5,935 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं. पोल वॉल्ट और जेवलिन थ्रो और 15,000 मीटर रेस के पॉइंट्स अभी बाकी हैं. मुक्केबाजी में भारत के लिए शानदार खबर आई है. भारत की स्टार मुक्केबाज प्रीति पवार भी महिलाओं के 54 किलोग्राम भार वर्ग में दमदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में पहुंच गई हैं. सेमीफाइनल मुकाबले में प्रीति ने जाम्बिया की कैथरीन मवापे को 5-0 से एक तरफा अंतर से हराया. ये जीत पूरी तरह सर्वसम्मत रही. मुकाबलों के 3 राउंड में 5 जजों ने प्रीति के पक्ष में 10-10 अंक दिए जो आक्रामक खेल, बेहतरीन तकनीक और मुकाबले पर नियंत्रण को दर्शाता है.
2: अब बात करते हैं डीपीएल की.
1: बात करते हैं दोपहर की शुरुआत के एथलेटिक्स की, जहां डेकल्थन के सब इवेंट्स और बॉक्सिंग का मैच भी हुआ. दोपहर के दौरान जूडो में भारत के हर्ष सिंह ने मालावी के खिलाड़ी चिकोंडी कैथेरोवा को 0-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 की बाधा को पार कर लिया है और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है. और जूडो में ही रोहित बसीर ने सैमुअल रिबेरियो को 100-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में वो पहुंच गए हैं. और महिला वर्ग में ही 92 भार वर्ग में श्रद्धा भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुकी है और 48 भार वर्ग में अस्मिता डे ने भी स्कॉटलैंड की ईवा ईविंग को 100-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है.
2: इसके अलावा एथलेटिक्स में मिश्रित 4x400 मीटर रिले में अंसा बाबू, नीरू पाठक, रशदीप कौर, विशाल टीके और रमेश ने फाइनल में जगह बना ली है. बॉक्सिंग में प्रीति पवार ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है और अंकुश ने कनाडा के जोशुआ आफ्री को 5-0 से हराया. शाम के सत्र में एक बार फिर तेजस्विनी शंकर पॉल वॉल्ट स्पर्धा में नजर आएंगे. बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगे. वहीं ट्रैक साइकिलिंग में दिनेश कुमार और हर्षवीर सिंह चुनौती पेश करेंगे. लॉन बॉल्स में भारतीय टीम का मुकाबला फॉकलैंड आइलैंड से होगा. शाम से रात के बीच बॉक्सिंग में भारत की पदक उम्मीदें और मजबूत होंगी. जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और जादूमणि सिंह अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबलों में उतरेंगे. वहीं ट्रैक साइकिलिंग में किरण स्प्रधा के शुरुआती मुकाबले भी खेले जाएंगे. लॉन बॉल्स में नयन मोनी सैकिया भी भारत की चुनौती पेश करेंगी. अगर भारतीय साइकिलिस्ट क्वालिफाई करते हैं तो पुरुष 4000 मीटर इंडिविजुअल परस्यूट के पदक मुकाबले भी इसी सत्र में होंगे.
1: देर रात मुकाबले और भी रोमांचक हो जाएंगे. बॉक्सिंग में साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, लवलीना बोरोगोहेन, सचिव सिवाच और नवेंद्र बेरवाल सेमीफाइनल मुकाबलों में उतरेंगे, जहां जीत के साथ वो फाइनल में पहुंचकर कम से कम रजत पदक पक्का कर सकते हैं. वहीं एथलेटिक्स में तेजस्वी शंकर डेकथलॉन की भाला फेंक और अंतिम प्रतिस्पर्धा में 1500 मीटर दौड़ में वे हिस्सा लेंगे. इसके अलावा सबसे ज़्यादा निगाहें रहेंगी ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा पर, जो रोहित यादव और यशवीर सिंह के साथ पुरुष भाला फेंक के फाइनल में भारत के लिए स्वर्ण पदक की चुनौती पेश करेंगे. साथ ही यशस पलाक्षा और अनु कुमार पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में पदक जीतने के इरादे से वे ट्रैक पर उतरेंगे. कुल मिलाकर आज का दिन भारत के लिए बेहद अहम रहने वाला है. एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, जूडो, ट्रैक साइकिलिंग और लॉन बॉल्स में भारतीय खिलाड़ियों से कई पदकों की उम्मीद भी रहेगी. देश भर के खेल प्रेमियों की निगाहें अब इन मुकाबलों पर टिकी हैं.
2: अब बात करते हैं डीपीएल की. राजधानी एक बार फिर रोमांचक क्रिकेट मुकाबलों की मेजबानी के लिए तैयार है. दिल्ली प्रीमियर लीग का नया सीजन 31 जुलाई से प्रतिष्ठित अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होने जा रहा है. पुरुष वर्ग के पहले मुकाबले में शुक्रवार को सेंट्रल दिल्ली किंग्स और पुरानी दिल्ली 6 की टीमें आमने सामने होंगी. उद्घाटन मुकाबले से पहले दर्शकों के लिए भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जाएगा. दिल्ली एंड जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में इस बार कुल 57 मैच खेले जाएंगे, जिसमें पुरुषों के 44 और महिलाओं के 13 मुकाबले शामिल होंगे. श्रोताओं, इस प्रतियोगिता में 8 पुरुष और 4 महिला फ्रेंचाइजी टीमें हिस्सा ले रही हैं. जिनमें

0: डिफेंडिंग चैंपियन वेस्ट दिल्ली लायंस के अलावा सेंट्रल दिल्ली किंग्स, पुरानी दिल्ली 6, साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स, ईस्ट दिल्ली राइडर्स, न्यू दिल्ली टाइगर्स, आउटर दिल्ली वॉरियर्स और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स जैसी टीमें शामिल हैं। महिला दिल्ली प्रीमियर लीग में कुल 4 फ्रेंचाइज टीमें भाग ले रही हैं, सेंट्रल दिल्ली क्वींस, ईस्ट दिल्ली राइडर्स विमेन, नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स विमेन और डिफेंडिंग चैंपियन साउथ दिल्ली सुपरस्टार विमेन। ये चारों टीमें आपस में कुल 13 मैच खेलेंगी। पुरुष वर्ग का टूर्नामेंट 30 अगस्त तक चलेगा, जबकि फाइनल के लिए 31 अगस्त को रिजर्व डे रखा गया है। वहीं महिला वर्ग की प्रतियोगिता 20 अगस्त से शुरू होगी और 2 सितंबर तक चलेगी। महिला फाइनल के लिए 3 सितंबर को रिजर्व डे निर्धारित किया गया है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के सभी मुकाबले अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसी के DPL के मद्देनज़र ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी शाहिद आज़मी ने बात की DDCA सेक्रेटरी अशोक शर्मा से, तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने।
1: देखिए, DPL 3 है, हमने फर्स्ट में जो तैयारी करी थी उससे नेक्स्ट में हमने थोड़ी और बेहतर करा और अब ये पूरे तरीके से DPL 3 के अंदर जो कमियां हमें पहले DPL 1 और 2 में देखी उसको कम्प्लीट करने की कोशिश की गई है उन गलतियों को, और जो अब क्रिकेट शुरू होगी थोड़ा बरसात इस टाइम दिखा रहे हैं 5-6 दिन की, लेकिन हमारे बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, हमारे पे पूरा कवर करने का कवर है। तो हमारे ग्राउंडमैन पीछे 15 दिन से बहुत मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड लश ग्रीन है, अब प्लेयरों को दिखाना है कि DPL 3 के अंदर उनके भविष्य के लिए वो किस तरीके का गेम खेलते हैं। तो आने वाले टाइम में जो टूर्नामेंट शुरू हो रहा है 31 से और 3 तक, आपको बहुत रोमांचक क्रिकेट देखने को मिलेगी। स्पेक्टेटर से मेरी अपील है कि दिल्ली की टीमों को प्रोत्साहन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टेडियम पहुंचिए, क्योंकि टिकट हमने बहुत नॉमिनल चार्ज पे रखे हुए हैं और आपको फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा जो आपको IPL में। देखिए, 20 तारीख से महिलाओं के मैचेस शुरू होंगे, 3 तारीख को उनका फाइनल है, मेंस के 31 से शुरू होंगे, उनका 30 को फाइनल है, तो 57 टोटल मैच है और बहुत हमारा रोज़ मैच है। तो आपको दिल्ली के स्पेक्टेटर को कहना चाहता हूँ कि सैटरडे वीकेंड, सैटरडे संडे शुक्रवार आप आइए, दिल्ली के बच्चों को प्रोत्साहन कीजिए, आपको बेहतर क्रिकेट देखने को मिलेगी, रोमांचकारी क्रिकेट देखने को मिलेगी।
2: बात करते हैं विश्व स्क्वैश जूनियर टीम चैंपियनशिप 2026 की, जहां कनाडा में आयोजित इस चैंपियनशिप में भारत की पुरुष टीम का अभियान सेमीफाइनल में समाप्त हो गया। सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को अमेरिका के हाथों 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारत फाइनल में जगह बनाने से चूक गया, लेकिन लगातार दूसरी बार प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने में सफल रहा। यह भारतीय जूनियर पुरुष टीम के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इससे एक दिन पहले भारतीय महिला टीम भी क्वार्टर फाइनल में अमेरिका से हार कर पदक की दौड़ से बाहर हो गई थी। ऐसे में भारतीय पुरुष टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन अमेरिका ने एक बार फिर भारत की चुनौती को रोक दिया। सेमीफाइनल के पहले मुकाबले में भारत के गुरवीर सिंह ने शानदार शुरुआत की और पहला गेम अपने नाम किया, लेकिन उनके अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी ने जोरदार वापसी करते हुए अगले गेमों में दबदबा बनाया। रोमांचक 5 गेम तक चलते इस मुकाबले में गुरवीर सिंह को 11-7, 9-11, 6-11, 11-7 और 11-3 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद दूसरे मुकाबले में भारत के नंबर 1 खिलाड़ी आर्यवीर दीवान का सामना अमेरिका के नंबर 1 खिलाड़ी यासीन शलाबी से हुआ। आर्यवीर पूरे मैच में लय हासिल नहीं कर सके और उन्हें सीधे गेमों में 5-11, 7-11 और 5-11 से हार झेलनी पड़ी। इस जीत के साथ अमेरिका ने मुकाबला 2-1 से अपने नाम किया और पहली बार विश्व जूनियर पुरुष टीम चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। अब पुरुष वर्ग के फाइनल में अमेरिका का सामना डिफेंडिंग चैंपियन इजिप्ट से होगा, जिसने एक बार फिर खिताबी मुकाबले में अपनी जगह सुनिश्चित की है। वहीं महिला वर्ग में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। मलेशिया की टीम ने सेमीफाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त हांगकांग की टीम को 2-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अब खिताबी मुकाबले में मलेशिया की टक्कर शीर्ष वरीयता प्राप्त इजिप्ट की मजबूत टीम से होगी। इस बीच व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी अनाहत सिंह ने दी थी। महिला एकल फाइनल में अनाहत सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इजिप्ट की रुकैया सालेम को हराकर विश्व जूनियर चैंपियन बनने का गौरव भी हासिल किया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ उन्होंने भारतीय स्क्वैश के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। पुरुष एकल फाइनल में इजिप्ट के मोहम्मद जकारिया ने अपने ही देश में एडम हवाल को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया और इजिप्ट के दबदबे को भी कायम रखा। अब सभी की निगाहें टीम स्पर्धा के फाइनल मुकाबले पर रहेंगी।

0: महिला वर्ग का फाइनल स्थानीय समय के अनुसार सुबह 11 बजे खेला जाएगा, जिसके बाद पुरुष वर्ग का फाइनल होगा। भारतीय दर्शक इन मुकाबलों का आनंद भारत के समय अनुसार रात 7:30 बजे से ले सकेंगे। हालांकि भारतीय पुरुष टीम फाइनल तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन लगातार दूसरी बार विश्व जूनियर टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक जीतना और अनाहत सिंह का व्यक्तिगत वर्ग में विश्व चैंपियन बनना भारत स्क्वैश के उज्जवल भविष्य की मजबूत तस्वीर को भी दिखाता है।
1: और अब साथियों, आपको लिए चलते हैं नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में, जहां आयोजित 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोहरे स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। टूर्नामेंट में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने अपराजित रहते हुए अपने अपने फाइनल मुकाबलों में मलेशिया को हराकर टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारतीय पुरुष टीम में मानव ठक्कर, मानुष शाह, जी साथियान, हरमीत देसाई और पायस जैन ने एक कड़े फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 3-2 से मात दी, जिसमें निर्णायक मैच में मानुष शाह ने जीत दर्ज कर भारत का स्वर्ण पक्का किया। वहीं भारतीय महिला टीम ने श्रीजा कूला, सुतीर्था मुखर्जी, यशस्वी घोरपोड़े, स्वस्तिका घोष और सिंड्रेला दास ने एक तरफा प्रदर्शन करते हुए मलेशिया को 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लगभग 25 से अधिक राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों की भागीदारी वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के टीम इवेंट्स में भारतीय पेडलर्स ने शुरुआत से अंत तक अपना पूर्ण दबदबा बनाए रखा है। 31 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप के व्यक्तिगत स्पर्धाओं के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। टीम इवेंट्स के समापन के बाद पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल के शुरुआती चरण के मैच खेले जाएंगे। स्वर्ण पदक विजेता भारतीय दल के प्रमुख खिलाड़ी मानव ठक्कर, मानुष शाह, श्रीजा कूला और सुतीर्था मुखर्जी अपने व्यक्तिगत और युगल मुकाबलों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आज खेले गए मिश्रित युगल राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में भारत की 8 जोड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 6 जोड़ियां आगे के दौर में पहुंच गई हैं। व्यक्तिगत स्पर्धाओं के ये दौर 2 अगस्त 2026 तक चलेंगे, जहाँ खिलाड़ी अगले पदकों के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे।
0: साथ ही साथ अब बात करते हैं अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2026 की। अजरबैजान के बाकू में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत की युवा महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन किया। भारतीय खिलाड़ियों ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का दमदार परिचय दिया है। सबसे पहले बात करते हैं 57 किलोग्राम भार वर्ग की, जहां भारत की निकिता सहरावत ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई। स्वर्ण पदक मुकाबले में उनका सामना अमेरिका की मौजूदा अंडर 17 विश्व रजत पदक विजेता एपेनेसा एलिसन से हुआ। निकिता ने पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें 0-6 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने रजत पदक जीतकर भारत की झोली में एक महत्वपूर्ण सफलता जोड़ दी है। वहीं 49 किलोग्राम वर्ग में भारत की कामना बाबल ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। सेमीफाइनल में जापान की साइका उचीडा से हारने के बाद कामना ने ये हार मानी, लेकिन उनके बाद भी उन्होंने ये हार नहीं मानी है। कांस्य पदक मुकाबले में उन्होंने रूस की इरीना स्तिदेवा के खिलाफ शानदार वापसी की और बेहद रोमांचक मुकाबले में 3-2 से जीत दर्ज करके पोडियम पर जगह बनाई। ये जीत उनके जुझारू खेल और आत्मविश्वास का शानदार उदाहरण रही। भारत के लिए तीसरा पदक 73 किलोग्राम भार वर्ग में गरिमा ने दिलाया। सेमीफाइनल में अमेरिका की कैली मैनुअल के खिलाफ 5-7 से करीबी हार झेलने के बाद गरिमा ने खुद को संभाला और कांस्य पदक मुकाबले में स्पेन की पाउला बेनाइस्का पेरेस को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 10-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। गरिमा का ये एक तरफा प्रदर्शन पूरे मुकाबले में उनकी तकनीकी मजबूती को दर्शाता है। इन 3 पदकों के साथ भारतीय महिला पहलवानों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि देश की युवा कुश्ती प्रतिभाएं विश्व स्तर पर लगातार अपनी पहचान बना रही हैं। फाइनल तक पहुंचने वाली निकिता का रजत पदक और कामना और गरिमा के कांस्य पदक भारतीय दल के लिए बड़ी उपलब्धि माने जा रहे हैं। इन नतीजों में न केवल भारत के पदकों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि ये भी संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में यही युवा खिलाड़ी सीनियर स्तर पर भी देश के लिए बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं।
1: और अब साथियों, बात करते हैं डूरंट कप की, जहां 135वें डूरंट कप में मणिपुर की एफसी रेंगदाई ने अपने पहले ही मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करते हुए पिछले वर्ष की क्वार्टर फाइनलिस्ट इंडियन नेवी फुटबॉल टीम को 1-0 से हरा दिया। खुमान लंपक मुख्य स्टेडियम में खेले गए ग्रुप डी के इस मुकाबले में दोनों टीमों ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। मैच के तीसरे मिनट में एफसी रेंगदाई के मुदुल डोले ने गोल करने का अच्छा मौका बनाया, लेकिन इंडियन नेवी के गोलकीपर भास्कर राय ने शानदार बचाव करते हुए टीम को शुरुआती झटका लगने से बचा लिया। दूसरी ओर इंडियन नेवी ने भी कई बार आक्रमण किए, लेकिन एफसी रेंगदाई के गोलकीपर कामही पतिंगा और मजबूत रक्षा पंक्ति के सामने उनके सभी प्रयास नाकाम रहे। पहले हाफ में दोनों टीमों ने 6-6 बार गोल करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी टीम बढ़त नहीं बना सकी और मध्यांतर तक स्कोर 0-0 रहा। दूसरे हाफ में एफसी रेंगदाई के कोच ने दो अहम बदलाव किए जिसने मैच की तस्वीर बदल दी। इनमें शामिल अमरजीत सिंह ने मैदान पर आते ही टीम के आक्रमण को नई धार दी। मैच के 58वें मिनट में मुदुल डोले ने इंडियन नेवी के एक रक्षक से गेंद छीनी और तेजी से गोल पोस्ट की ओर बढ़े। गोलकीपर ने उनके प्रयास को रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद अमरजीत सिंह के पास पहुंच गई। अमरजीत ने बिना कोई गलती किए खाली गोल पोस्ट में गेंद पहुंचा दी और एफसी रेंगदाई को 1-0 की बढ़त दिला दी। गोल खाने के बाद इंडियन नेवी ने बराबरी के लिए लगातार हमले किए। टीम ने कई मौके बनाए, लेकिन एफसी रेंगदाई की सुदृढ़ रक्षा पंक्ति और गोलकीपर ने हर प्रयास को फेल कर दिया। अतिरिक्त समय में भी रेंगदाई के पास बढ़त दोगुनी करने का अवसर आया, लेकिन टीम उसे भुना नहीं सकी। हालांकि घरेलू दर्शकों के बीच एफसी रेंगदाई ने अंत तक अपनी बढ़त कायम रखी और दुरंत कप के अपने पहले ही मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। इस जीत के साथ टीम ने न केवल टूर्नामेंट में विजयी शुरुआत की, बल्कि पिछले साल की क्वार्टर फाइनलिस्ट इंडियन नेवी जैसी मजबूत टीम को हराकर अपने इरादे भी साफ कर दिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि एफसी रेंगदाई इस जीत की लय को आगामी मुकाबलों में भी बरकरार रख पाती है या नहीं।
0: जी, एक और खुशखबरी भारत के लिए आई है कॉमनवेल्थ गेम से। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में 80 किलोग्राम वर्ग में सेमीफाइनल मुकाबले जो कि अंकुश पंघाल और कनाडा के जोशुआ ऑफरी के बीच था, वो अंकुश पंघाल ने फाइनल जीत लिया है। तो भारत के लिए एक बड़ी खबर ये आई है। साथ ही साथ देखते हैं जो आज शाम को और मैच जो होने वाले हैं उसमें भारत के लिए और कौन कौन सी खुशखबरियाँ आनी और बाकी हैं।
1: वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि भारतीय सरकार ने मंत्रिमंडल ने संशोधित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए अधिक सहायता को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को बढ़ी हुई सहायता को मंजूरी दे दी है। यह युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों की शक्ति का उपयोग करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यह आज़ादी के बाद से देश का सबसे महत्वाकांक्षी खेल विकास कार्यक्रम है। खेलों के प्रति देश के युवाओं की आकांक्षाओं को काफ़ी बढ़ावा दिया गया है और आने वाले दशक में इसका परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। संशोधित योजना को स्कूल के खेल के मैदानों और गांव के खेल के मैदानों से लेकर ओलंपिक पोडियम तक प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा भारतीय के लिए एक सहज मार्ग बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि भूगोल, आर्थिक पृष्ठभूमि या अवसरों की कमी के कारण कोई भी खेल प्रतिभा अनदेखी ना रहे। खेलो भारत नीति 2025 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप यह योजना 2030 राष्ट्रमंडल खेलों और ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए देश की दावेदारी सहित भारत की दीर्घकालिक खेल महत्वाकांक्षाओं के लिए एक मजबूत नींव रखते हुए शिक्षा, फिटनेस, प्रौद्योगिकी और श्रेष्ठ प्रदर्शन परीक्षण के साथ खेलों को एकीकृत करती है। और साथ ही साथियों, हमारी नज़र रहेगी कॉमनवेल्थ गेम्स पे, जहां आज रात सिमरन, नीरज चोपड़ा और अपने दो सहयोगियों के साथ फाइनल खेलने वाले हैं। क्या कुछ आप अपडेट देना चाहेंगे?
0: अपडेट से पहले साथ ही साथ आपसे माफ़ी मांगते हैं। कॉमनवेल्थ 2026 में जो अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल को जीता है, फाइनल को जीतने के लिए अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना बाकी है। तो हमारे भारतीय दर्शक भी अपनी निगाहें इस कॉमनवेल्थ गेम पर रखें। और साथ ही साथ आपने बात की नीरज चोपड़ा की, तो नीरज चोपड़ा से शुरुआत से ही उम्मीदें हमेशा से बनी आई है, जो कि उन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। तो गोल्ड की तो उम्मीद इस बार भी दर्शकों में लगी ही हुई है। साथ ही साथ अब देखते हैं उनके निरंतर प्रयास के बाद भी दर्शकों को वो रिजल्ट मिलता है या नहीं जिसका उन्हें इंतज़ार है।
1: और साथ ही साथ नज़र रहेगी तेजस्विन शंकर पे भी, जो डिकैथलॉन में अभी तक 7 मुकाबले हो चुके हैं जिसमें वो दूसरे स्थान पे चल रहे हैं। 3 मुकाबले और शेष हैं और रजत पदक तो ऐसा लग रहा है कि अभी

0: में ही है, लेकिन देखना ये होगा कि वो उसको स्वर्ण में बदलते हैं या एक कदम और नीचे आके एक कांस्य पर रुक जाते हैं।
1: जी देखिए, मेडल तो लगभग पक्का ही हमें लग रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमारे महिलाओं वर्ग को भी हम नहीं भूल सकते हैं। जैसे कि हम बात करें प्रीति पवार की, तो उन्होंने भी फाइनल में प्रवेश कर लिया है, तो उन पर भी हमारी निगाहें हैं, वो टिकी हुई हैं। देर रात के मुकाबले भी, जो कि भारतीय समय के अनुसार रात के 1:30 बजे तक चलने वाले हैं, तो उन पर भी भारतीय दर्शकों की नज़रें बिल्कुल टिकी रहेंगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, उस पर भी काफ़ी भारतीय गर्व कर रहे होंगे, क्योंकि मेडल्स का आना लगातार जारी है।
0: और जाते जाते आपको एक और खबर दे दें कि 5 बार की विश्व चैंपियन टीम ब्राज़ील से भिड़ेंगे ब्लू टाइगर्स, मतलब ब्राज़ील की टीम भारत आएगी और भारत के साथ एक मैच खेलेगी। इस मुकाबले से भारत फीफा रैंकिंग प्रणाली 1992 से जो लागू हुआ है उसके शुरू होने के बाद पहली बार ऐसी ऊंची रैंकिंग पर काबिज टीम से भिड़ेगा। फिलहाल ब्राज़ील फीफा रैंकिंग में 5वें स्थान पर है। कप्तान मार्किन हॉल्स की अगुवाई वाली ब्राज़ीलाई टीम के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्विंसलैंड में 25 और 29 सितंबर को 2 मैत्री मैच खेलने के बाद भारत आने की उम्मीद है। और घड़ी की सुई अब हमें और इजाज़त नहीं दे रही है। बहरहाल कल फिर मुलाकात होगी जब घड़ी की सुइयाँ इशारा करेगी शाम 5:30 का और समय होगा खेल खिलाड़ी कार्यक्रम का। तब तक के लिए प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ मुझे अभिनव कुमार झा को और मेरी सहयोगी
1: सिमरन सारवन को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के लिए 5 वर्ष की अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है।
1: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंक अकाउंट में जाता है। प्रधानमंत्री जी के एक बटन दबाते ही देश के करोड़ों किसानों के पास ये बेनिफिट जाता है। पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है। 85% ऑफ दी फार्मर्स हैव रिड्यूस्ड देयर बोरोइंग बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम। हाई कॉस्ट इनफॉर्मल क्रेडिट पे जो डिपेंडेंस होती थी वो डिपेंडेंस कम हुई है। जो लोकल लोन लेने पर जो डिपेंडेंस थी फार्मर्स की वो बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है।
0: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए का स्वीकृत परिव्यय निर्धारित किया गया है। मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित 3,300 फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में भी वृद्धि की है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दाखिल किया है। ये नोटिस पेपर लीक रोकथाम विधेयक पर संसद में हुई बहस के दौरान श्री गांधी की टिप्पणियों के संबंध में है। भारत ने आज कहा कि पाकिस्तान के

0: वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि 40 से अधिक लोगों की मौत और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच का अनुरोध किया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान की कार्रवाई की गहन जांच करने और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया। प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज नई दिल्ली में स्वदेश में विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल का शुभारंभ किया। भारतीय सेना और तेल विपणन कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये विशेष ईंधन भीषण जलवायु परिस्थितियों में लड़ाकू और रसद वाहनों की आवाजाही, सुरक्षा और परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अधिक ऊंचाई और भीषण ठंड वाले क्षेत्रों में इस तकनीक का व्यापक नागरिक उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। भारत 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। उधर देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees. He said the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours, totaling 10,000 megawatt.
2: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है आज। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है, 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा स्कीम में। प्रोजेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
1: The Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31. Mr. Vaishnav said the scheme encompasses a comprehensive set of interventions across the offshore exploration value chain. The Union Cabinet has also given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme from 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnav said a total financial outlay of 3.15 lakh crore rupees has been approved for the scheme during the period of 5 years. Mr. Vaishnav said the approval reiterates the government's commitment that the prosperity of farmers forms the foundation of the nation's prosperity. The Union Cabinet has also approved an expanded Khelo India scheme and enhanced assistance to national sports federations with a combined outlay of 36,441 crore rupees for the period 2026-27 to 2030-31. Both Houses of Parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment at 12 noon, the presiding officer, Dilip Saikia, took up the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 for consideration and passage.

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। पीनस बहन,
1: दिनकर भाई, हम कार्यक्रम लेके आते ग्राम संसार में कई तरीके की चीज़ें लेके आते हैं, जिसमें हम मनोरंजन होता है, जानकारी होती है और हम साथ साथ कुछ अच्छी और मौसम की बातें भी करते हैं।
0: बिल्कुल। और आज एक खास दिन भी है, मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं उनकी जयंती है। और मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं उनको मुझे लगता है कि नई पुरानी पूरी पीढ़ी अच्छी तरह से जानते हैं।
1: बिल्कुल
0: बहुत सारी
1: बिल्कुल
0: कहानियाँ लिखी हैं, कहानी के सम्राट हैं उन्होंने। ये बहुत सारी कहानी लिखी हैं जो आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। और बहुत सारी हमारी संस्कृति से जुड़ी कहानी, उनकी कहानियों में ऐसे होता है कि जैसे अभी कुछ घटित हो रहा है। जीवन से जुड़ी हुई उनकी कहानियाँ थी, जिनमें गोदान है, गबन है, कर्म भूमि है, सेवा सदन है, उपन्यास हैं उनके, जो काफ़ी पसंद किए गए। और आज वो हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं और उनके अनुभवों का हम लाभ ले सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा निरंकर भाई, क्योंकि आज बहुत ही खास दिन है। हर साल आज के दिन, यानी कि आज के दिन 31 जुलाई को मनाई जाता है, मनाई जाती है मुंशी प्रेमचंद जयंती। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 के दिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास लम्ही गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उन्हें हिंदी समाज में प्रेम पूर्वक उपन्यास सम्राट के नाम से पुकारा गया। हिंदी उपन्यास के इतिहास में उनके समय को प्रेमचंद युग के नाम से भी जाना जाता है। वह हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कहानीकार भी थे। उन्होंने उद्देश्यपरक कहानियाँ लिखी, जैसे कि निरंकार भाई ने बोला कि उनकी कहानियों में उनकी

0: उपन्यास में कुछ न कुछ जीवनी थी, कुछ सीखने के लिए बातें थी, कुछ सबक थे, जहां उन्होंने जीवन की सच्चाइयों की भाषा को बहुत ही सहजता और सरलता से प्रकट किया था। इसीलिए हिंदू साहित्य में उनकी पहचान सिर्फ एक महान लेखक होना ही नहीं है, उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि उन्होंने उन लोगों को अपनी कहानियों का नायक बनाया जिनके बारे में कभी साहित्य में किसी ने भी बयान नहीं किया था। यह दिन हमें शोषित किसानों और गरीबों की आवाज़ उठाने वाले इस महान साहित्यकार की याद दिलाता है, इसलिए उन्हें कलम का सिपाही भी कहा गया।
1: तो आपने विस्तार से बताया प्रेमचंद जी के बारे में और उनकी जो कहानी उपन्यास है उनमें जैसा कि हमने जिक्र किया कि बिल्कुल जीवन से जुड़ी बातें होती थी, और हमारे जो किस्से कहानी है उनमें भी हम देखते हैं कि जीवन में जो घटित होता है उनका ही एक रूप हमें दिखाई देता है अपने संगीत में। जो हम पहली एक रागिणी के रूप में सुनवा रहे हैं प्रियंका चौधरी की आवाज़ में, ये नरसी के भात के किस्से की रागनी है। हम जानते हैं कि जब नरसी, जो नरसी के तो पुत्र नहीं थे, और उनकी बेटी को जब उनकी जो सास हैं, जेठानी हैं, परिवार में कई बार होता है, जब शादी का मौका आता है तो कहते हैं कि भाई भात कौन लेके आएगा बिना भाई के, तो वो ताने जो मारती हैं ना उस समय पर, क्या कहती हैं उनको, वो सुनते हैं प्रियंका चौधरी की आवाज़ में।

0: भाई नरसी ने भी जोग ले रखा था, तो सास को कह रही है कि भाई ताने मत ना मारा, ऐसा होता है कई बार जो अच्छी बात नहीं है। हालांकि फिर जो भगवान कृष्ण ने उनका भात भरवाया वो आज भी प्रसिद्ध है। और अब जो है हम सुनवाते हैं, एक जानकारी दिलवाते हैं। नई शिक्षा नीति और शिक्षक, स्कूली शिक्षा के नए ढांचे को ज़मीन पर उतारने में शिक्षकों की क्या चुनौतियां हैं और क्या जिम्मेदारियां हैं, इस विषय पर ये वार्ता है। और इसमें वार्ताकार हैं शंभुनाथ पांडे जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने एवं सिखाने की क्रिया, लेकिन इसके व्यापक अर्थ को देखें तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है, जिससे मनुष्य के आंतरिक शक्तियों के विकास तथा व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है। शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास में विशेष भूमिका निभाती है, साथ ही ज्ञान और कौशल में वृद्धि करके मनुष्य को योग्य नागरिक बनाने में भी सहायक होती है। शिक्षा जीवन का आधार है, जो व्यक्ति को ज्ञान, नैतिकता और समझ प्रदान करती है। ये केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करती है। शिक्षा से व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है और समाज में अपना स्थान बनाता है। देश में नई शिक्षा नीति 2020 का विशिष्ट महत्व है। जाहिर तौर पर इससे रचनात्मक और नवाचार को महत्व मिलेगा। समय के साथ शिक्षा नीति में परिवर्तन आवश्यक है, जिससे देश को उन्नति के रास्ते पर तेजी के साथ ले जाया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए करीब 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति को लाया गया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों को केवल किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि उन्हें व्यवहारिक ज्ञान देकर उनकी मानसिक बौद्धिक क्षमता को और भी ज्यादा प्रबल बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 5 मूलभूत स्तंभों पर आधारित है, जो भारत की शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी और समग्र बदलाव लाने के लिए बनाए गए हैं।

वे हैं पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही। शिक्षा किसी भी देश और समाज के विकास का महत्वपूर्ण आधार होता है। शिक्षा के बलबूते ही किसी भी देश का विकास तेजी से किया जा सकता है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में समय के साथ साथ हर चीज में बदलाव आता है और उसके अनुसार शिक्षा पद्धति में भी बदलाव किया जाना चाहिए, क्योंकि पहले तकनीक का इतना विकास नहीं हुआ था, लेकिन अब दिन प्रतिदिन नई तकनीक का विकास होता जा रहा है। लोग आधुनिक तकनीक की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में छात्रों को न केवल किताबी बल्कि उन्हें व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान भी दिया जाना चाहिए, जिससे वो अपनी योग्यताओं को बढ़ा सकें और उसके बलबूते अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक महत्वपूर्ण कदम है। ये नीति केवल पाठ्यक्रम बदलने का प्रयास नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी रट्टा मार संस्कृति को जड़ से उखाड़ कर रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और समग्र विकास की नींव रखने वाली एक गहरी वैचारिक क्रांति है। इस दूरगामी योजना को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी शिक्षकों पर है, लेकिन ये बात भी बहुत हद तक सही है कि वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था और व्यवहारिकता को देखते हुए ये राह शिक्षकों के लिए बड़ी चुनौतियों से भरा भी है। वास्तविकता यह है कि स्कूली शिक्षा के इस नए ढांचे को हकीकत में बदलने के लिए शिक्षकों को कई मोर्चों पर एक साथ जूझना पड़ रहा है। इस नए ढांचे में शिक्षकों के कंधों पर सिर्फ विषय पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी खुद की सोच और शिक्षण पद्धतियों को पूरी तरह से बदलना होगा। ये परिवर्तन कई मोर्चों पर शिक्षकों की परीक्षा ले रहा है। किसी समय आचार्य चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है, क्योंकि निर्माण और प्रलय दोनों एक शिक्षक की गोद में ही पलते हैं। विद्यार्थी के जीवन में परिवर्तन एक शिक्षक ही ला सकता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों में रोजगार व स्वरोजगार को बढ़ावा देने का कार्य करेगी। सकारात्मक परिवर्तनों के साथ इसमें विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं और अवसर से परिपूर्णता का आधार दिया गया है। दरअसल सालों से शिक्षक एक निश्चित और तय समय सारिणी के अनुसार व्याख्यान विधि से छात्रों को पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन अब उन्हें कक्षा के भीतर अनुभवात्मक शिक्षा, खेल खेल में सीखना सिखाना और आलोचनात्मक विश्लेषण को बढ़ावा देना होगा। पुरानी आदतों को छोड़कर तुरंत इस नई भूमिका में खुद को ढालना शिक्षकों के लिए मानसिक और व्यवहारिक स्तर पर आसान नहीं है। इसके अलावा प्रत्येक शिक्षक के लिए हर वर्ष न्यूनतम 50 घंटे का निरंतर व्यवसायिक विकास प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। सैद्धांतिक रूप से ये कदम सराहनीय है, लेकिन हकीकत यह है कि शिक्षक पहले से ही शिक्षण के अलावा जनगणना, चुनाव ड्यूटी और मिड डे मील प्रबंधन जैसे प्रशासनिक कार्य भी कर रहे हैं। इस अत्यधिक कार्यभार के बीच 50 घंटे के प्रशिक्षण के लिए समय निकालना और उसे सार्थक रूप से आत्मसात करना उनके लिए भारी मानसिक तनाव का कारण बन रहा है। कई शिक्षकों का मानना है कि कई बार मानसिक तनाव होने के कारण हम अपनी कक्षा के पाठ्यक्रम भी ठीक से पूरा नहीं कर पाते हैं। साथ ही नई शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक छात्रों को प्राथमिक स्तर पर स्थानीय या मातृभाषा में शिक्षा देने पर विशेष जोर है, ताकि बच्चे अवधारणाओं को आसानी से समझ सकें। लेकिन भारत जैसे अत्यधिक बहुभाषी और विविधतापूर्ण देश में इसे लागू करना किसी चुनौती से कम नहीं है। शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों की एक ही कक्षा में विभिन्न राज्यों और भाषाई पृष्ठभूमि के बच्चे बैठते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षकों के लिए एक ही समय पर कई भाषाओं में संवाद और उपयुक्त शिक्षण सामग्री तैयार करना भी एक बेहद जटिल कार्य है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति लोकतंत्रीकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, कोडिंग और डिजिटल उपकरणों के समावेश की वकालत करती है। दूसरी तरफ एक पहलू ये भी है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में भी ज्यादातर स्कूलों में बिजली, इंटरनेट और कंप्यूटर जैसे मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। ऐसे तकनीकी अभाव में शिक्षकों से ये उम्मीद करना कि वो रातों रात अपनी कक्षाओं को स्मार्ट और हाईटेक बना देंगे, व्यवहारिक और धरातल से काफी दूर नजर आता है। शिक्षाविदों और नीति विश्लेषकों का मानना है कि नई शिक्षा नीति 2020 अच्छी है, लेकिन इसके क्रियान्वयन की राह बहुत कठिन और पथरीली है। असल में नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर देश की कुल GDP का करीब 6% खर्च करने का संकल्प दोहराया गया है, लेकिन वर्तमान बजटीय आवंटन इसके लगभग आधे के पास ही सिमट कर रह जाता है। शिक्षाविदों का तर्क है कि जब तक वित्तीय ढांचा मजबूत नहीं होगा, तब तक जमीनी स्तर पर शिक्षकों को

0: अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण और संसाधन मुहैया कराना केवल एक कोरी कल्पना बनकर रह जाएगा। इसके अलावा कई राज्यों के सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों में वर्तमान में भी शिक्षक छात्र अनुपात राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है। नई शिक्षा नीति के अनुसार आदर्श अनुपात 30:1 का होना चाहिए। शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार जिस कक्षा में 50 से 60 बच्चे बैठे हों, वहाँ किसी एक शिक्षक के लिए प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना और अनुभवात्मक तरीके से पढ़ाना व्यवहारिक रूप से असंभव हो जाता है। दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों के लिए डिजिटल और तकनीकी संसाधनों की कमी के बीच ऑनलाइन शिक्षण को प्रभावी बनाना भी एक बड़ी चुनौती है। वोकेशनल या व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए योग्य प्रशिक्षकों और बुनियादी ढांचे का अब भी अभाव है। शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करें और शिक्षण को रोचक बनाने के लिए खेल आधारित विधियों का प्रयोग करें। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पहले से ही शिक्षकों की भारी कमी है, जिससे व्यक्तिगत ध्यान देने वाली प्रणाली प्रभावित होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक की भूमिका एक पारंपरिक ज्ञान प्रदाता से बदलकर मार्गदर्शक और अनुसंधानकर्ता की हो गई है। शिक्षकों को बच्चों के समग्र विकास, उनकी रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए सशक्त और सम्मानित पेशेवर शिक्षक के रूप में कार्य करना होगा। नई शिक्षा नीति के बाद अब सभी की निगाहें स्कूली पाठ्यक्रम में होने वाले बदलावों पर है। हर कोई इसको लेकर उत्सुक है कि इतिहास, राजनीति शास्त्र, कला संस्कृति जैसे विषयों में क्या जुड़ेगा और क्या हटेगा। एनसीईआरटी ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित नीति के तहत ही पाठ्यक्रम में बदलाव होंगे। हालांकि ये जरूर है कि पाठ्यक्रम का आकार 30-40% तक कम हो जाएगा, यानी बस्ते का बोझ कम होगा और बच्चों को अन्य गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। उनके लिए कोडिंग, कोई एक स्किल कोर्स और योग जैसी गतिविधियों में शामिल होना जरूरी होगा। नई शिक्षा नीति के अमल का जो सूत्र वाक्य तय किया गया है वह है नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट, यानी नई पीढ़ी को अब जो भी पढ़ाया जाएगा उसमें राष्ट्रीय हित के साथ चरित्र निर्माण पर फोकस रहेगा। स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के पास है। शिक्षक केवल शिक्षा देने वाले ही नहीं होते हैं, वे एक मार्गदर्शक, संरक्षक और प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। यही कारण है कि नई शिक्षा नीति 2020 इस तथ्य का सम्मान करते हुए सुनिश्चित करती है कि शिक्षक नीति और व्यवहार के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य देश को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने का है, जो निसंदेह हर देशवासी के लिए गौरव की बात है। लेकिन इस हकीकत को धरातल पर उतारने वाले शिक्षकों को लेकर भी हमें अपना नजरिया बदलना होगा। जैसे सबसे पहले शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों के बोझ से मुक्त किया जाए, जिससे वो अपना पूरा समय और ऊर्जा शिक्षण कार्य को दे सकें। स्कूलों के भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे को युद्ध स्तर पर सुधारा जाए। साथ ही शिक्षकों को केवल औपचारिक या कागजी प्रशिक्षण देने के बजाय उन्हें व्यवहारिक, चरणबद्ध और मानसिक रूप से इस नए बदलाव के लिए तैयार किया जाए। शिक्षकों को सशक्त करना ही सही मायने में देश के भविष्य को सशक्त करना होगा।
1: तो अभी आप सुन रहे थे ये काम की वार्ता, और जो कि हमारी शिक्षा से रिलेटेड एक विषय था, नई शिक्षा नीति और शिक्षक, स्कूली शिक्षा के नए ढांचे को ज़मीन पर उतारने में शिक्षकों की चुनौतियां और जिम्मेदारियां, इसकी जानकारी दे रहे थे शंभुनाथ पांडे, और वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि, और बहुत ही कामकारी जानकारी दी, जो कि आज के बच्चों के लिए, आज के जो आगे जाके भविष्य में आत्मनिर्भर होना है, किस तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से और व्यवहारिक रूप से अपने आप को तैयार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।
2: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: खेत
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
3: और अब सुनते हैं एक रागनी, गोपी चंद के किस्से की रागनी है। जब गोपीचंद की माताजी मैनावंती ने उनके कमर पे खड़क कटार पद्म चंद्रमा निशान देख लिए थे और उनके पिताजी के कमर पे भी ये निशान थे, तो उनको लगा कि अल्पायु में वो चले गए तो हो सकता है गोपीचंद के साथ भी ऐसा हो जाए, इसलिए वो उन्हें अमर करना चाहती थी और उनको जोग दिलवा दिया। अब नाथ जलंधर के पास जब जोग दिलाने जाती है अपने बेटे गोपीचंद को लेके, उस मौके की रागनी है जब मैनावंती गोपीचंद को जोग दिवाने जाती है। तो सुनते हैं, कलाकार हैं करमवीर।

0: तो
1: इनेस
0: श्रोताओं,
1: बहन समय की बात देता है, हम किसी दिन फिर सुनवाएंगे इस रागनी को पूरी। और घड़ी की सुई से इशारा मिल गया है कि कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है। इसी के साथ हमारा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सुनने वाले सब बहन भाइयों को
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर
0: और
1: और
0: संयोजक है शिवनंदन लाल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए का स्वीकृत परिव्यय निर्धारित किया गया है।
2: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीज़मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
1: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के लिए 5 वर्ष की अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित तैरते सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। और मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को भी मंजूरी दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन हत्याओं की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध किया है। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज नई दिल्ली में स्वदेश में विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रिड XWG डीजल का शुभारंभ किया। भारतीय सेना और तेल विपणन कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये विशेष ईंधन चरम जलवायु परिस्थितियों में लड़ाकू और रसद वाहनों की आवाजाही, सुरक्षा और परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा।

0: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अधिक ऊंचाई और भीषण ठंड वाले इलाकों में इस तकनीक का व्यापक नागरिक उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। रिजर्व बैंक ने बड़ी जमा राशियों पर ब्याज दरों के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार बैंकों को अपनी वेबसाइट पर सभी तरह की जमा राशियों के लिए ब्याज दरें पहले से ही स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होंगी। इनमें बड़ी जमा राशियों के लिए ब्याज दरें भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार नए दिशा निर्देश 1 अक्टूबर से लागू होंगे और निर्धारित की गई दरों के हिसाब से ब्याज देय होगा। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मापे को हराया। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the new.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओ, अब समय है अगले कार्यक्रम कृषि जगत का।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम। रेणुका भाई, कार्यक्रम हम लेके आते हैं ये वाला, खास करके हम लेकर आते हैं फल सब्जी और मिलेट्स, और उसके साथ बात करते हैं स्वास्थ्य की, और लेकर आते हैं लोकगीत उससे जुड़े हुए कुछ ना कुछ। तो बात अगर हम करें अपने स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य और भोजन का बीच का बहुत अटूट रिश्ता है, लेकिन ये रिश्ता तभी तक बना रहता है जब तक कि हम अपने खाने पर खास ध्यान रहे कि हमें खाना क्या है, हमारे शरीर के लिए क्या सही भोजन है, कौन सा सही फल है, और खासकर और जैसे कि अगर ये जो मौसमी फल सब्ज़ी होते हैं, ये तो बहुत बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और ज़रूरी होते हैं खाने, और आसानी से मिल जाते हैं।
1: बिल्कुल, और जो मौसम के फल हैं उनको आप खाते हैं, उनसे खनिज, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, रेशा, सारी चीज़ें मिलती हैं। और इस मौसम में ख़ास तौर पर जब बारिश का मौसम चल रहा है, तो हमें हरे पत्तेदार सब्जियों में कुछ खास सावधानी भी बरते जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कि पत्ते वाली सब्जियां इस समय होती हैं, उनमें कीड़े खास तौर पर हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत इस समय होती है उसको पकाने से पहले, और अच्छी तरह से पका करके सब्जियों को खाना है। गोभी है, उसकी भी यही बात है। इसलिए जो भी इस मौसम में सब्जी आप खा रहे हैं, उसको बिल्कुल साफ़ सुथरी खानी है। और हाँ, हम ये कहेंगे जो मौसम के फल हैं इस समय, उनका आप इस्तेमाल करें। चाहे जामुन है, उसमें आयोडीन की मात्रा बहुत अच्छी है। आप जो केला भी हर मौसम में आ रहा है, इसके साथ साथ आम है, सेब है और लीची है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप मौसम में के अनुसार आपको उनको खाना चाहिए।
0: और मिलेट्स को तो बिल्कुल शामिल कीजिए अपने नाश्ते में, या दोपहर के खाने में, या रात में, कभी भी करें। और रेसिपीज इतनी आसान और इतनी अच्छी, आजकल तो बहुत सारी ऑनलाइन भी मिल जाती है।
1: मोटा अनाज जिसमें मक्का, बाजरा, रागी, ये सभी शामिल हैं।
0: इसमें बहुत फाइबर मिलते हैं, और ये आपके पाचन संबंधी जितनी भी समस्याएं होती है, पेट की समस्याएं खास करके, इससे बचाया जा सकता है भाइयों। और ये भी होता है कि हमारे जीवन में जितना बेहतर तरीके से हम खाने को और अपने सही तरीके से सब्जियों का और उसका फलों का चुनाव करेंगे, हमारा स्वास्थ्य उतना सही होगा, और भोजन के बीच में ये जो हमारा रिश्ता, ये हमेशा बना रहेगा।
1: बिल्कुल, और अब मनोरंजन करवाते हैं।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: जरूरी जानकारी, जो हमारा प्रत्येक सोमवार का दिन है 5:30 बजे से 6:30 बजे तक हमारा नया कार्यक्रम आया है, हर सोमवार को शाम 5:30 बजे से 6:00 बजे तक। और ये FM गोल्ड चैनल पर किसानों के लिए कार्यक्रम है, लाइव प्रोग्राम है, तो ज़रूर सुने हमारे किसान भाई। और दूसरा प्रोग्राम है जो कि हमें अर्बन फार्मिंग के बारे में जानकारी देगा, वो FM रेनबो पर है, जो रविवार को शाम 5:30 बजे से 6:00 बजे तक प्रसारित होगा। इसी तरह से यानी एक कार्यक्रम सोमवार को और एक रविवार को, तो ज़रूर सुनिएगा। अगले महीने से, अगस्त के महीने से, ये हमारे दोनों कार्यक्रम आप सुन के लाभ ले सकते हैं। दोनों कार्यक्रम आपके लिए लाइव प्रोग्राम होंगे, जिनसे कि आप सीधे जुड़ सकते हैं।
2: तो रेणुका भाई, हम बात कर रहे हैं कि अपने स्वास्थ्य की और मोटे अनाज की बात करना हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग आजकल इतना नहीं इसको प्रेफर करते हैं, मतलब नहीं खाते हैं, नहीं पता है, नहीं जानकारी होती, लेकिन इसको खाने से आपकी पाचन शक्ति को आपको ताकत मिलती है, बढ़ाता है, वो जितनी भी डायबिटिक प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होती है, वज़न कम करता है, और फाइबर तो आपको बहुत मिलता है, खून की कमी बिल्कुल तरीके से, इन सब की समस्याएं जो होती हैं ये ख़त्म हो जाती हैं। तो इसी पर, इसी मोटे अनाज पर ही अभी हम आपको एक सुनवाते हैं, बहुत ही सुंदर सी एक रागनी, और कलाकार रहेंगे ब्रजपाल चरोरा।

0: तो ये तो सुनी रागनी बल्लाल सरोरा की आवाज़ में, और जैसा कि हमने बताया कि हम कार्यक्रमों के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहते हैं कि कृषि से जुड़ी योजनाओं को आप जानें। एक एग्री स्टैक योजना के पोर्टल है ये, इसके अंतर्गत जो किसान भाई हैं उनके आधार, उनके खेती की ज़मीन और उनका रिकॉर्ड इस पोर्टल पर डिजिटली रूप से रखा जाता है। इससे किसानों को फ़ायदा ये होता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में मदद मिलती है, साथ ही उनको पेपर से कागज़ को इकट्ठा करने के लिए, योजना में देने के लिए इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ता। सारी जानकारी एक ही आईडी उनकी जो बनती है उस पे मिल जाती है। जिस तरह से आपका एक खास फ़ोन नंबर होता है, उसी तरह से जो आईडी आपकी बनेगी उसमें आपकी सारी जानकारी दर्ज होती है, जो डिजिटल रूप में आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं और योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। और ये सारी जानकारी आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़ कर ले सकते हैं। जैसा कि बता, नए दो कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, रविवार के दिन और सोमवार के दिन शाम को 5:30 बजे से 6 बजे तक। तो 5:30 से 6 के बीच के हमारे दोनों कार्यक्रम को ज़रूर सुनिएगा।
1: और
0: और
1: एग्री
0: अब
1: स्टेक की जो पोर्टल है, इससे इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। और कैसे जुड़ सकते हैं? अपने नज़दीकी CSC कॉमिश कॉमन सर्विस सेंटर केंद्र पे जाकर आप इससे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इस योजना से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड, आधार के साथ में आपका एक लिंक मोबाइल नंबर होगा, वो आपके बैंक के साथ कनेक्ट होगा, जिसमें आपकी सारी जो भी डिटेल होगी वो भी आपको वहाँ पे मिल जाया करेगी।
0: और अब सुन लेते हैं एक भजन, और ये भजन है रोमेंद्र नागर और विनय नागर की आवाज़ में।

0: ये सुन रहे थे भाई भजन रविंद्र नागर और विनय नागर से, और इसी के साथ हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम यही समाप्त होता है।
1: सुनने वाले सभी भाई बहनों को
0: को
1: राम राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर
1: और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, जिसमें हम सुनेंगे गजलें जगजीत सिंह जी के स्वरों में।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे गजल चित्रा सिंह और जगजीत सिंह जी के स्वरों में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
3: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। दिल्ली दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विद्यावाहिनी योजना के अंतर्गत 3000 छात्राओं को साइकिलें वितरित कीं। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कल से। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और राष्ट्रीय कैडेट कोर 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को नई दिल्ली में 79 किलोमीटर की साइकिल रैली आयोजित करेगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इस महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था, बाद में उनका शव एक नाले में मिला था। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ में से कुछ हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। परिवार वालों ने यह भी दावा किया कि इस घटना में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। एक सहायक उप निरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सिर में चोट आई जिसमें टांके लगाने पड़े।
7: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन्स पे, उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25th May at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस ऑपर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
6: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित तैरते 100 सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना पर 5,070 करोड़ रुपए का व्यय आएगा।
8: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
6: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में भी वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों की शक्ति का उपयोग करने के सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
8: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
6: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि राष्ट्रीय पांडुलिपि डिजिटलीकरण अभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि भारत की सभ्यतागत विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने का राष्ट्रीय मिशन है। उन्होंने बताया कि ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत 12 लाख से अधिक पांडुलिपियों की पहचान और सत्यापन किया जा चुका है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय देश भर के संस्थानों, संगठनों और पांडुलिपि संरक्षकों के सहयोग को दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विद्यावाहिनी योजना के तहत सरकारी स्कूलों की 3,000 छात्राओं को साइकिलें वितरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से छात्राएं स्कूल आसानी से पहुंच पाएंगी और उनकी उपस्थिति तथा पढ़ाई में सुधार होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि योजना के अंतर्गत दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कक्षा 9वीं की 1,40,000 से अधिक छात्राओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।
9: इस योजना के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से दिल्ली सरकार के विद्यालयों के लगभग 1,40,000 छात्राओं को निशुल्क साइकिलें दी जाएंगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह योजना छात्राओं के विद्यालय तक सुरक्षित और सुगम आवागमन को सुनिश्चित करेगी, नियमित उपस्थिति बढ़ाएगी तथा पढ़ाई बीच में छोड़ने की संभावना कम करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने छात्राओं से यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने का भी आह्वान किया। वहीं श्री सूद ने इस योजना को प्रदेश की बेटियों की शिक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
6: दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कल से शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गीता कॉलोनी स्थित डीएम कार्यालय में योजना के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ करेंगी। इसके साथ ही पात्र महिलाओं के आवेदन शुरू हो जाएंगे। योजना के अंतर्गत 21 से 65 वर्ष आयु वर्ग की 17 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने इस योजना के अंतर्गत रक्षाबंधन पर पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस योजना के अंतर्गत करदाताओं का पैसा महिला सशक्तिकरण के लिए उपयोग होना चाहिए।
10: 21 से लेकर 60 वर्ष की सभी महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। 10 साल से वो दिल्ली में रहते हुए जो नागरिक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और 2,50,000 रुपए तक की आय वाले अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें जो पैसा डिसबर्स किया जाएगा, देखिए ये टैक्स पेयर का पैसा है। विमेन लेड डेवलपमेंट में विमेन के एम्पावरमेंट के लिए खर्च होना चाहिए।
6: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण के कमला नेहरू रिज और बोंटा पार्क रिज में पौधारोपण अभियान में भाग लिया। उन्होंने कहा कि यह अभियान दिल्ली में 76 अन्य जगहों पर भी चलाए गए। श्री संधू ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से दिल्ली रिज पुनरुद्धार के संकल्प को और मजबूत किया जा रहा है।
11: एक पेड़ माँ के नाम, आपने देखा बच्चे भी आज पूरी तरह से इन्वॉल्व हुए हैं। आज कम से कम 75 और जगहों में यही ड्राइव हो रही है। सो टोटल 1,00,000 के पास DDA डिफरेंट पार्क्स में पेड़ उगाएगा। ये एक एनवायरमेंटल स्टेप ही नहीं बट इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं और कई बेनिफिट्स।
6: दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने मास्टर प्लान, ओ जोन तथा 69 इन्फ्लुएंट कॉलोनियों को नियमित करने जैसे कई मुद्दों को लेकर केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार कार्य योजना पर विचार कर रही है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर धोखाधड़ी मामले में HDFC बैंक के एक मौजूदा और एक पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी HDFC क्रेडिट

0: कार्ड से संबंधित ग्राहकों की जानकारी का दुरुपयोग कर उनका मोबाइल नंबर बदलवाकर फर्जी क्रेडिट कार्ड जारी कराते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7,15,000 रुपये नकद, 8 क्रेडिट कार्ड, 7 मोबाइल फोन और 16 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत 34 मामलों में 44 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 4 नाबालिगों सहित 5 लापता लोगों को सुरक्षित उनके परिजनों से मिलाया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक करना समय की आवश्यकता है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे पॉक्सो जागरूकता अभियान के दौरान एक छात्रा ने अपनी शिक्षिका को बताया कि उसके साथ गलत स्पर्श हुआ।
1: एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे मालूम था कि बच्चों में गुड टच और बैड टच की ट्रेनिंग देना कितना जरूरी है, और ये शुरू होने के बाद लगातार दिल्ली के सभी स्कूल, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट स्कूल, बच्चों को अवेयरनेस दी जा रही थी कि गुड टच बैड टच क्या है। जिस तरीके से उन बच्चों को समझ में आए, आपके बच्चे यदि घर आकर भी आपको कोई ऐसी बात बताते हैं, उसे ध्यान से सुनिए, उसे इग्नोर मत।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के 87वें शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि शहीद उधम सिंह का जीवन प्रत्येक पीढ़ी को देश के सम्मान और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रेरित करता रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने भी क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री शाह ने उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी स्वाधीनता संग्राम सेनानी उधम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि शहीद उधम सिंह का अदम्य साहस और देश को आज़ादी दिलाने के लिए उनका बलिदान भारतीय इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी आज उधम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराज्यपाल ने कहा कि जलियांवाला बाग नरसंहार का प्रतिशोध लेकर उधम सिंह ने अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और औपनिवेशिक दमन के खिलाफ अटूट संकल्प का परिचय दिया। उनका सर्वोच्च बलिदान स्वतंत्रता संग्राम का स्वर्णिम अध्याय है। वहीं श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरदार उधम सिंह का त्याग, पराक्रम और बलिदान राष्ट्र को सदैव प्रेरित करता रहेगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को नई दिल्ली में 79 किलोमीटर की साइकिल रैली आयोजित करेगा। ये कार्यक्रम सुबह 5 बजे मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में शुरू होगा। कार्यक्रम को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया झंडी दिखाएंगे। साथ ही रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी इस मौके पर उपस्थित होंगे। इस साइक्लोथॉन में NCC कैडेट्स और अन्य प्रतिभागी देश की आज़ादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों और गुमनाम नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से रोहतास नगर विधानसभा के एक स्वयंसेवकों को वर्षा जल संचयन किट वितरित किए। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन अभियान से प्रेरित होकर दिल्ली सरकार जन भागीदारी के माध्यम से वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। महिला और बाल विकास मंत्रालय कल देश भर में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाएगा। इस सप्ताह का उद्देश्य परिवारों, समुदायों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच स्तनपान के महत्व पर जागरूकता पैदा करना है। मंत्रालय ने परिवारों से आग्रह किया है कि वे सुनिश्चित करें कि प्रत्येक नवजात शिशु को जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान अवश्य कराया जाए। राजधानी दिल्ली में आज दिन भर मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विद्यावाहिनी योजना के अंतर्गत 3,000 छात्राओं को साइकिलें वितरित की। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कल से। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और राष्ट्रीय कैडेट कोर 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को नई दिल्ली में 79 किलोमीटर की साइकिल रैली आयोजित करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम गीत मालिका। नमस्कार दोस्तों, रात के इस खूबसूरत पहर में आपका स्वागत है उस संगीत के सफर में जहां हर गीत अपने साथ एक कहानी लाता है और हर धुन किसी न किसी की याद ताज़ा कर देती है। मैं हूं आपकी दोस्त रचना अग्निहोत्री और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका इंद्रप्रस्थ चैनल आकाशवाणी दिल्ली पर। दोस्तों, कहते हैं ना, कुछ गीत कानों से होकर दिल तक पहुंचते हैं और कुछ गीत सीधे दिल से निकलकर यादों में बस जाते हैं, और आज की शाम ऐसी ही यादों के नाम। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसके सुर बजते ही चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाती है।

0: साथ रखना। 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: धुन छेड़ी तो मौसम भी मुस्कुराने लगा, पुराना कोई चेहरा फिर याद आने लगा। गीत क्या बजा रेडियो पर, दिल अपना ही पता बताने लगा।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका और मैं हूं रचना अग्निहोत्री। श्रोताओं, किसी भी तरीके की अगर आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के बारे में तो आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है iprradiodelhi@gmail.com। एक बार पुनः बता देती हूँ, iprradiodelhi@gmail.com। तो चलते हैं, यादों का सिलसिला हम जारी रखते हैं। कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही लगता है जैसे समय ने अचानक रिवाइंड बटन दबा दिया हो, है ना? एक धुन और सामने पूरा बचपन, एक मुखड़ा और याद आ जाती है कॉलेज की वो कैंटीन, एक अंतरा और कोई पुराना दोस्त। कभी आपने गौर किया है, इंसान बहुत कुछ भूल सकता है लेकिन अपने पसंदीदा गीत की धुन नहीं भूलता। यादों का क्या है, ये तो बहाना ढूंढती हैं, कभी गीत में कभी अफसाने में मिलती हैं। दिल से पूछो तो हर पुरानी धुन में कुछ अनकही कहानी मिलती है।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म कटे पतंग से। आवाज़ थी मुकेश की।

को साथ रखना। 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म कटी पतंग से और आवाज़ थी किशोर कुमार जी की। और इससे पहले जो हमने गीत सुना था उसे हमने लिया था फिल्म आनंद से और आवाज़ थी मुकेश की। शाम अब थोड़ा और हसीन हो चली है, मोहब्बत की बात हो और गीत ना हो तो ये तो ऐसा ही है जैसे चाय हो और उसमें चीनी ना हो। कुछ प्रेम कहानियाँ शब्दों से शुरू होती हैं, कुछ नज़रों से और कुछ बस एक गीत से। मोहब्बत में लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं, फिर कभी सुर काम आते हैं और कभी गीत काम आते हैं। जो बात होठों से कही ना जाए वही अक्सर गीत कह जाते हैं।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म मेरे जीवन साथी फिल्म से और आवाज़ थी किशोर कुमार जी की। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका मेरे यानी रचना अग्निहोत्री के साथ आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। और श्रोताओं, यदि आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भेजना चाहते हैं, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि हमें भेज देना है अपना मेल। और हमारा ई मेल आई डी है ipradiodelhi@gmail.com। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, ipradiodelhi@gmail.com। और इसके साथ चलते हैं अगले एक बहुत ही प्यारे से नगमे की तरफ।

दोस्तों, कुछ धुनें उम्र के साथ पुरानी नहीं होती, वे बस और भी प्यारी होती जाती हैं। समय बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, मगर कुछ गीत दिल में वहीं के वहीं रह जाते हैं।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म खामोशी से और आवाज़ थी हेमंत कुमार जी की। दोस्तों, वैसे संगीत का सबसे बड़ा फायदा क्या है? आप कितने भी परेशान हो, बस एक अच्छा सा गीत बजता है और दिल कहता है चलो आज की समस्या कल देखेंगे। और कभी कभी तो गीत सुनते सुनते हमें लगता है कि जीवन की सारी समस्याएं हल हो गईं। और फिर जैसे ही गीत खत्म होता है, सामने टेबल पर समस्याएं फिर खड़ी हो जाती हैं, पड़ी होती हैं।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म कश्मीर की कली से और आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जी की। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। गीत चलते रहें, यादें सजती रहें और आपकी शाम यूं ही मुस्कुराती रहे। इसी के साथ मैं रचना अग्निहोत्री आपसे विदा लेती हूँ इस अंतिम गीत के साथ।

गीतों का सफ़र यूं ही चलता रहे, हर दिल में कोई सुर पलता रहे। दूरियां चाहे जितनी भी हों, रेडियो से रिश्ता दिलों में बनता रहे। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका, और इसी के साथ मुझे यानी रचना अग्निहोत्री को इजाज़त दीजिए कार्यक्रम समेटने की। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव

0: 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं समाचार संध्या।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निर्मम कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की निंदा की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
3: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
2: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
3: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीजमिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
2: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।
3: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।
3: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने यह बात कही।

0: ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देश भर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना और इन घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करना है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित प्राधिकारी को संबंधित जन्म या मृत्यु की सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करना होगा। इस सप्ताह संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों, लोक परीक्षाएं अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 8 बार की सदस्यता में भी दिखता है और वर्ष 2028-29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और 4 अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था, बाद में उनका शव नाले में मिला था। पश्चिम बंगाल में विशेष कार्य बल के आतंक रोधी प्रभाग ने मोहम्मद हमीम मंडल उर्फ हमीम फिगो को आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को बर्धमान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन के लिए STF की हिरासत में भेज दिया। हमीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंत्र पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से

0: गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों में कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सल्लाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले जिलों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव, सड़कें और हजारों हेक्टर खेती की जमीन डूब गई है और 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। हीराकुद बांध के 22 गेटों से अब बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जबकि एहतियात के तौर पर भद्रक के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: सूरत जिले के अंबिका में आज पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरूच, नवसारी, डांग, आणंद और खेड़ा जिलों के कई इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है। आज सुबह से ही 8,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाया जा चुका है। इस बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियाती तौर पर सूरत, बनासकांठा और मेहसाणा सहित कई जिलों में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह का मौसम उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी रहने की संभावना है। अगले 2-3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान और तेज हवाओं की भी संभावना है। दिल्ली में कल तेज वर्षा हो सकती है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। भारत 4 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashwani, and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Center approves Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Also clears National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential. Union Cabinet gives nod to continuation of PM Kisan Samman Nidhi Scheme for next 5 years. Former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and four others get life term for murder of IB officer Ankit Sharma during 2020 Delhi riots. New Delhi slams Islamabad over brutal crackdown against peaceful protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Flood crisis deepens in Odisha, relief and rescue operations in full swing. And Asmita Day clinches India's first ever judo gold at Commonwealth Games. Indian boxers Preeti Pawar, Jasmine Lamboria, Arundhati Chaudhary and Ankush Pangal advance to final in their respective bouts. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees. He said the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours, totaling 10,000 megawatt hour.
5: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है आज। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है, 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा स्कीम में। प्रोजेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
4: In order to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential, the Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31. Mr. Vaishnav said the scheme encompasses a comprehensive set of interventions across the offshore exploration value chain.
5: Exploration ke liye aur uske baad mein production ke liye बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है जिसका नाम है समुद्र मंथन। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, एक है डेटा एक्विजिशन, सीज़मिक डेटा एक्विजिशन। समुद्र में सी बेड के नीचे कहाँ पर ऑयल मिलने की संभावना ज्यादा है या गैस मिलने की संभावना ज्यादा है उसकी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, सीज़मिक टेक्नोलॉजीज है मोस्टली। उससे एक बार हमारे पास प्रॉपर जब डेटा आ जाए तो एक्सप्लोरेशन का प्लान ठीक से तैयार किया जा सकता है। और वंस द एक्सप्लोरेशन प्लान इज प्रिपेयर्ड देन यू कैन स्टार्ट ड्रिलिंग द होल्स एंड देन यू गेट द एक्चुअल डेटा वेदर देयर इज ऑयल और गैस अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट और नॉट।
4: The Union Cabinet has given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme from 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnav said a total financial outlay of 3.15 lakh crore rupees has been approved for this scheme during the period of 5 years. The Union Cabinet has also approved an expanded Khelo India scheme and enhanced assistance to national sports federations with a combined outlay of 36,441 crore rupees for the period 2026-27 to 2030-31. Prime Minister Narendra Modi has said that the Cabinet's approval of Samudra Manthan marks a transformative leap towards strengthening India's energy security and unlocking the vast offshore potential. In a social media post, Mr. Modi noted that by combining investment, cutting-edge technology, skilled human capital and modern infrastructure, Samudra Manthan will give fresh momentum to make in India an Atmanirbhar Bharat. He added that the approval of the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana

0: Aditya Chaudhary, Jadumani Singh and Ankush Pangal advanced to final in their respective bouts. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। मरकज ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पानी की सतह पर शमसी फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स की तामीर की जाएगी और इसके साथ तवानाई की जखीरा अंदोजी के निजाम में भी तामीर किए जाएंगे। काबीना ने समुद्र के किनारे तलाश और दरियाफ्त की एक कौमी स्कीम समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी है, जिससे मुल्क की तवानाई की यकीनी फराहमी को इस्तेहकाम हासिल होगा और समुद्र के किनारे के वसीतर इम्कानात को इस्तेमाल किया जा सकेगा। मरकजी काबीना ने अगले 5 बरस के लिए पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम को जारी रखने की भी मंजूरी दी है। आम आदमी पार्टी के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन और 4 दीगर को 2020 दिल्ली फसादात के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा के कत्ल की पादाश में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में पुनः अमन मुजाहरीन के खिलाफ बहीमाना कार्रवाई के सिलसिले में पाकिस्तान की नुकताचीनी की है। उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। राहत और बचाव की कार्रवाइयां जोरों शोर से जारी हैं। दौलत मुश्तरका खेलों में स्मिता डे ने जूडो में भारत के लिए सोने का तमगा जीता। भारत के मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लिमोरिया, रुंधति चौधरी और अंकुश पांघल अपने अपने मुतल्लिका मुकाबलों के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना PMSSY की मंजूरी दी है, जिसके तहत पानी की सतह पर शमसी फोटोवोल्टेक प्रोजेक्ट्स की तामीर की जाएगी और इसके साथ तवानाई की जखीरा अंदोजी के निजाम भी तामीर किए जाएंगे। मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद आज नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इस स्कीम को 5,070 करोड़ रुपए की कुल मालियत के साथ मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि यह स्कीम 5,000 मेगावाट पानी की सतह पर शमसी फोटोवोल्टेक प्रोजेक्ट्स की तामीर का अहाता करती है, जिसके साथ तवानाई की जखीरा अंदोजी के ऐसे निजाम भी तामीर किए जाएंगे जिनकी 2 घंटे की कम से कम जखीरा अंदोजी की सलाहियत कुल 10,000 मेगावाट पर आवर होगी।
2: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया आज। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर PV फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है, 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। स्कीम में प्रोजेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
1: मरकजी काबीना ने समुद्र के किनारे तलाश और दरियाफ्त की एक कौमी स्कीम समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी है, जिसके लिए 84,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस पर माली बरस 2030-31 तक अमलावरी होगी। जनाब वैष्णव ने बताया कि स्कीम समुद्र के किनारे तलाश और दरियाफ्त की पूरी वैल्यू चेन में मदाखलतों के एक जामे सेट का अहाता करती है।
2: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके 2 कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीजमिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
1: मरकजी काबीना ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान स्कीम को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने बताया कि 5 साल की मुद्दत के दौरान इस स्कीम के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपए के मजमूई माली अखराजात की मंजूरी दी गई है। जनाब वैष्णव ने बताया कि मंजूरी हुकूमत के इस अज़्म की तौसीक करती है कि किसानों की खुशहाली कौमी खुशहाली की बुनियादें इस्तवार करती है। मरकजी काबीना ने खेलो इंडिया स्कीम को वसत अदा करने की भी मंजूरी दी है। साथ ही उसने खेलों के कौमी फेडरेशनों के लिए तावुन में भी इजाफा किया है, जिसके लिए 2026-27 से 2030-31 तक की मुद्दत के लिए मुश्तरका तौर पर 36,441 करोड़ रुपए

0: मुख्तस किए गए हैं।
1: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन की काबीना की जानिब से मंजूरी भारत के लिए तवानाई की यकीनी फराहमी को मुस्तहकम करने की जानिब काया पलट कर देने वाली एक जस्त की अलामत है और इससे समुद्र के किनारों की वसीतर इम्कानात को इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने इस बात का जिक्र किया है कि सरमायाकारी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, महारत से भरपूर इंसानी असासे और जदीद तरीन बुनियादी ढांचे के इश्तराक से समुद्र मंथन से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को एक नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना आबी जखायर के इख्तरा पर मबनी इस्तेमाल के जरिए मुल्क की साफ तवानाई की सलाहियत को वसत अता करती है। जनाब मोदी ने कहा कि इस स्कीम से सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को फायदा हासिल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी आएगी। वजीर आजम ने इस बात का जिक्र किया कि हुकूमत मुल्क भर में किसानों की खुशहाली के लिए बाख्तियारी देने की जानेब पुरअज़्म है। जनाब मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को 2031 तक बढ़ाए जाने से अन्नदाताओं को बीजों, कीमियावी खादों और काश्तकारी से मुतालिक अपनी जरूरियात पूरी करने में ही मदद नहीं मिलेगी बल्कि इससे उनकी इक्तसादी हालत भी बेहतर होगी। वजीर आजम ने मजीद कहा कि खेलो इंडिया स्कीम की वसत और खेलों के कौमी फेडरेशन्स के लिए तावुन में इजाफे से मुल्क भर के नौजवान खिलाड़ियों को बेहतर तरबियत, जदीद सहूलियात और अपनी सलाहियतों को निखारने के ज्यादा मौके मैसर आएंगे। हुकूमत ने कहा है कि रोजगार और आजीविका मिशन के लिए विकसित भारत गारंटी ग्रामीण वीबीजी रामजी स्कीम के तहत आज की तारीख तक किसी रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कोई रकम वाजिबुल अदा नहीं है। देही तरक्यात के महकमे के वजीर ममलिकत कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 को पूरे मुल्क के देही इलाकों में इस माह की पहली तारीख से लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने इस स्कीम को नोटिफाई किया और इस पर अमल आवरी शुरू हो गई। वजीर मौसूफ ने बताया कि माली बरस 2026-27 के दौरान इस स्कीम के लिए बजट में 95,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए थे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई कई मामलों पर अपोजिशन के शोरगुल के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इन मामलों में नीट के सिलसिले में तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला शामिल है। पहली बार कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद जब दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर दिलीप साइकिया ने बातचीत और मंजूरी के लिए पैदाइश और अमवात के इंदराज से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर गौर खौस की बात कही। दाखिली उमूर के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने अपोजिशन के शोरगुल के दौरान यह बिल पेश किया। ये बिल बगैर किसी बहस के शोरगुल के दौरान ऐवान में मंजूर हो गया। इधर पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बहस में हिस्सा न लेने के लिए अपोजिशन की नुक्ताचीनी की। पेश एक रिपोर्ट।
2: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में आज फिर रखना पड़ा। अपोजिशन ने नीट मौजू पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर हंगामा आराई की। अपोजिशन अराकीन की जानिब से हंगामा आराई जारी रहने पर दोनों ऐवानों की कार्रवाई लंच से पहले ही दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले अपोजिशन की हंगामा आराई की वजह से पार्लियामेंट में वक्फ़े सवाल नहीं हो सका। ताहम लोकसभा ने पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 बिना किसी बहस के मंजूर कर लिया। ये नया बिल पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन में ताखीर पर सख्त गुंजाइशों पर मबनी है और पैदाइश और अमवात के बरवक्त अंदराज की हौसला अफजाई करता है। ये बिल इस बात को भी लाजमी करार देता है कि नामजद अथॉरिटी ताखीर से अंदराज की इजाज़त देने से पहले रिपोर्ट की जा रही पैदाइश और अमवात की तस्दीक करें। इधर राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने वक्फ़े सिफर की शुरुआत की, जहां कई अराकीन ने फौरी अहमियत के हामिल मामले उठाए। ताहम अपोजिशन अराकीन ने अपने मुतालबात पर जोर देते हुए नारेबाजी और मुजाहरे शुरू कर दिए। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।

0: द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में अटल इनोवेशन मिशन के बुनियादी सतह के अख्तराकारों के ग्रुप से बातचीत की और नुमाइश के दौरान उनकी जानिब से पेश किए गए अख्तराई मॉडल्स का मुशाहिदा किया। सदर जमहूरिया ने मुलाकात के दौरान जोर देकर कहा कि बुनियादी सतह की अख्तरात का समाज की जरूरतों से हम आहंग होना जरूरी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन और चार दीगर को 2020 दिल्ली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल की पादाश में उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने सजा की मियाद के मुतालिक दलाइल की समाअत के बाद तमाम पांचों मुलजिमीन की सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने इस जुर्म को इंतहाई बहीमाना वाकया करार दिया और कहा कि इससे पूरा मुआशरा हिलकर रह गया था। इस माह की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार दीगर को अंकित शर्मा के कत्ल का मुजरिम करार दिया था, जिन पर फसादात के दौरान एक हुजूम ने हमला किया था। बाद में उनकी लाश एक नाले में पाई गई थी। भारत ने आज कहा कि पाकिस्तान के जीर कब्जा जम्मू कश्मीर में नामनिहाद इंतखाबात पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक तौहीन आमेज अवामी रद्दअमल का इजहार करते हैं। आज दोपहर नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पुरअमन शहरियों के खिलाफ जारहाना ताकत का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के नतीजे में 40 से ज्यादा शहरी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं।
1: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
0: तर्जुमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के बेगुनाह अवाम के साथ पाकिस्तान की बेएतनाई उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब उसके वजीर दिफा ने एहतजाज करने वाले शहरियों को दुश्मन करार दिया। तर्जुमान ने इस बात पर जोर दिया कि मरकज के इंतजाम वाले इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अटूट हिस्सा है। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल मजीद अबतर हो गई है क्योंकि बालाई इलाकों में लगातार बारिश की वजह से महानदी और उसकी मावन नदियों में तुगयानी आ गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ओडिशा के 15 जिले मुतासिर हैं, जहां गांवों, सड़कों और हजारों हेक्टेयर काश्त की जमीनों के सैलाबी पानी में डूब जाने से रोजमर्रा की जिंदगी शदीद मुतासिर हुई है। हीराकुंड बांध के 22 दरवाजे खोल दिए गए हैं जिनसे सैलाब के पानी का अखराज हो रहा है। हीराकुंड बांध में पानी की सतह 625 फीट से ज्यादा हो गई है। बांध में कसीर मकदार में पानी की आमद लगातार जारी है जिससे मजीद दरवाजे खोले जा सकते हैं। इन हालात में महानदी के तास में शदीद सैलाब के खदशात बढ़ गए हैं। ओडिशा के वजीराला मोहन चरण मांझी कल बालासोर, भद्रक, जाजपुर और कोइंझार जिलों का फिजाई दौरा करेंगे और नुकसान का जायजा लेंगे। भद्रक में एहतियाती कदम के तौर पर सभी स्कूल बंद रहेंगे। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: गुजरात में रेड अलर्ट के दौरान रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में सुबह से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है जिससे जनूबी और वस्ती खित्तों में रोजमर्रा की जिंदगी में रखना पड़ा है। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि बारिश से मुतासिर जिलों में राहत और बचाव कार्रवाइयां जंगी पैमाने पर जारी हैं। इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा और सूरत समेत रियासत के 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। और ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरक खेलों में भारत की स्मिता डे ने जूडो में भारत के लिए सोने का तमगा जीता है। इस खेल में भारत ने पहली बार सोने का तमगा जीता है। स्मिता ने कनाडा की क्वेंच को खातीन के 48 किलोग्राम जुमरे में 2-1 से हराया। भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और अंकुश पांघल अपने अपने मैच जीतकर फाइनल में पहुंच गए हैं जिससे भारत के लिए कम से कम चांदी के 2 तमगे यकीनी हो गए हैं। वहीं अंकुश पांघल ने आज हुए सेमीफाइनल मैच में कनाडा के जोशुआ ओफरी को 5-0 से शिकस्त दी। इस तरह पांघल मर्दों के 80 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में पहुंच गए हैं। भारत ने दौलत मुश्तरक खेलों में अब तक 18 तमगे जीते हैं जिनमें सोने के 4, चांदी के 9 और कांसे के 5 तमगे शामिल हैं। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकज ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की मंजूरी दी है जिसके तहत पानी की सतह पर शमसी फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स की तामीर की जाएगी और इसके साथ तवानाई की जखीरा अंदोजी के निजाम भी तामीर किए जाएंगे। काबीना ने समुद्र के किनारे तलाश और दरियाफ्त की एक कौमी स्कीम समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी है। मरकजी काबीना ने अगले 5 बरस के लिए पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम को जारी रखने की भी मंजूरी दी है। आम आदमी पार्टी के सबक काउंसलर ताहिर हुसैन और चार दीगर

0: को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
1: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीजमिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वीबीजी रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में आज अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 48 किलोग्राम वर्ग में अस्मिता ने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। वहीं हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में ये पदक जीता। भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादुमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. एड्रेसिंग मीडिया इन न्यू

कलाकार देवेंद्र कुमार गुप्ता की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी गीत कार्यक्रम माटी के रंग में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10:30 होने को है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित रंजीत सेन का राग जो कोस में सरोद वादन।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में अभी आप सुन रहे थे पंडित रंजीत सेन का राग जो कोस में सरोद वादन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
2: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
1: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया।

0: बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। इस महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी धनुषा और सिराहा जिलों के कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज उन्नति ने देविका सिहाग को और तन्वी ने सुपनिडा काटेथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना PMSSY फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट्स विद एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees.
2: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया। 102 गीगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की।

जी हाँ दोस्तों, नाम लेने से अगर मोहब्बत और गहरी हो जाए ना, तो हर धड़कन बस अपने प्यार का नाम ही गुनगुनाए। अभी आप सुन रहे थे राम लखन से ये गीत, और आवाज़ दी थी मनहार और अनुराधा पौडवाल ने। इस गीत की फरमाइश की थी पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका हार्दिक वंश बत्ता ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, और दिल्ली से इस गीत की फरमाइश की थी एसपी सिंह, प्रियाशी और बेबी विधानशी ने।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। दोस्तों, इश्क छुपाए नहीं छुपता, आके हर राज बयां कर देती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और इस गीत की फरमाइश की थी गोविंदगढ़ माझी वाला श्री करणपुर राजस्थान से, राजू टुटेजा, खुशादिल उर्मिला, गुड्डू जीनू मनु, शिव और स्माइल टुटेजा ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी महाराष्ट्र से बाला प्रसाद जी, गीतांजलि, आकाश और आकांक्षा ने, और चंद्रनगर सहारनपुर से कौशल्या, सुरेश और सोनाली जोशी ने।

8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

कभी कभी एक मुलाकात ही जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास बन जाता है, और फिर वही एक चेहरा हर धड़कन की वजह बन जाता है। दोस्तों, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म विजयपथ से। इस गीत की फरमाइश की थी संभल से छोटे अंसारी आलम अंसारी, और साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फराना, फरहान ताहिर और बुलंदशहर से MS अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार, पटेल नगर से डॉक्टर रमेश कुमार, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू ने।

8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

कभी किसी की मुस्कान से तो कभी किसी की सादगी से दिल जुड़ जाता है, क्योंकि प्यार हमेशा आंखों से नहीं एहसासों से पहचाना जाता है। दोस्तों, कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म सलामी से। इस गीत की फरमाइश की थी चिर मिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ राम, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी फातिमा कलोनी महाराज से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया माइकल, जैनब मुजावर ने।

दोस्तों, इश्क की दुनिया में दिल अक्सर अपनी मर्जी से धड़कता है, और जब किसी का हो जाए तो हर धुन उसकी ही लगती है। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म दिल तेरा आशिक से। इस गीत की फरमाइश की थी उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, बेबी अरिबा हबीबा ने।

दोस्तों, बादलों में चांद छुप सकता है मगर उसकी रोशनी नहीं। वैसे ही सच्चा प्यार दूर हो सकता है मगर दिल से कभी नहीं। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं से। इस गीत की फरमाइश की थी उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर ने। और साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी छत्तीसगढ़ से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यश सफ़ी ने।

0: अलका याग्निक और मनहार उदास की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म जान से। इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। मैं आपकी दोस्त प्रिया अब आपसे विदा लेती हूँ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर 12 बजने को है। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे AIR लाइव न्यूज़ 24/7 पर। हमारे प्रसारण जारी हैं। अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर युवाओं से अभद्र भाषा और नफरत से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि गाली गलौज से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। प्रधानमंत्री ने जंतर मंतर की हाल की घटना को लेकर करते हुए कहा कि कुछ बच्चों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी सभ्य समाज के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनकी दिवंगत माता के बारे में भी अपशब्द कहे गए, लेकिन बचपन में गलती होना स्वाभाविक है और उसे सुधारने का अवसर भी मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगमपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई।

0: श्री वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पूरी की। इस दौरान उन्होंने भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में 332 करोड़ रुपए की लागत वाली 12 नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। भारत ने 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस को आमंत्रित किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सम्मेलन की तैयारियां प्रगति पर हैं। भारत अध्यक्ष देश के रूप में ब्रिक्स की मेजबानी करेगा। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में उन्नति ने देविका सिहा को और तन्वी ने सुपनिडा कटेथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। उज्बेकिस्तान के बाकू में जारी अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की महिला पहलवानों ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। संध्या विश्नोई और अक्षरा ने अपने अपने वर्ग में रजत पदक हासिल किए। वहीं अवंशिका और तानिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में पुरुष फ्रीस्टाइल मुकाबले आज से शुरू होंगे। मौसम विभाग ने आज गुजरात के में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आज तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरल, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees.
2: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है, 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
1: In order to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential, the Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31.

सुरों का सफरनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कीर्तिका है आप सभी को प्रणाम। दोस्तों, हिंदी सिनेमा का संगीत एक ऐसा समंदर है जिसमें कई अनमोल रत्न छिपे हैं, लेकिन जब बात ऐसे संगीत की हो जो गांव की माटी की खुशबू से लेकर डिस्को की आधुनिक धड़कन को अपने में समेट ले, तो एक ही जोड़ी का नाम जहन में सबसे पहले आता है, कल्याण जी, आनंद जी। आज के इस खास सफर में हम कल्याण जी भाई और आनंद जी भाई के व्यक्तिगत जीवन, उनके संघर्ष, उनके बेमिसाल गीतों और फिल्म इंडस्ट्री को दिए उनके ऐतिहासिक योगदान की, तो आइए इस संगीत में सफर का आगाज करते हैं।

दोस्तों, कल्याण जी वीर जी शाह का जन्म 30 जून 1928 को और उनके छोटे भाई आनंद जी वीर जी शाह का जन्म 2 मार्च 1933 को गुजरात के कच्छ जिले के कुंदरोड़ी गांव में हुआ था। इनके पिता वीर जी शाह रोजी रोटी की तलाश में मुंबई आ गए और गिरगांव इलाके में एक किराने की दुकान चलाने लगे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कहा जाता है कि किराने की दुकान पर आने वाले एक संगीत शिक्षक उधारी ना चुका पाने के बदले दोनों भाइयों को संगीत सिखाने लगे। यहीं से संगीत के प्रति दोनों का लगाव बढ़ा। कल्याण जी ने इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र क्लेवियोलिन बजाना सीखा। जब 1954 में फिल्म नागिन आई तो हेमंत कुमार के सहायक के रूप में कल्याण जी ने ही उस ऐतिहासिक बीन म्यूजिक की धुन अपने क्लेवियोलिन पर बजाई थी, जिसने पूरे देश को झूमने पर मजबूर कर दिया। आइए सुनते हैं कल्याण जी द्वारा स्वतंत्र रूप से संगीतबद्ध फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त का ये सदाबहार गीत।

1958 में सम्राट चंद्रगुप्त से कल्याण जी के ने बतौर स्वतंत्र संगीतकार शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन 1959 में फिल्म सट्टा बाजार और मदारी के साथ आधिकारिक तौर पर कल्याण जी आनंद जी की अमर जोड़ी का जन्म हुआ। इसके बाद 1960 में आई मनमोहन देसाई की फिल्म छलिया। राज कपूर और नूतन पर फिल्माए गए इस फिल्म के गानों ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। मुकेश की दर्द भरी आवाज और कल्याण जी आनंद जी की धुन का ये मेल भारतीय संगीत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया।

दोस्तों, कल्याण जी आनंद जी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे आम इंसान की नब्ज़ पहचानते थे। उनके संगीत में गुजरात और महाराष्ट्र के लोक संगीत की माटी की खुशबू भी थी और भारतीय शास्त्रीय संगीत का अनुशासन भी। 1968 में आई फिल्म सरस्वती चंद्र उनकी करियर का सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुई। गोविंद सरैया द्वारा निर्देशित और प्रसिद्ध गुजराती उपन्यास पर आधारित इस फिल्म में कल्याण जी आनंद जी ने ऐसा संगीत रचा जो आज भी कालजयी माना जाता है। इंदीवर के लिखे बोल, लता मंगेशकर और मुकेश की सुरीली आवाजें और कल्याण जी आनंद जी का विशुद्ध शास्त्रीय संगीत। इस फिल्म के लिए उन्हें 1968 का सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। आइए सुनवाते हैं आपको फिल्म सरस्वती चंद्र से ये गीत।

सरस्वती चंद्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड जीतने के बाद कल्याण जी आनंद जी हर बड़े निर्माता निर्देशक की पहली पसंद बन चुके थे। मनोज कुमार के साथ उनकी जोड़ी ने देशभक्ति गीतों को एक नई परिभाषा दी। 1967 की फिल्म उपकार का गाना मेरे देश की धरती सोना उगले आज भी हर राष्ट्रीय पर्व की शान है। वहीं 1970 की फिल्म पूरब और पश्चिम का गाना दुल्हन चली हो पहन चली भारतीय संस्कृति के गौरव को बयां करता है।

70 के दशक की शुरुआत के साथ कल्याण जी आनंद जी ने संगीत की अपनी शैली को और समृद्ध किया। 1974 में आई फिल्म कोरा कागज, लता मंगेशकर का गाया टाइटल ट्रैक और किशोर कुमार का मेरा जीवन कोरा कागज सीधा दिल में उतर जाता है। इस फिल्म के शानदार संगीत के लिए कल्याण जी आनंद जी को 1975 में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। इसी दौरान सिनेमा में अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के साथ एंग्री यंग मैन का दौर शुरू हुआ। जंजीर, मोहब्बत, माफ कीजिएगा, मजबूर, हेरा फेरी, अदालत, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस और डॉन जैसी फिल्मों में कल्याण जी आनंद जी के बैकग्राउंड स्कोर और गानों ने अमिताभ बच्चन को स्टार से सुपरस्टार बनाने में अहम भूमिका निभाई।

दोस्तों, जहां एक तरफ कल्याण जी आनंद जी भावनात्मक और शास्त्रीय धुनें बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वे समय से काफ़ी आगे की सोच रखते थे। फिरोज़ खान के साथ उनकी जोड़ी ने हिंदी फिल्मों में इंडो वेस्टर्न संगीत, डिस्को और पॉप बीट्स का तड़का लगाया। अपराध, धर्मात्मा और 1980 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कुर्बानी का संगीत इस बात का गवाह है। पाकिस्तानी गायिका नाजिया हसन से आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए गवाना और कंचन की आवाज़ में लैला उल लैला बनाना उस दौर का एक बहुत बड़ा संगीतमय प्रयोग था।

दोस्तों, कल्याण जी आनंद जी सिर्फ महान संगीतकार ही नहीं, बल्कि वे भारतीय संगीत उद्योग के सबसे बड़े पारखी भी थे। उन्होंने कभी किसी नए कलाकार का हाथ थामने से परहेज नहीं किया। कुमार सानू, अलका याग्निक, साधना सरगम, मनहर उदास, उदित नारायण, सपना मुखर्जी, कंचन और सुनिधि चौहान जैसे अनगिनत दिग्गज गायकों को पहला ब्रेक देने या उनकी करियर को सही दिशा का श्रेय कल्याण जी आनंद जी को जाता है। अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर उन्होंने लिटिल वंडर्स नाम से एक म्यूजिक ट्रूप शुरू किया, जहां वे बच्चों की प्रतिभा को तराशते थे। 1989 की फिल्म त्रिदेव का गाना ओए ओए तिरछी टोपी वाले उनकी इसी असीम ऊर्जा और समकालीन सोच का उदाहरण है।

दोस्तों, संगीत में उनके 4 दशकों से अधिक के अद्वितीय योगदान के लिए भारत सरकार ने 1992 में कल्याण जी आनंद जी को देश के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें कई लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कारों से नवाजा गया, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिले सम्मान भी शामिल हैं। लंबी बीमारी के बाद 24 अगस्त 2000 को कल्याण जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके जाने से संगीत जगत में जो शून्य पैदा हुआ, उसे कभी भरा नहीं जा सकता। लेकिन आनंद जी भाई ने उनकी यादों और उनकी संगीत परंपरा को हमेशा जीवंत रखा है।

0: सचमुच कल्याण जी आनंद जी का रचा संगीत जिंदगी के हर रंग खुशी गम देशभक्ति भक्ति और आधुनिकता को इतनी खूबसूरती से पेश करता है कि यह हर पीढ़ी का अपना बन जाता है। आज की सुरों का सफरनामा कार्यक्रम में बस इतना ही। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर युवाओं से गाली गलौज और नफरत से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि गाली देने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। जंतर मंतर की हाल की घटना का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कुछ बच्चों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके और उनकी दिवंगत माता के बारे में भी अपशब्द कहे गए। ऐसे बच्चों को सजा देने या समाज में अपमानित करने के बजाय उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इन बच्चों को क्षमा करते हैं और समाज से भी उन्हें सुधार का अवसर देने की अपील करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है और वे चाहते हैं कि देश का युवा भी आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई।
2: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो

0: उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के किलम देवसर क्षेत्र में आतंकवादियों के हमले में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वी के बिरदी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि आतंकवादियों की तलाश जारी है। केरला में समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक आधी रात से हटा ली गई है। मछलियों के प्रजनन समय को देखते हुए मशीनों से मछली पकड़ने पर 52 दिन का ये वार्षिक प्रतिबंध लगाया गया था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित तो चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पूरी की। इस दौरान उन्होंने भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में 332 करोड़ रुपए की लागत वाली 12 नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। भारत ने 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस को आमंत्रित किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सम्मेलन की तैयारियां प्रगति पर हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 11 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees. He said the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours totaling 10,000 megawatt hour. In order to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential, the Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31. The Union Cabinet has also given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme from 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnaw said a total financial outlay of 3.15 lakh crore rupees has been approved for this scheme during the period of 5 years. Prime Minister Narendra Modi shared a video carrying a message against abusive language and hate, saying that abuses never solve anything. In the video message posted on his social media handles, Mr. Modi said, "The country and the world has witnessed what happened at Jantar Mantar, where some mischievous children used very abusive language, words that do not befit any civilized society." Mr. Modi said, "It is a time to embrace these children."

आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के AR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल पर मध्यरात्रि के 1:10 कार्यक्रम गीत सुनहरे लेकर हाजिर है आपकी दोस्त कीर्ति। और ठीक 2 बजे तक हम इस कार्यक्रम को रखेंगे जारी। बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में, पुराने फिल्मी नगमे जो आपको कुछ अपने पुराने दौर में और कुछ यादों में ले जाएंगे। तो चलिए शुरुआत हम कर रहे हैं इस गीत के साथ जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, संगीत मदन मोहन का है, फिल्म अनपढ़ से ये गीत।

आप सुन रहे हैं गीत सुनहरी कार्यक्रम, और अगला गीत जो आपके लिए ला रहे हैं वो है फिल्म मुगले आजम से। लता मंगेशकर व अन्य आवाज़ों में ये गीत आपको सुनवाएंगी। शकील बदायूं के बोल हैं और संगीत से पिरोया है नौशाद ने।

अगला गीत सुनते हैं, यादों की बारात का शीर्षक गीत, और मोहम्मद रफ़ी किशोर कुमार की आवाज़ है। मजरूह ने इस गीत को लिखा था, आर डी बर्मन ने संगीत दिया है।

सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत। अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म हम किसी से कम नहीं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। आइए सुनते हैं गीत सुनहरे कार्यक्रम में ये अगला गीत।

0: इस बेहतरीन गीत के बाद अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आ रहा है, फिल्म हम दोनों से मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
1: बरसों बाद मैंने किए हैं,

0: बरसों बाद वो खेलने निकली है। ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर युवाओं से गाली गलौज और नफरत से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि गाली देने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। जंतर मंतर की हाल की घटना का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कुछ बच्चों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके और उनकी दिवंगत माता के बारे में भी अपशब्द कहे गए। ऐसे बच्चों को सजा देने या समाज में अपमानित करने के बजाय उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इन बच्चों को क्षमा करते हैं और समाज से भी उन्हें सुधार का अवसर देने की अपील करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है और वे चाहते हैं कि देश का युवा भी आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक लगाने के मामले में मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। सप्ताह के शुरुआत में श्री मोदी की फेसबुक पोस्ट पर कुछ समय के लिए रोक लगाए जाने के बाद सरकार ने मेटा के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी तलब किया था। मेटा ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताते हुए खेद जताया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना। आधिकारिक सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मेटा की टीम अगले सप्ताह के मध्य तक भारत आ सकती है। टीम एक संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के किलम देवसर क्षेत्र में आतंकवादियों के हमले में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वी के बिरदी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि आतंकवादियों की तलाश जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं।

0: भारत ने 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस को आमंत्रित किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सम्मेलन की तैयारियां प्रगति पर हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 11 रजत और 5 कांस्य पदक जीत लिए हैं। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में उन्नति ने देविका सिहा को और तन्वी ने सुपनिडा कटथोंग को हराया। पुरुषों सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। अजरबैजान के बाकू में जारी अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की महिला पहलवानों ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। संध्या विश्नोई और अक्षरा ने अपने अपने वर्ग में रजत पदक हासिल किए। वहीं अवंशिका और तानिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में पुरुष फ्रीस्टाइल मुकाबले आज से शुरू होंगे। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना PMSSY फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स विद एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। एड्रेसिंग मीडिया इन न्यू दिल्ली आफ्टर द यूनियन कैबिनेट मीटिंग, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees. He said the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours, totaling 10,000 megawatt hours. The Union Cabinet also given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme from 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnaw said a total financial outlay of 3.15 lakh crore rupees has been approved for this scheme during the period of 5 years. Prime Minister Narendra Modi shared a video carrying a message against abusive language and hate, saying that abuses never solve anything. In the video message posted on his social media handles, Mr. Modi said, "The country and the world has witnessed what happened at the Jantar Mantar where some mischievous children used very abusive language. Mr. Modi said, it is a time to embrace these children and show them the right path."
2: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
1: Prime Minister Narendra Modi will be on a day visit to Andhra Pradesh and Karnataka today. In Andhra Pradesh, the Prime Minister will inaugurate the Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram, Andhra Pradesh, developed under the public-private partnership mode at a cost of over 5,600 crore rupees. The greenfield airport has been designed to handle 6 million passengers annually. The Prime Minister will also dedicate to the nation and lay the foundation stone of national highway projects worth over 1,880 crore rupees. After concluding his visit to Andhra Pradesh, Prime Minister will reach Mysuru, Karnataka.

सिना कांटों को देखो काम आएंगे। फकत फूलों से है गुल, दोस्ती अच्छी नहीं होती।

0: इसी गीत के साथ नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम गीत बहार अब यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इजाजत। रात्रि के 3 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर युवाओं से गाली गलौज और नफरत से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि गाली देने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। जंतर मंतर की हाल की घटना का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कुछ बच्चों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके और उनकी दिवंगत माता के बारे में भी अपशब्द कहे गए। ऐसे बच्चों को सजा देने या समाज में अपमानित करने के बजाय उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इन बच्चों को क्षमा करते हैं और समाज से भी उन्हें सुधार का अवसर देने की अपील करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है और वे चाहते हैं कि देश का युवा भी आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक लगाने के मामले में मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। सप्ताह की शुरुआत में श्री मोदी की फेसबुक पोस्ट पर कुछ समय के लिए रोक लगाए जाने के बाद सरकार ने मेटा के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी तलब किया था। मेटा ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताते हुए खेद जताया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना। आधिकारिक सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मेटा की टीम अगले सप्ताह के मध्य तक भारत आ सकती है। इसके अलावा टीम एक संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पूरी की। इस दौरान उन्होंने भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में 332 करोड़ रुपए की लागत वाली 12 नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। भारत ने 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग

0: रहने के लिए रूस को आमंत्रित किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सम्मेलन की तैयारियां प्रगति पर हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 11 रजत और 5 कांस्य पदक जीत लिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में उन्नति ने देविका सिहाग को और तन्वी ने सुपनिडा कटेथॉन्ग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना PMSSY फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट्स विद एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। एड्रेसिंग मीडिया इन न्यू दिल्ली आफ्टर द यूनियन कैबिनेट मीटिंग, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours, totaling 10,000 megawatt hours. The Union Cabinet also given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme from 2026-27 to 2030-31. Prime Minister Narendra Modi shared a video carrying a message against abusive language and hate, saying that abuses never solve anything. In the video message posted on his social media handles, Mr. Modi said, "The country and the world has witnessed what happened at Jantar Mantar, where some mischievous children used very abusive language." Mr. Modi said, "It is the time to embrace these children and show them the right path."
2: बचपन में गलतियाँ होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
1: Both houses of parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment, the presiding officer, Dilip Saikia, took up the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 for consideration and passage. Minister of State for Home, Nityanand Rai, moved the bill amid opposition uproar. The bill was passed in the House amid ruckus without any discussion. Prime Minister Narendra Modi will be on a day visit to Andhra Pradesh and Karnataka today. In Andhra Pradesh, the Prime Minister will inaugurate the Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram, Andhra Pradesh, developed under the public-private partnership mode at a cost of over 5,600 crore rupees. The greenfield airport has been designed to handle 6 million passengers annually. After concluding his visit to Andhra Pradesh, Prime Minister will reach Mysuru, Karnataka, where he will inaugurate the Swami Vivekananda Cultural Youth Centre, Vivek Smarak. India said the so-called elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट कंटिन्यूज

शफक कहते हैं किरणों को, रेस और धनुक रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है। शफक धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली फूल।

देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। जी हाँ, कार्यक्रम का आगाज हो चुका है और देर नहीं हुई है कार्यक्रम में, क्योंकि अभी तो पहली गजल है, बहुत कुछ बाकी है। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं पंकज उदास की इस खूबसूरत पेशकश के साथ।

पंकज उदास की आवाज़ में गज़ल आपने सुनी और कार्यक्रम गीत गज़ल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल। 3:26 और 36 सेकंड का समय।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। कार्यक्रम गीत गजल में आइए आप सुनते हैं मीलू शर्मा की आवाज में ये गजल।

0: राधिका चोपड़ा की पेशकश के साथ ही आज का गीत गजल कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। श्रोताओं कुछ ही बोलो मैं 4 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है अर्चना।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सहगान रूप में।

अब हम आपको श्री स्वाति तिरुनाल की एक भक्ति रचना सुनवा रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराजापुरम संतानम में।

0: अब आज का अर्चना कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। यह आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, सुबह के 4:20 और 25 सेकंड हो चले हैं और ये समय है कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म का। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे राग चारुकेशी में उषा विजय कुमार का गोटू वाद्यम। मिश्र चापू ताल में निबद्ध रचना स्वाति थिरुनल की है। वायलिन पर आपका साथ दिया है R. स्वामीनाथन ने।

मुकेशी में उषा विजय कुमार का गोटू वाद्यम सुना। मिश्र चापू ताल में निबद्ध रचना स्वाति ने थिरुनल की थी। वॉलिन पर आपका साथ दिया था आर स्वामीनाथन ने। और श्रोताओं, कुछ ही पलों में सुबह के 4:50 होने को हैं। वंदे मातरम।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर आज शनिवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की दसवीं तिथि, तदनुसार 1 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 42 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

और श्रोताओं, अब आपको आगे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे देते हैं। अब से कुछ ही देर में होंगे समाचार। समाचारों के तुरंत बाद 5:10 का समय रहेगा कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस का, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे पवन मुक्तासन और सेतु बंधासन पर जानकारी। देशभक्ति गीत आप सुन सकते हैं प्रातः 5:20 पर, और आज आप सुनेंगे आकाशवाणी के वृंद कलाकारों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीत। कार्यक्रम स्वररंजनी आप सुन सकते हैं प्रातः 5:30 पर। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे तनिमा ठाकुर का राग ललित में गायन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना समय रहेगा प्रातः 6 बजे का, माफ कीजिएगा, प्रातः 6:10 का। 6:40 पर आप सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आज आप सुनेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी के विचार।

रामचरितमानस का समय रहेगा प्रातः 6:45 का, और उसके तुरंत बाद आप सुन सकते हैं संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

प्रातः 7:10 का समय रहेगा कार्यक्रम संगीतिका का, जिसमें आज आप सुनेंगे आशुतोष कुमार के भजन। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग आप सुन सकते हैं प्रातः 7:30 पर, और उसके बाद समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज और उर्दू में खबरें आप सुन सकते हैं। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत आज आप सुन सकते हैं प्रातः 8:45 पर। आज आप सुनेंगे विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर विशेष कार्यक्रम।

0: तो श्रोताओं श्रोताओं, ये थी आपसे कुछ देर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में सुबह के 5 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीतारामन राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है। श्री मोदी ने कहा कि ऐसे युवाओं को अदालती कार्यवाही में घसीटने या सामाजिक उत्पीड़न का शिकार बनाने के बजाय समाज को उन्हें अपनाना चाहिए और उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इसमें शामिल बच्चों को माफ करना चाहते हैं और लोगों से सहानुभूति और समझ की इस भावना को अपनाने की अपील की। दंड के बजाय मार्गदर्शन के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो युवा भटक जाते हैं उन्हें समर्थन और सकारात्मक दिशा की आवश्यकता होती है ताकि वो जिम्मेदार नागरिक बन सकें। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक लगाने के मामले में मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। सप्ताह के शुरुआत में श्री मोदी की फेसबुक पोस्ट पर कुछ समय के लिए रोक लगाए जाने के बाद सरकार ने मेटा के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी तलब किया था। मेटा ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताते हुए खेद जताया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना। आधिकारिक सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मेटा की टीम अगले सप्ताह के मध्य तक भारत आ सकती है। इसके अलावा टीम एक संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल 4 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित 13 सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। इस योजना के अंतर्गत 5,070 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। साथ ही मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी, जिसके लिए अगले 5 वर्षों में 84,084 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने और 36,441 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ खेलो इंडिया योजना, साथ ही राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल भूटान में भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में 332 करोड़ रुपए की लागत वाली 12 नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओडिलोविच कल से 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे। इस दौरान वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत कुल 23 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। जूडो में भारत ने पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वहीं मुक्केबाजी में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक में रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। डेकेथलॉन में कांस्य पदक जीतकर इस स्पर्धा में राष्ट्रमंडल खेलों का पदक जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will be on a day visit to Andhra Pradesh and Karnataka today. In Andhra Pradesh, the Prime Minister will inaugurate the Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogpuram. Developed under the public-private partnership mode at a cost of over 5,600 crore rupees, the Greenfield Airport has been designed to handle 6 million passengers annually. The Prime Minister will also dedicate to the nation and lay the foundation stone of national highway projects worth over 1,880 crore rupees. After concluding his visit to Andhra Pradesh, Prime Minister will reach Mysuru, Karnataka, where he will inaugurate the Swami Vivekanand Cultural Youth Center, Vivek Smarak. Prime Minister Narendra Modi has said that abuse and hatred never solve anything. He appealed for compassion towards misguided youth who have gone astray, saying they should be guided onto the right path in the spirit of nation building and national interest, rather than punished. In a video message posted on his social media handles, the Prime Minister referred to the recent incident at Jantar Mantar in National Capital, where abusive language was used against him and his late mother. He said the episode had been witnessed by people across the country and the world, adding that while the anger and disappointment in society over such conduct were understandable, childhood is also a phase of learning, making mistakes and correcting them. Mr. Modi said, instead of dragging such youngsters through court proceedings or subjecting them to social harassment, society should embrace them and show them the right path.
3: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
2: The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours, totaling 10,000 megawatt hour. The Union Cabinet has also given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme from 2026-27 to 2030-31. India said the so-called elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, Pakistani establishment continues to unleash ruthless force against peaceful civilians in POJK. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to his Iranian counterpart Abbas Araghchi last evening and conveyed India's deep concerns at the ongoing hostilities in the region. During the telephonic conversation, Dr. Jaishankar strongly urged that attacks on commercial shipping and seafarers be avoided under any circumstance. He stressed that India condemns any such attack by any party. Foreign Secretary Vikram Misri concluded his two-day visit to Bhutan. During his visit, Mr. Misri co-chaired the 5th India-Bhutan Development Cooperation Talks for the 13th Five-Year Plan of Bhutan. During the 5th plan talks, both sides reviewed the overall progress and implementation of Government of India's support of 10,000 crore rupees for Bhutan's 13th Five-Year Plan. And in Commonwealth Games, India's historic first ever judo gold medals, a javelin throw double podium led by Olympic champion Neeraj Chopra, and a stunning day in the boxing ring, where 10 pugilists

0: marched into the finals highlighted another memorable day for the country's athletes at the Commonwealth Games in Glasgow. With this, India's medal tally at the Commonwealth Games has risen to 23, including 5 gold, 12 silver and 6 bronze. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, सुबह के 5:10 और 12 सेकंड हो चले हैं और ये समय है कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस का। आज के इस कार्यक्रम में आपको जानकारी मिलेगी पवन मुक्तासन और सेतु बंधासन पर।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे गैस्ट्राइटिस, गलत खान पान, शारीरिक श्रम की कमी होना, तनाव आदि हमारे जीवन शैली में इस तरह घर कर गए हैं कि ये हमारे लिए तमाम तरह की बीमारियों की जड़ है। और गैस्ट्राइटिस भी ऐसी ही समस्या जो किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब बन गई है। परंतु आप सेहतमंद डाइट और योगासनों को जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे तो आप गैस्ट्राइटिस की समस्या से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। इस कड़ी में मैं आपको आज पवन मुक्तासन के बारे में बताऊंगी, जो आपको काफी हद तक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार आप पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन के लिए सबसे पहले आप अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को मोड़ें, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने वक्ष स्थल के ऊपर लेकर आएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें, आपस में फंसाएं और अपने पैरों को पकड़ लें। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर की ओर उठाएं जब तक आपकी ठुड्डी घुटनों से ना लगे। कुछ समय तक इस स्थिति में बने रहें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन के नाम से जाना जाता है। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले आए, श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को भी जमीन पर ले आए। अभ्यास के अंत में शव आसन में कुछ क्षण के लिए विश्राम जरूर करें। यह अभ्यास कम से कम 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। इस आसन में कुछ सावधानियों को ध्यान से करें, जैसे पैरों की गतिविधियों के अनुसार ही श्वास पर श्वास को एक लय में लाएं, घुटनों को नासिका से स्पर्श करते यानी घुटनों को नाक से स्पर्श करते हुए यह अनुभव करें कि कमर में आपके किस हिस्से में खिंचाव महसूस हो रहा है। यह आसन कब्ज की बीमारियों को दूर करने में सहायक है और हमारी पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। कुछ हद तक कमर की मांसपेशियां, कमर के लिगामेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के लिए आप पवन मुक्तासन का अभ्यास किस प्रकार कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखंद, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन बताऊंगी जिसका नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध शब्द का अर्थ है सेतु का निर्माण। इस आसन में शरीर की आकृति बिल्कुल सेतु की अवस्था का रूप ले लेती है, इसीलिए इस आसन को सेतुबंध आसन के नाम से जाना जाता है। सेतुबंध आसन के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लाएं, जितना पॉसिबल हो सके अपने हिप जॉइंट्स के पास लेकर आएं, यानी नितंब के पास लेकर आएं। अब हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें और घुटनों और पैरों को एक सीध में रखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और धड़ को ऊपर की ओर उठाएं और एक पुलनुमा आकृति बनाएं, यानी एक ब्रिज बनाने का प्रयास करें। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड कम से कम रुकने का प्रयास करें। ध्यान रहे, इस अवस्था में आपका श्वास पर श्वास की क्रिया सामान्य बनी रहे, यानी आपको ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना है, सामान्य श्वास लेते रहना है। 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति में आ जाएं और शव आसन में लेटकर शरीर को शिथिल छोड़ दें। दोस्तों, 10 से 30 सेकंड तक रुकना, इस आसन को करने के बाद जब आप शव आसन में लेटे तो आंखें बंद करके अपने शरीर पर ध्यान दें और उसमें होने वाले बदलाव को भी महसूस करें। धीरे धीरे जब आप यह निरंतर यह अभ्यास करते हैं तो आप रुकने की जो टाइम पीरियड होता है, यानी 10 से 30 सेकंड का जो समय है, उस समय को भी आप बढ़ा सकते हैं, यानी एक मिनट तक भी आप उस स्थिति में रुक सकते हैं। इस आसन को आप कम से कम 3 से 4 बार अवश्य करें। सेतुबंध आसन की स्थिति में कम से कम 10 से 30 सेकंड रुकने का भी प्रयास जरूर करें। अगर आप 10 से 30 सेकंड इस स्थिति में आराम से बने रह सकते हैं तो आप अपने समय को बढ़ाकर 1 मिनट तक भी कर सकते हैं, यानी इस आसन को आप 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। ध्यान रहे, यह आसन करते समय अंतिम अवस्था यानी फाइनल पोज में आपके कंधे, गर्दन और सिर जमीन से लगे होने चाहिए, और यदि जरूरत हो तो फाइनल पोज में आप अपने कमर पर हाथ रखकर भी अपने शरीर को ऊपर की ओर उठा सकते हैं। और यदि जरूरत हो तो फाइनल पोज में भी, कई बार ऐसा होता है कि हम कमर ऊपर नहीं उठा पाते, तो आप अपने हाथों का भी सहारा ले सकते हैं, अपनी कमर पर हाथ रखकर भी अपने शरीर को ऊपर की ओर उठा सकते हैं। यह आसन न केवल कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, बल्कि चिंता को भी कम से कम करने में सहायक है। उदर यानी पेट के अंगों में भी कसावट लाता है और जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है उससे भी छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ सावधानियां भी बताती हूँ। यदि किसी व्यक्ति को हर्निया या कोई रिसेंटली पेट की सर्जरी हुई है तो इस आसन का अभ्यास ना करें। तो आज आपने सीखा कि किस प्रकार आप सेतुबंध आसन कर सकते हैं और किस प्रकार आप इस आसन का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कमर की मांसपेशियों में मजबूती, कब्ज को कम करना, पेट के अंगों में भी मजबूती लाना, अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाना और तनाव को भी ये काफी हद तक कम करता है। आखिर में आपसे मैं फिर कहूंगी, प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस। आज के इस कार्यक्रम में आपको जानकारी मिली पवन मुक्तासन और

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, सुबह के 5:20 हो चले हैं और ये समय है देशभक्ति संगीत का। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस देशभक्ति गीत के साथ, प्रस्तुति आकाशवाणी के वृंद कलाकारों द्वारा।

और इसी के साथ आज का देशभक्ति संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कुछ ही पलों में सुबह के 5:30 होने को हैं। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, सुबह के 5:30 हो चले हैं और ये समय है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे तनिमा ठाकुर का राग ललित में गायन। तबले पर आपकी संगति की है मनमोहन सिंह ने, सारंगी पर साथ हैं गुलाम साबरी और हारमोनियम पर साथ दिया है रहमान कुरेशी ने। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है, बोल बंदिश है को समझत नहीं, और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, बोल बंदिश है विघ्न हरण गौरी के नंदन। तो आइए सुनते हैं तनिमा ठाकुर का राग ललित में गायन।